मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 अगस्त सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56 और 50 सेकेंड्स हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूँ चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेरी वेन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने

के उपायों पर चर्चा की। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और सेकेंड लेडी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी व्यक्त की। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल आबिदजान में कोटी डी आयवर के राष्ट्रपति अलासानी उटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोटी डी आयवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह पुदुचेरी के गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में श्री शाह मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह दो दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी किया है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उधर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से जुड़े मार्गों की मरम्मत और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए इस यात्रा को आज से बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दिया गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यूं हान से होगा। ये मुकाबला दक्षिण कोरिया के आसन में भारतीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा। अश्मिता ने कल सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं क्यूं हान ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की जी किम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। बस कुछ ही पलों में हम आपको सुनवाएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

जी हाँ श्रोताओं, ये मास चल रहा है श्रावण का। हर हर महादेव की गूंज, मंदिरों में बजती घंटियों की मधुर ध्वनि, बेलपत्र गंगा जल और शिवलिंग पर चढ़ती जलधार और चारों ओर हरियाली की चादर। सावन का महीना आते ही वातावरण

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। ईश्वर के रूप तो कई हैं, लेकिन एक दिव्य शक्ति जो है वो सिर्फ एक ही है। कोई उन्हें शिव के रूप में पूजता है, कोई राम के रूप में, कोई कृष्ण में अपना आराध्य देखता है, तो कोई माँ दुर्गा, गणेश या हनुमान में अपनी श्रद्धा का केंद्र चाहता है। नाम अलग भले हो सकते हैं, रूप अलग हो सकते हैं, पूजा की विधियाँ भी अलग हो सकती हैं, लेकिन उस परम सत्ता तक पहुँचने की भावना एक ही है, और वो है श्रद्धा और प्रेम।

0: बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
2: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
1: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
5: ब्रेक के बाद श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम आराधना में।

एक भक्त की पुकार श्याम के मूल्य की मधुरतान हो, मन में भक्ति और अधरों पर मुस्कान हो। कभी उन्हें नटखट कान्हा कहकर पुकारिए, कभी अपने मन का सखा बनाकर निहारिए। ईश्वर के रूप तो अनेक हैं, पर वो एक ही है। कोई शिव में उन्हें देखता है, कोई राम में, कोई कृष्ण में और कोई माँ की ममता में। जिस रूप में मन को शांति मिले, जिस नाम से श्रद्धा हृदय में भर उठे, उसी नाम का स्मरण कीजिए श्रोताओं, क्योंकि पूजा का सौंदर्य केवल विधि में नहीं होता, भाव में।

इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरव ग्रंथों से। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं सामवेद से कुछ छंद। लीजिए सुनिए।

0: भारतीय आर्य यज्ञ में जिन प्रिय वचनों को मधुर स्वर में गा गा कर दैवी शक्ति को संतुष्ट व प्रसन्न करते थे, वे सब सामवेद में संग्रहित हैं। इस वेद के मंत्रों के गायन में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता रहा है। कहते हैं कि इसी वेद से गांधर्व वेद का उद्भव हुआ, जिससे हमें संगीत शास्त्र की विभिन्न राग रागनियों का परिचय प्राप्त होता है। लीजिए, प्रस्तुत है इस वेद के गीतात्मक कुछ मंत्र।
1: अगस्त्यस्ययामिके द्वे द्वयोः अगस्त्यः तृष्टुप् सोमः।

0: पशुमाति होतांगं।
1: गौरव ग्रंथों से इसमें अभी आप सुन रहे थे सामवेद से कुछ छंद। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई आज सुने फूलों की खेती में जिब्रेलिक अम्ल का महत्व, इस विषय पर दुर्गेश कुमार मिश्र से बातचीत।
1: किसान भैया, अरे देखा अपन सभी खेती किसानी करी थी और खेती किसानी के साथे देखा 4 पैसा आमदनी के लिए भाई बागवानी भी कैलिन और तमाम तरह के जैसे कुक्कुट पालन बाटे, तो कुछ किसान भैया अरे फूलों के भी खेती करत हैं जैसे कि जो उनके 4 पैसा के आमदनी हो। तो फूल के खेती कैसे में आजकल जौन आधुनिक तकनीक आ गई बाटे और ओका जौन विधि बा अगर अच्छे तरीके से ओका अपनाए के कीन जाई तो निश्चित बा कि कुछ पैदावार भाई ज़्यादा से ज़्यादा मिली और 4 पैसा के भाई आमदनी ज़्यादा हुई। तो फूल के खेती में एक बात आवत है जिब्रेलिक अम्ल के प्रयोग के, तो एक देखा आज पंचायती में जानकार मने आए बाटे डॉक्टर मुकेश पीएम जी, पीएम प्रसार निदेशालय सीआरएस में आए। डॉक्टर साहब आपके कार्यक्रम में स्वागत बा। सबसे पहले किसान भैया अरे हमरे ई जाना चाहिए कि फूल के खेती में जिब्रेलिक अम्ल जौन उपयोग कीन जात ई आ का?
2: जिब्रेलिक अम्ल एक वृद्धि नियामक रेगुलेटर है जिसे हिंदी में पौधों की वृद्धि नियामक कहते हैं। फूलों की खेती में इसका प्रयोग स्प्रे द्वारा 8 दिन के उपरांत छटाई करने के बाद किया जाता है।
1: मतलब काहे का मतलब कि ये जौन अपन फूल हैं एक का वृद्धि करे के लिए कैसे हाँ, किस कौन तरीके के वृद्धि करे?
2: हाँ, ये जब हम लोग फूलों की कटाई छटाई कर देते हैं उनके पौधों की, तब हम उसमें अगर इसका प्रयोग करते हैं तो वो जल्दी फूल देना शुरू
1: जल्दी बढ़प शुरू हो जाता
2: है। जी हाँ, जी हाँ।
1: और एक बात आवत है कि एका कब करे चाहिए, मतलब एक कहा जाते कि भाई जैसे फूल के भाई हम तैयार बाटे या फिर शुरुआती दौर में बा, तो कब कौने अवस्था में ये अम्ल के हम प्रयोग करी?
2: देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। हम लोग कभी कभी देर कर देते हैं फसल उगाने के लिए और हम लोग बगल वाले पड़ोस

0: उसी किसान से हम लोग पीछे हो जाते हैं। तो उस इस अवस्था में जब हम पौध लगा रहे हैं, अपने फूलों को लगा रहे हैं, उस समय हम इसका प्रयोग जब करेंगे तो हम उसके पड़ोसी वाले जो खेत के, हमारी भी फसल बराबर आ जाती है कम समय में। तो इसको, इसकी वृद्धि के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं।
1: अच्छा, एक चीज़ जौन जिब्रेलिक अम्ल बा, ये हर प्रकार के जैसे फूल के लिए प्रयोग में लावा जा सकत है? कुछ जैसे फूल के खेती जैसे गेंदा बा, गुलाब बा, या सभी प्रकार के फूल में इस्तेमाल किए जा सकत है का?
0: बहुत अच्छी बात आपने पूछी है किसान भाइयों, ये जानकारी बहुत ही अच्छी है कि ये जिब्रेलिक अम्ल एक पौधों को वृद्धि के लिए हम लोग फूल, चाहे किसी भी प्रकार के फूल हो, उसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। चाहे वो गेंदा हो, चाहे वो जरबेरा हो, चाहे रजनीगंधा हो, चाहे वो गुलाब का फूल हो,
1: कौनो तरह के?
0: किसी भी प्रकार का। हमने कहा कि जब हम किसी भी कारणवश खेती करने में लेट हो जाते हैं या पौध लगाने में हमें देरी होती है, उस समय हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। या फिर जब हमें फूल जल्दी प्राप्त करने होते हैं, तब हम लोग इस अवस्था में इसका प्रयोग करते हैं।
1: तो जैसे डॉक्टर साहब की अल फूल के जौन प्रकृति होता है, सब फूल के अलग अलग अपन प्रकृति होते हैं, तो ओके कोनो विधि बा कि एकरे लिए भाई इतना प्रयोग करे या फिर ना प्रयोग करे, तो ऐसे कोनो मतलब कि नियम बात है कि जैसे सब पे करी भाई एक साथ है ना, ऐसे सब प्रयोग कर दी?
0: हाँ, एक ग्राम लेकर के 1000 ml में इसको मिलाते हैं
1: अच्छा
0: और उसको प्रयोग करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पौधा बड़ा होता है, बहुत दिन वाला होता है, तो उसी की हिसाब से हम उसकी मात्रा भी बढ़ा लिया करते हैं। लेकिन इसकी पहले मानक है 1 ग्राम में 1000 ml में इसकी छिड़काव करने के लिए।
1: अच्छा एक डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बात बताए रहे हैं कि ये जो अम्ल होते हैं ये फल पके में बहुत तेज मदद करते हैं। और एक बात और आवत है कि ये जो जनसे हम बातें मात्रा तो बताएं दें, एका कितनी बार कब प्रयोग करें?
0: हाँ, बहुत सही बात पूछे हैं आप। 40 से 55 दिन और 60 दिन के बाद रोपण के हम लोग इसकी छिड़काव कर देते हैं। इसका प्रयोग करने से देखिए, सबसे अच्छी बात हम आपको बता दे रहे हैं, ये फूलों के किसानों के लिए भी लागू होती है और भी सब्जी के भी किसानों के लिए ये लागू हो जाती है कि मार्केट में हमें समय से पहले अगर हम अपनी फसल को ले जाना चाहते हैं तब हम इसको प्रयोग कर सकते हैं,
1: अच्छा
0: और अगर हम लेट हो गए हैं तो लेट वाले भी जो हैं इसकी सहायता से सही समय पे
1: सही
0: अपना
1: समय,
0: फसल को
1: ये तो
0: पहुंचा
1: बहुत
0: सकते
1: अच्छी बात
0: हैं।
1: बाकी भाई जैसे
0: जी
1: कि घबराए गए भैया हम तो भाई देखा पीछे हो गए, लेकिन एका प्रयोग करे से भाई समय से पहले हमार माल तैयार हो गया और हम
0: जी
1: बाजार में उका साथे
0: जी
1: साथे बेच दें। ये
0: जी
1: तो बहुत बढ़िया बात है एकर
0: जी
1: विधि। और एक चीज आत आवत है कि भैया एका हम इस्तेमाल तो करते थे, का एक कोनो दुष्परिणामों व प्रतिकूल असर पड़ा थे पे?
0: नहीं, देखिए, हर चीज़ का इस्तेमाल करने पर कुछ ना कुछ तो ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसका असर तो पड़ता ही है
1: मतलब
0: हर एक
1: जितनी
0: चीज़ का।
1: मात्रा बताएं ना
0: हाँ,
1: आप, 1000 लीटर में
0: जितनी 1 ग्राम जो
1: एक
0: है,
1: ग्राम
0: हाँ, इतनी मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो आपके पौधे को और आपके फूलों को
1: नुकसान
0: नुकसान
1: पहुंचे,
0: होगा।
1: नुकसान
0: अगर आप
1: पहुंचे।
0: सही मात्रा में उसका प्रयोग करेंगे तो उसकी पंखुड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आकर्षक होंगी, जिसमें कि मार्केट में आपको अच्छा प्राइस मिलता है।
1: अच्छा एक एक बात और आवत है कि एका जैसे आप कहें कि स्प्रे कहीं या छिड़काव किया जाता है, तो एका प्रयोग में लावे के लिए का का सावधानी बरते किसान भैया रे?
0: बहुत अच्छी बात है किसान भाइयों, इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों से हमें इसको दूर रखना है और अपने हाथ और अपने मुंह और अपने आँखों को इससे बचा के रखना है। इसकी सावधानी हमें बहुत ध्यान पूर्वक देना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितना बताया जाता है मात्रा, उतनी ही मात्रा का प्रयोग करें, अन्यथा हमारी फसलों को तो नुकसान होगा ही होगा और उसके आने वाले प्रोडक्ट का भी नुकसान पहुँचेगा।
1: एक बात और आवत है कि जैसे अपने किसान भैया अरे एक साथे साथे कुछ रसायन के भी उर्वरक के भी इस्तेमाल करत, तो उर्वरक बा कुछ कीटनाशक भी बाटे और ये अम्ल बा, तो इसमें कैसे कितना तालमेल हो चाहिए?
0: हाँ, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। अगर हम उर्वरक डाल रहे हैं और अगर हम इसका जिब्रेलिक एसिड का हम अगर प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके और इसके अंतराल में कम

0: से कम एक सप्ताह का अंतर रखना अनिवार्य है, नहीं
1: अच्छा
0: तो पौधे जलने की संभावना हो
1: अच्छा
0: जाती है।
1: तो मतलब कीटनाशक अगर डाले हैं तो उसके एक हफ्ते बाद एक प्रयोग में लावें,
0: प्रयोग में
1: तो
0: लाना
1: मतलब का कुछ ऐसी विधि बा या फिर ऐसा कुछ है, जैसे मान लें कि अगर एक प्रकृति की तरीके से मान लें वो अपने से बढ़त बाटे कि या जैसे उन्हीं पर प्रयोग करें जो उन पौधा भाई बढ़त ना ही ना छोटा बाटे या फिर ओकर कहूँ जहाँ वृद्धि रुक गई बा तब इस्तेमाल करें कि एक नियम बा कि भैया एक डाल दे तो एक बहुत तेजी के साथ बढ़ी ऐसा कुछ।
0: हाँ, किसान भाइयों, बहुत अच्छी बात है ये, आप सबों को जानकारी इसके बारे में रखनी चाहिए और इसका प्रयोग हमें तभी करना चाहिए जबकि जितना कि वैज्ञानिकों की तकनीकी का द्वारा दिया गया है।
1: देखे भैया कितनी बढ़िया आप डॉक्टर साहब जानकारी दें और किसान भैया रे निश्चित बात कि डॉक्टर साहब जत्ता बताएं अगर उही हिसाब से ये अम्ल के प्रयोग में लई हैं तो निश्चित बात कि फसल के पैदावार तो बढ़बे करी और 4 पैसा के आमदनी हो। डॉक्टर साहब आप पंचायती मायन अपने हमरे किसान भैया रे के इतनी बढ़िया जानकारी दें आपके बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई अभी सुन रहे थे फूलों की खेती में जिब्रेलिक अम्ल का महत्व। इस विषय पर दुर्गेश कुमार मिश्र से मुकेश पी मसीह की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब समय हो चला है श्रोताओं स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम सुनने का। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर शरद शांगलू की वार्ता, एलर्जी का होम्योपैथिक उपचार।
1: एलर्जी एक ऐसा शब्द है जो सभी ने सुना हुआ है और सभी जानते हैं। एलर्जी का मतलब सरल शब्दों में यह होता है कि शरीर का किसी चीज़ को स्वीकार न करना। उसको खाने से व उसको शरीर के संपर्क में आने से शरीर में अनेक दिक्कतें हो सकती हैं। एलर्जी यानी शरीर की इम्यून सिस्टम का हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स हो जाना। यह एलर्जी खाने के माध्यम से भी हो सकती है, वस्तुओं को छूने के माध्यम से या उसके कॉन्टैक्ट में आने से भी हो सकती है। कुछ प्रमुख प्रकार की एलर्जियां हैं धूल से, धुएं से, पराग कण से और मूंगफली और ग्राउंडनट से भी हो सकती है। इसके संपर्क में आने के कारण छींकें, त्वचा में खुजली होना या स्किन का उखड़ जाना, उल्टी होना जैसे लक्षण होते हैं। इसके अलावा एलर्जी के कुछ और प्रकार भी हैं, जैसे कि किसी विशेष दवा से एलर्जी या अन्य प्रकार की भी एलर्जियां होती हैं, जैसे महक से भी किसी को एलर्जी हो सकती है। धूल व पराग कण की एलर्जी में नाक जाम सी लगती है, नाक बंद हो जाती है, नाक से सांस आने में दिक्कत होती है, आँखों और नाक में खुजली होती है, नाक से पानी बहना, आँखों में सूजन होना और आँखों में भी खुजली आना, इसके साथ खांसी भी आ सकती है। इसकी प्रमुख होम्योपैथिक दवा है R84। ये आसानी से बाजार में किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पे उपलब्ध है। इसको 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 4 बार लेने से काफी लाभ होता है। इसके अलावा भी कई दवाएं आती हैं, जैसे कि आँख में अगर खुजली ज्यादा है, नाक से गर्म गर्म पानी सा निकल रहा है और आँखों में भी रोशनी को देखने से तकलीफ हो रही है, तो एलियम स्वीपा 200 एक कारगर दवा है। यदि दवाओं की बात करें तो एलर्जी में यूफ्रेशिया 200 और नक्सवामिका 200 भी काफ़ी प्रयोग में आती हैं। इलाज शुरू करने के पूर्व हम आपको ये सलाह देंगे कि किसी पैथोलॉजी से एलर्जी टेस्ट करा लें। एलर्जी टेस्ट में आपको ये पता चल जाता है कि आपको किन किन चीज़ों से एलर्जी है और कितनी है। ज़्यादातर ये सेंसिटिविटी के रूप में आती है, 1+ से लेकर 3+ तक सेंसिटिविटी होती है। उसके बाद किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक के यहाँ आप 3 महीने तक इलाज कर सकते हैं और ये जांच आप दोबारा कराएं। जब आप दोबारा कराएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस किस चीज़ें एलर्जी थी, वो कितनी थी। जैसे मान लीजिएगा 3+ रही सेंसिटिविटी गेहूं से या चावल

0: से या धुएं से, तो अब 2+ है कि 1+ है कि 0 हो गई है, तो इससे आपको पता चल सकता है। इसी प्रकार आप खाने की चीज़ों में भी कई चीज़ों से एलर्जी होती है। आजकल सामान्यतः गेहूं से एलर्जी की समस्या बहुत ज़्यादा विश्व में कॉमन हो रही है, और फूड एलर्जी के प्रमुख लक्षण होते हैं उल्टी होना, जबान सूखना, मुंह में छाले, पेट में दर्द और लूज मोशन। इसकी प्रमुख होम्योपैथिक दवा R83 है। ये आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हो जाती है और ये सभी प्रकार के खाने से रिलेटेड एलर्जी को दूर करती है। इसको 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 4 बार लेने से काफ़ी लाभ मिलता है। लेकिन फिर भी हम आपको ये सलाह देंगे कि किसी अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक को दिखा के ही अपने बीमारी का निदान कराएं, क्योंकि एलर्जी एक बड़ी समस्या हैगी और छोटे छोटे चीज़ों से उसका टेम्परेरी निदान तो हो सकता है, लेकिन परमानेंट जाने के लिए आपको किसी अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक को दिखाना अनिवार्य है। इसी तरह पराग कण से एलर्जी है तो उसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा आती है, मिक्स पॉलन 30C। ये न्यूजीलैंड से आयातित दवा है और पराग कणों से एलर्जी में काफ़ी कारगर होती है। इसी तरह अगर गेहूं से एलर्जी की जैसे मैंने पूर्व में बात करी थी, तो उसके लिए वीट 30C इंग्लैंड से विशेष दवा आती है सिर्फ गेहूं की एलर्जी के लिए, जिसको खाने से पेशेंट को काफ़ी लाभ होता है।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने सुनी डॉक्टर शरद शांगलू की वार्ता, एलर्जी का होम्योपैथिक उपचार। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

रात 10 बजे रवि वासी अखिल भारतीय संगीत सभा का आनंद लीजिएगा। ये कार्यक्रम हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। रात 9:30 पर गजलों पर आधारित कार्यक्रम सुनवाएंगी कहकशां। रात 8:30 पर सुनना न भूलिएगा आज इतवार है कार्यक्रम, इसमें सुनवाएंगे हास्य झलकी LTC का चक्कर।

सुबह 7 बजे से श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ का आनंद लीजिएगा। सुबह 7:10 से फिल्मों से भजन कार्यक्रम प्रसारित होगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर पंडित उल्लास बापट का संतूर वादन सुनेगा और दोपहर 12:15 पर पद्मा तलवलकर का ख्याल गायन सुनाएंगे। आपके अपने फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का कार्यक्रम होगा हेलो अनुरोध दोपहर 1:15 पर। प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। लोक गीतों में कार्यक्रम लोक माधुरी का समय होगा सुबह 10:05। विकास चंद्र पांडे, सूर्य प्रकाश पटेल और साथी और चंद्र प्रकाश पाठक के स्वरों में सुनिएगा लोकगीत और दोपहर 2:30 पर रंजीत कुमार और साथियों के स्वर में लोकगीत सुनाए जाएंगे। फिल्म संगीत समय होगा सुबह 9:00, 10:30, शाम 7:31 और रात 8:15।

सुबह 8:45 पर रोज की ही तरह आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। प्रस्तुति होगी अभय कांत तिवारी की, प्रस्तोत्री होंगी मोना पांडे। बाल गोपाल कार्यक्रम में सुनवाएंगे बाल कहानी केंचुआ। विजय बहादुर सिंह की ये कहानी सुनिएगा शाम 5:00 बाल गोपाल कार्यक्रम में। शाम 5:15 पर युवाओं को

कार्यक्रम युवा नहीं होगा। आज का आकर्षण सुनिएगा हेलो युवा। शाम 6:30 मिनट पर पंचायत घर कार्यक्रम में सुनवाएंगे बातचीत, खेतों की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के उपाय।

सुगम संगीत कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर और शाम 7:45 पर चित्रा चौरसिया के स्वर में गीत भजन का आनंद लीजिएगा और रात 8 बजे पत्रोत्तर कार्यक्रम होगा जो कि आपके पत्रों पर आधारित कार्यक्रम होता है। चिट्ठी आई है, प्रतिभागी कलाकार होंगे नेहा गुप्ता और वंदना राठौर।

अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

प्रीति की सुंदर रीति का अनुपम उदाहरण है दूध और जल का मिलन। दूध में मिलकर जल भी दूध के भाव बिकने लगता है, किंतु कपट रूपी खटाई के पड़ते ही पानी दूध से एक बारगी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है, प्रेम रूपी स्वाद जाता रहता है। सती के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव से आतंकित होकर शिव जी से छिपाव किया और मिथ्या वचन कहे कि उन्होंने श्री राम की कोई परीक्षा नहीं ली, किंतु सर्वज्ञ शंकर ने सब कुछ जान लिया और सती के कपटपूर्ण व्यवहार के लिए उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया। उधर सती को अपनी करनी याद करके अत्यंत ग्लानि हुई। उन्होंने शिव का रुख पहचान लिया कि स्वामी ने उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया है। अपने पाप की प्रतीति होने पर सती से कुछ कहते नहीं बना, किंतु उनका हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आमे के समान जलने लगा। इधर शिव जी ने अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार वट वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठकर अखंड समाधि लगा ली।

अनुराधा मराठी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे भक्ति श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्मों से भजन। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं अखियों के झरोखे से, इस फिल्म से ये भजन हेमलता के स्वर में। समीर की शब्द रचना है, डेविड धवन का संगीत है।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं फिल्मों से भजन कार्यक्रम, और आइए अब आपको सुनवाते हैं चार धाम फिल्म से भजन। हरिहरन का स्वर है, उदय शंकर पाणी की शब्द रचना, सुरेंद्र कोहली का संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन कार्यक्रम। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को हैं। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम रिले कर रहे हैं अपने लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई निरीक्षण कर मेरठ में कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा, कहा कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैयार है सरकार। उपभोक्ताओं के लिए निशुल्क रहेगा UPI, केंद्र सरकार ने किया स्पष्ट, सभी व्यक्तिगत लेन देन बने रहेंगे निशुल्क। हर स्कूल में वाहन अटेंडेंट रखना होगा अनिवार्य, बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन आयुक्त ने सभी विद्यालयों के प्रबंधकों को जारी किया पत्र। और पहाड़ी इलाकों में बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों के जल स्तर में वृद्धि, अगले 2 दिनों के लिए कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मेरठ के मोदीपुरम क्षेत्र में एक मंच से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। इस अवसर पर मेरठ के सांसद अरुण गोविल समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी कांवड़ यात्रियों पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाईं। इसके साथ ही पूरे कांवड़ मार्ग पर हेलीकॉप्टर से सभी शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को कांवड़ यात्रियों की नियमित सुरक्षा, सम्मान, सुविधा आदि की समुचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार पूरी तत्परता से कांवड़ यात्रियों के स्वागत और सुरक्षा के लिए तैयार है।
2: हिस्सा बनने के लिए आए हुए सभी कांवड़ यात्रियों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूँ, उन सबका अभिनंदन करता हूँ उनकी सुरक्षा के लिए और उनके स्वागत के लिए। हम सब पूरी तत्परता के साथ तैयार हैं।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन, सेक्टर मजिस्ट्रेट, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी, जोन, रेंज, जनपद, थाना स्तर के साथ ही तमाम पुलिस अधिकारी भी अभियान का हिस्सा बनकर सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आयोजित काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वह मुख्यमंत्री आवास से लेकर विधान भवन तक निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर देशभक्ति का संदेश देते हुए अमर शहीदों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। तिरंगा यात्रा के उपरांत मुख्यमंत्री स्वतंत्रता सेनानियों,

0: अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र नाथ लाहड़ी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए काकोरी शहीद स्मारक जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर बाद सिद्धार्थनगर जिले में डुमरियागंज और बांसी विधानसभा क्षेत्रों के लिए करीब 311 करोड़ रुपए की 107 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल कल आगरा में दो दिवसीय एआई फ्यूचर रेडी कॉन्क्लेव 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा,
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच अनुरूप कार्य जो हो रहा है कि धरातल पर इसका प्रभाव दिखाई दे, कृषि से लेकर स्वास्थ्य से लेकर छोटे मध्यम उद्योग और तमाम ऐसी जगहों पे।

0: के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा,
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच अनुरूप कार्य जो हो रहा है कि धरातल पर इसका प्रभाव दिखाई दे, कृषि से लेकर स्वास्थ्य से लेकर छोटे मध्यम उद्योग और तमाम ऐसी जगहों पे एआई का इस्तेमाल करते हुए भारत कैसे आगे बढ़ेगा, और खास तौर पे हमारे युवा इन प्रतिभा मैंने देखी, ये जो छात्र छात्राएं हैं कॉलेजेस में, उनको एआई के लिए क्या सरकार प्रोत्साहन दे रही है उसके बारे में जानकारी दी।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि एआई के बिना भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता।
2: एआई का भविष्य क्या है, हमें कितना इस्तेमाल करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और इसके बिना भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता, विशेषज्ञों ने अपने विचार देखे, इस वैचारिक मंथन से अमृत निकलेगा, वो भारत को प्रधानमंत्री का विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को पूरा करेगा।
0: कार्यक्रम में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी शामिल हुए। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रखेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो यह केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाम मात्र दर से लागू होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _GKP पर भी उपलब्ध है। स्कूल जाने वाले 12 वर्ष तक के बच्चों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने नई पहल की है। ऐसे बच्चों को लाने ले जाने वाले हर स्कूल वाहन में अटेंडेंट यानी परिचारक या परिचारिका रखना अनिवार्य होगा, जो बच्चों को वाहन में सुरक्षित चढ़ाने और उतारने की जिम्मेदारी संभालेगा। इसे लेकर परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने प्रदेश के सभी विद्यालयों के प्रबंधकों को पत्र जारी किया है। पत्र में स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश भी दिए गए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल प्रयागराज में केपी ग्राउंड में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए देश के विकास में युवाओं की सहभागिता को लेकर चर्चा की। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल लखनऊ में CSIR NBRI के बंथरा कैंपस में इको एजुकेशनल हब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह इको एजुकेशन हब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस परिकल्पना को साकार करता है, जिसमें विज्ञान सतत विकास और जन भागीदारी को एकीकृत करते हुए देश की वनस्पतिक धरोहर को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत में डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह केंद्र विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और प्रकृति प्रेमियों के लिए पर्यावरण शिक्षा, जैव विविधता संरक्षण तथा अनुभवात्मक अधिगम का अनूठा मंच सिद्ध होगा।
3: प्रत्येक प्रदेश के पौधे भी लगाए गए हैं, वो चाहे तो आकर के अपने प्रदेश के पौधे के साथ खड़े होकर के तस्वीर खिंचवा सकते हैं, सेल्फी खिंचवा सकते हैं। दूसरे विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर के यहाँ विधिवत PhDs और दूसरी तरह के अध्ययन कोर्सेज की भी व्यवस्था की जा सकती है।
0: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल प्रयागराज में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जनपद एवं क्षेत्र से जुड़े विभिन्न स्थानीय विषयों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं, जनहित से जुड़े विषयों तथा स्थानीय स्तर पर सामने आ रही समस्याओं की जानकारी प्राप्त की और संबंधित अधिकारियों को प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कल बस्ती में जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों से उनके इलाज और अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि
4: मरीजों को अभी तक वातानुकूलित सेवाएं वहां उपलब्ध नहीं थी, तत्काल AC लगाए जाने के निर्देश दिए, पूरे वार्ड को वातानुकूलित किया जाए, इसके लिए धनराशि रोगी कल्याण निधि में उपलब्ध है, अस्पताल परिसर की पूरी मरम्मत किया जाए, सड़कें जो टूटी हैं बनाई जाएं।

प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मऊ में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय कल्पनाथ राय की पुण्यतिथि पर 5 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि करीब 16 करोड़ रुपए की इस परियोजना से मऊ में स्वच्छ एवं सस्ती विद्युत की उपलब्धता बढ़ेगी। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। घाघरा नदी बाराबंकी में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बदायूं और फर्रुखाबाद में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान से पास बह रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई निरीक्षण कर मेरठ में कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा, कहा कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैयार है सरकार। उपभोक्ताओं के लिए निशुल्क रहेगा UPI, केंद्र सरकार ने किया स्पष्ट, सभी व्यक्तिगत लेन देन बने रहेंगे निशुल्क। हर स्कूल वाहन में अटेंडेंट रखना होगा अनिवार्य, बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन आयुक्त ने सभी विद्यालयों के प्रबंधकों को जारी किया पत्र। और पहाड़ी इलाकों में बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि, अगले 2 दिनों के लिए कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित उल्लास बापट का संतूर वादन, राग है चारुकेशी और आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं शैलेंद्र। तो लीजिए सुनिए पंडित उल्लास बापट का संतूर पर बजाया राग चारुकेशी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने आनंद लिया था पंडित उल्लास बापट के संतूर पर बजाए राग चारुकेशी का। आपके साथ तबले पर संगत की थी श्री शैलेन ने और अब हम आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी में तैयार वाद्य वृंद रचना।

अभी अपने सुनी वाद्य वृंद रचना हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जीडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
5: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
6: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा।

जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर पुद्दुचेरी में हैं। श्री शाह गोरीमेडू के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासीवयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुडुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे पुडुचेरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।
2: सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांगें विस्तार से सरकार के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने JPSC JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3,336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन

0: 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
2: उड़ीसा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। आईएमडी ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगड़ा और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों का जल स्तर बढ़ने से यहां निचले और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ आने का डर सता रहा है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में पूरी तैयारी बनाए हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया की एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की अश्मिता चालिहा और चीन की क्यू हान के बीच मुकाबला जारी है। मैच का पहला गेम क्यू हान ने 21-14 से अपने नाम कर लिया है। अमरीकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमरीका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, युवा सिर्फ सवाल ना पूछे समाधान भी खोजे, भारत को नए शोध की जरूरत। जनसत्ता की सुर्खी है, बिना सोचे समझे स्वीकार की जाने वाली बातों पर सवाल उठाएं विद्यार्थी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, याद रखिएगा जो सीखेगा वो जीतेगा। जेंजी को पीएम ने दिया संदेश, कहा पैकेज और नौकरी की तुलना करने से बचे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जेंजी के रंग में मोदी, सतपुड़ा के पराठे, हॉस्टल निकनेम के साथ भविष्य की सीख, आरा कारा विंधी जिया सराय का पोहा। पंजाब केसरी ने अकाली भाजपा का गठजोड़ शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, राज्य स्तर पर जब भी पंजाब में अकाली दल के नेतृत्व में प्रकाश सिंह बादल या उनके पुत्र सुखबीर बादल की सरकार बनी उसमें भाजपा के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन अकाली जनसंघ गठजोड़ की इस विरासत में इस दौरान राज्य की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप मूलभूत बदलाव भी आते रहे हैं। दैनिक का शीर्षक है, हाइब्रिड और ईवी कारें सस्ती होंगी, ज्यादा प्रदूषण वाली होंगी महंगी, ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव, नई पॉलिसी अप्रैल 2027 से लागू होंगी। अमर उजाला की सुर्खी है, अंतरिक्ष के कचरे से होगा कारोबार, मलबा हटेगा, उपग्रहों की मरम्मत भी, एस्ट्रोस्केल क्लियर स्पेस जैसी कंपनियों ने शुरू किया काम। जनसत्ता ने आस्था शीर्षक से विशेष खबर में लिखा है, कावड़ियों पर पुष्प वर्षा, परंपरागत के साथ आधुनिक व्यंजन भी, मुख्यमंत्री योगी ने कहा 4.5 करोड़ कावड़िए जल लेकर आएंगे।

0: श्रद्धालु अपने इलाके में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। लोकसत्य के अनुसार E20 विवाद के बीच सरकारी तेल कंपनियों का दावा, ईंधन पूरी तरह सुरक्षित, न घटेगी माइलेज, न खराब होगा इंजन। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार बठिंडा में हनी ट्रैप गिरोह, 23 महिलाओं समेत 28 काबू, वायुसेना अफसर ने पाक को दी सैन्य जानकारी, गिरफ्तार। दैनिक जागरण का शीर्षक है, एआई ने भारत में जितनी नौकरियां घटाई उससे 2.5 गुना ज्यादा पैदा की। नोमुरा की रिपोर्ट में दावा, 83,100 एआई से जुड़ी नौकरियां बढ़ी, 31,921 पर पड़ा असर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप की अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस डिस्कस वेज टू फर्दर स्ट्रेंथन कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन की एरियाज। हर घर तिरंगा कैंपेन बिगिंस टुडे, कोइंसाइडिंग विद 150th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। अपॉइंटमेंट ऑफ 30 जजेस फॉर हाई कोर्ट्स ऑफ मद्रास, कैलकटा, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका नोटिफाइड। अमरनाथ यात्रा टू रिमेन सस्पेंडेड फ्रॉम बोथ पहलगाम एंड बालटाल रूट्स ड्यू टू रिपेयर ऑफ ट्रैक्स एंड फोरकास्ट ऑफ बैड वेदर। IMD इश्यूज ऑरेंज अलर्ट फॉर हैवी रेनफॉल इन उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़ टुडे। साग्निक रॉय एंड सायंतन कुशारी विन गोल्ड मेडल इन अंडर 31 पेयर्स एट 9th वर्ल्ड ब्रिज फेडरेशन यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप्स। एनदर न्यूज इन डिटेल। Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discussed ways to further deepen India-US Comprehensive Global Strategic Partnership across key areas. Mr. Modi received a phone call from Vice President Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defense, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Narendra Modi has said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi, yesterday, the Prime Minister cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat.
3: Aaj Bharat economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. Yahi Viksit Bharat ki majboot neev ka saboot hai. Is majboot neev par आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
2: He further urged the students to keep the national interest at the center of their decisions.
3: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
2: The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. The campaign, which began in 2022 as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, has since evolved into one of the country's largest public participation movements. Over the years, it has

0: the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discuss ways to further strengthen comprehensive global strategic partnership in key areas. Har Ghar Tiranga campaign begins today, coinciding with 150th anniversary of India's national song, Vande Mataram. Appointment of 30 judges for High Courts of Madras, Calcutta, Madhya Pradesh and Karnataka notified. Amarnath Yatra to remain suspended from both Pahalgam and Baltal routes due to repair of tracks and forecast of bad weather. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Uttarakhand and Chhattisgarh today. Sagnik Roy and Sayantan Koshari win gold medal in under 31 pairs at 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस ने अहम शोबों में जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू हो रही है। ये मुहिम भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के मौके पर शुरू की जा रही है। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक हाई कोर्ट्स के लिए 30 जजों की तकरीरी को नोटिफाई किया गया है। रास्तों की मरम्मत और खराब मौसम की पेशगोई के बाइस पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से अमरनाथ यात्रा मुअत्तल रहेगी। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और सगनिक रॉय और सयांतन कुशारी ने नवें आलमी ब्रिज फेडरेशन यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में 31 बरस की उम्र वाली जोड़ी के मुकाबले में सोने का तमगा जीता। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कल अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस की जानिब से फोन कॉल मौसूल हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने अहम शोबों में भारत और अमरीका के दरमियान जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद वसअत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने आला सतही रवाबित में मुसलसल पेशरफ्त का जिक्र किया और तिजारत, दिफा, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, तवानाई की यकीनी फराहमी और अहम मादनियात के शोबों में तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी ने जनाब वेंस और उनकी अहलिया उषा वेंस को बेटे की पैदाइश पर मुबारकबाद दी और पूरे खानदान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में नए शोबे उभर रहे हैं जो नौजवानों के लिए नए मौके फराहम कर रहे हैं। कल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी दिल्ली के 57वें जलसे तकसीम असनास से खिताब करते हुए उन्होंने सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन्स जैसे शोबों का जिक्र किया और कहा कि भारत तमाम शोबों में खुद कफील बनने की समत में काम कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि खुद किफालत की ये कोशिश विकसित भारत बनाने के लिए एक मजबूत बुनियाद साबित होगी।
2: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य, सुंदर, विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो कौमी मफाद को अपने फैसलों के मरकज में रखें।
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक जारी रहेगी। इस पहल का मकसद शहरियों को हुब्बुल वतनी, कौमी इत्तेहाद और भारत के मालामाल विरसे का जश्न मनाने की सरगर्मियों में शिरकत करने और कौमी परचम लहराने के लिए शहरियों की हौसला अफजाई करना है। इस मुहिम का आगाज आजादी का अमृत महोत्सव की

0: तकरीबात के हिस्से के तौर पर 2022 में किया गया था। उस वक्त से अब तक ये मुल्क की सबसे बड़ी अवामी शिरकत की तहरीक के तौर पर उभरी है। गुज़िश्ता बरसों में यह हकीकी तौर पर लोगों की तहरीक बन गई है जो मुल्क के सभी खित्तों और बिरादरियों को भारत के इत्तेहाद, वक़ार और मजमूई कौमी शनाख्त का जश्न मनाने के लिए तहरीक देती है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस साल की हर घर तिरंगा मुहिम खुसूसी अहमियत की हामिल है क्योंकि इस साल भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की भी 150वीं सालगिरह मनाई जा रही है। कौमी गीत और कौमी परचम का एक साथ होना हुबुल वतनी का मुनफरिद जश्न है। तकरीबात के हिस्से के तौर पर पूरे मुल्क में एक साथ मिलकर वंदे मातरम गाए जाने का एहतमाम किया जाएगा। इसके अलावा योम आज़ादी की यादगार के तौर पर 14 अगस्त को मुल्क की तकसीम की हौलनाकियों को याद किया जाएगा ताकि मुल्क की तकसीम के बाईस होने वाली तकलीफों, मसाइब और बेघर होने जैसे हौलनाक वाकयात को याद रखा जा सके। इस सिलसिले में पूरे मुल्क में खामोश मार्च निकाले जाएंगे। मुल्क की तकसीम से मुतालिक नुमाइशों का एहतमाम किया जाएगा। इसके साथ ही सकाफत की वजारत ने लोगों से कौमी परचम पर फख्र का इजहार करते हुए इसे लहराने और कौमी गीत वंदे मातरम को सीखने और गाने की हौसला अफजाई की है। बैरून मुल्क भारत के 200 से ज्यादा सिफारतखाने, हाई कमिश्नर और कौंसिल खाने इस मुहिम के तहत मुख्तलिफ तकारीब का इनकाद करेंगे। इस साल की अहम तकरीब सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले है जिसमें 54 भारतीय मिशंस शिरकत करेंगे। यह रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होगी और सैन फ्रांसिस्को में भारत के कौंसिल जनरल पर खत्म होगी। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह दो रोजा सरकारी दौरे पर कल रात पुदुचेरी पहुंचे जहां लोक निवास में उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस वक्त जनाब शाह गोरी मैदू के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अता किए जाने की तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट।
2: मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह बावकार प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अता किए जाने की तकरीब में पुदुचेरी पुलिस को खसूसी परचम पेश करेंगे। सदर जमहूरिया ने 8 मई को पुदुचेरी पुलिस को उनकी गैर मामूली खिदमात, नज्म व ज़ब्त और मुमताज़ हुसूलियाबियों के एतराफ़ में पुलिस कलर अता किए जाने का ऐलान किया था। इस मौके पर पुलिस की मुख्तलिफ शाखों के जवान खसूसी परेड में हिस्सा ले रहे हैं। तकरीब में पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथन, वजीर आला एन रंगासामी और उमूर दाखिला के वजीर एम ए निमिश्वाम भी मौजूद हैं। दोपहर को जनाब शाह पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पुदुचेरी से विभिन्न इसनाद की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने काकोरी ट्रेन एक्शन के अजीम मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन भारत की आज़ादी की जद्दोजहद का एक नाकाबिल फरामोश बाब है जिसने बरतानवी हुकूमत के जुल्म जबर और नाइंसाफी के खिलाफ मुसल्ला इनकलाबी तहरीक को नई रफ्तार दी। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल की क्यादत में बहादुर मुजाहिदीन आजादी ने अपनी बेमिसाल जुर्रत और अजम के जरिए बरतानवी हुकूमत को यह पैगाम दिया कि मुल्क के वसाइल उसके अवाम की मिल्कियत हैं। जनाब शाह ने कहा कि मुल्क काकोरी ट्रेन एक्शन के तमाम अजीम मुजाहिदीन आजादी की हमेशा एहसान मंद रहेगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकज ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक हाई कोर्ट्स के लिए 30 जजों की तकरूरी को नोटिफाई किया है। इन तकरूरियों में सबसे ज्यादा 15 जज मद्रास हाई कोर्ट के लिए मुकर्रर किए गए हैं। कानून और इंसाफ की वजारत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इन तकरूरियों में 20 वकील और 10 अदालती अफसरान शामिल हैं। मद्रास हाई कोर्ट में मजमूई तौर पर 15, कलकत्ता हाई कोर्ट में 8, कर्नाटक हाई कोर्ट में 6 और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 1 जज की तकरूरी अमल में आई है। ये तकरूरियां सदर जमहूरिया ने भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से मशावरत के बाद की हैं। नए तकरूर करदा जजों से तवक्को है कि वो आने वाले दिनों में अपने ओहदे का हलफ लेकर जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। इन तकरूरियों से चारों हाई कोर्ट्स में जजों की खाली आसामियों को पुर करने और जेर अल्तवा मुकदमात के जल्द निपटाने में मदद मिलने की तवक्को है। जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती के इम्तहानात में मुबैना बेजाब्तगियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले झारखंड के तलबा आज रांची में रियासती हुकूमत के नुमाइंदों के साथ एक और दौर की बातचीत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।

0: झारखंड हुकूमत और एहतजाज करने वाले तलबा के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत का अगला दौर आज दोपहर के करीब होने वाला है। हुकूमत की कमेटी ने वजीर आला हेमंत सोरेन से मुलाकात की और तलबा के साथ पहले दौर की बातचीत में होने वाली पेशरफ से उन्हें आगाह किया। हुकूमत और एहतजाज करने वाले तलबा के मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान आला सतह की बातचीत का पहला दौर कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में खुशगवार माहौल में हुआ। हुकूमत के नुमाइंदों ने कहा कि वो इम्तिहान के निजाम में जामे इस्लाहात के लिए पुरअज़्म हैं। इसी दौरान तलबा रहनुमा रविन्द्र पासवान ने कहा कि तलबा गुज़श्ता 15 दिनों से गैर मुअय्यना मुद्दत के धरने पर बैठे हैं और उन्होंने अपने मुतालबात तफसील के साथ हुकूमत के सामने रख दिए हैं। तलबा का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती उनकी तहरीक जारी रहेगी। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
1: भारत के महकमा मौसमियात ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के इलाकों में तेज से बहुत तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और मुल्क के शिमाल मशरिकी इलाकों में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। आईएमडी के मुताबिक जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जजायर में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कहा है कि दिल्ली में आज आसमान अब्र आलूद रहेगा और यहां हल्की बारिश होने का इम्कान है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान उत्तराखंड के कई जिलों में तेज से बहुत तेज बारिश की वार्निंग जारी की है। आज बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली के लिए तेज से बहुत तेज बारिश के इम्कान के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और चंपावत जिलों के लिए बाज मकामात पर शदीद बारिश के इम्कान के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों को गरज चमक और आसमानी बिजली गिरने के इम्कान के बायस येलो अलर्ट के तहत रखा गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मौसमियात के महकमे के मुताबिक आज रियासत के पहाड़ी जिलों में तेज बारिश का इम्कान है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में भी तेज से बहुत तेज बारिश की वार्निंग जारी की गई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टेहरी, पावड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में बाज मकामात पर तेज बारिश के इम्कान के पेश नज़र येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के हालात के पेश नज़र कुदरती आफात से निपटने और बाज आबादकारी के महकमे के सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन ने तमाम मुतालिका अजला को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत दी है। महकमों को जरूरी वसायल और आलात तैयार रखने और सड़कों पर रुकावट पैदा होने की सूरत में उन्हें फौरी तौर पर साफ करने की हिदायत भी दी गई है। देहरादून से साक्षी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: जम्मू कश्मीर में हालिया बारिश, रास्तों की मरम्मत के काम और आइंदा चंद दिनों में खराब मौसम की पेशगोई के बायस आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से अमरनाथ यात्रा मुअत्तल कर दी गई है। यह फैसला यात्रियों की हिफाजत के पेश नजर एहतियाती इकदाम के तौर पर किया गया है। रामबन जिले समेत कश्मीर के बाज इलाकों में बारिश और खराब मौसम के हालात के पेश नजर एहतियाती तौर पर कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रियों के किसी नए काफिले को रवाना होने की इजाजत नहीं दी गई। 3,336 यात्रियों ने कल पवित्र गुफा के दर्शन किए और सरहदी सड़क तंजीम बीआरओ खराब रास्तों की मरम्मत और देखभाल का काम अंजाम दे रही है। हुक्काम ने यात्रियों को मशवरा दिया है कि वो सरकारी हिदायत और एडवाइजरी पर अमल करें। चीन के हेफई में मुनाकिदा 9वीं आलमी ब्रिज फेडरेशन यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सियानतन कुशारी ने 31 साल तक की जोड़ी के मुकाबले में सोने का तमगा जीता। पहले मरहले के आखिरी राउंड में 34 जोड़ियों ने हिस्सा लिया और सरफहरिस्त 14 जोड़ियां जिनमें भारतीय जोड़ी भी शामिल है फ्लाइट ए में पहुंच गईं। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
0: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वज़ीर-ए-आज़म के आईआईटी दिल्ली के 57वें सालाना जलसे तकसीम असनाद तकरीब से खिताब की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तलबा से कहा कि नौजवान बाख्तियार होंगे तो भारत भी मजबूत होगा। दुनिया तेजी से बदल रही है, कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि आइंदा 20 से 30 साल बाद दुनिया कैसी होगी। रोजनामा प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान को शाये करते हुए सुर्खी बनाया है, गैर रुकाजी ईंधन साफ सुथरी तवानाई की ताकत और अजाइम की अलामत है। रोजनामा इनकलाब ने एक और अहम खबर को सुर्खी बनाया है, दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन को मजबूत बनाने के लिए 187 उम्मीदवारों को तकर्रुनामे सौंपी

0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीका के नायब सदर जेटी वेंस ने अहम शोबों में जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू हो रही है। ये मुहिम भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के मौके पर शुरू की जा रही है। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक हाई कोर्ट्स के लिए 30 जजों की तकरीरी को नोटिफाई किया गया है। रास्तों की मरम्मत और खराब मौसम की पेशगोई के बाइस पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से अमरनाथ यात्रा मुअत्तल रहेगी। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और सगनीक रॉय और सयातन कुशारी ने नवे आलमी ब्रिज फेडरेशन यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में 31 बरस की उम्र वाली जोड़ी के मुकाबले में सोने का तमगा जीता। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र और हमारे कार्यक्रम आप न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज सुनने का, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 800-001-4242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 800-001-4242।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं नमस्कार, वणक्कम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आज का ये कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज लेकर मैं हाजिर हूँ, यानी आपके आज के कार्यक्रम होस्ट और दोस्त मोना पांडे। श्रोताओं, ये तो हम सभी जानते हैं कि कैलेंडर में कुछ तारीखें सिर्फ तारीखें नहीं होती, वे इतिहास की आवाज होती हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि हमने क्या खोया, क्या पाया और भविष्य के लिए क्या बचाकर रखना है। 9 अगस्त भी ऐसी ही एक तारीख है। एक ही दिन हमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम की हुंकार सुनाई देती है, दुनिया की आदिवासी संस्कृतियों और उनके ज्ञान के सम्मान का संदेश भी मिलता है और नागासाकी की त्रासदी में शांति का मूल्य भी समझ में आता है। आइए आज की इस विशेष यात्रा में चलते हैं आज़ादी से आदिवासी अस्मिता तक और युद्ध की विभीषिका से विश्व शांति तक।

साल था 1942। द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था और भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजी शासन से भारत छोड़ने की स्पष्ट मांग उठाई। 8 अगस्त 1942 बंबई के गोवालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया। इसी ऐतिहासिक अवसर पर महात्मा गांधी ने देशवासियों को ये आह्वान दिया जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अमर मंत्र बन गया, करो या मेरो मरो। और फिर आया 9 अगस्त 1942। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन नेतृत्व की गिरफ्तारी आंदोलन की लौ को बुझा नहीं सकी।

बल्कि इसके बाद आंदोलन देश के अनेक हिस्सों में जनता के व्यापक प्रतिरोध के रूप में फैल गया। यही कारण है कि अगस्त 1942 की इस ऐतिहासिक घटना को अगस्त क्रांति के नाम से भी याद किया जाता है। लेकिन इस आंदोलन की एक बेहद रोचक कहानी रेडियो से भी जुड़ी हुई है श्रोताओं, जो आज मैं आपसे साझा करनी चाहूंगी। युवा उषा मेहता और उनके साथियों ने भूमिगत कांग्रेस रेडियो चलाया, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सेंसरशिप के बीच समाचार और आंदोलन से संबंधित संदेश प्रसारित किए जाते थे। यानी उस दौर में रेडियो केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, वो सत्य की आवाज और प्रतिरोध का माध्यम भी बन गया था। और शायद यही इस इतिहास की सबसे बड़ी सीख है कि आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन विचारों को नहीं। आइए बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की ओर। आज हम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस भी मना रहे हैं। अब इतिहास की आवाज से प्रकृति की आवाज की ओर आइए बढ़ते हैं। 9 अगस्त इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, यानी विश्व के आदिवासी देशों का, आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में निर्णय लिया कि हर वर्ष 9 अगस्त को ये दिवस मनाया जाएगा। इसकी तारीख 1982 में जेनेवा में हुई संयुक्त राष्ट्र के वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनस पॉपुलेशंस की पहली बैठक की स्मृति से जुड़ी हुई है। श्रोताओं, आज दुनिया के लगभग 90 देशों में लगभग 476 मिलियन इंडिजिनस पीपल रहते हैं। वे विश्व की कुल आबादी का 6% से भी कम है, लेकिन लगभग 5000 अलग अलग संस्कृतियों और हजारों भाषाई परंपराओं के वाहक हैं। भारत की बात करें तो हमारी विविधता में आदिवासी समुदायों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी लोक कथाएं, लोकगीत, नृत्य, हस्तशिल्प, भाषाएं, पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति के साथ उनका गहरा संबंध हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आदिवासी ज्ञान केवल अतीत की स्मृति नहीं है, प्रकृति, जैव विविधता, पारंपरिक खाद्य प्रणालियों और पर्यावरण के संरक्षण से जुड़ा उनका अनुभव आज भी दुनिया के लिए उपयोगी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इंडिजिनस पीपल की पारंपरिक भूमि दुनिया के महत्वपूर्ण जैव विविध क्षेत्रों से जुड़ी है और उनका पारंपरिक ज्ञान प्रकृति को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो आज का संदेश बहुत सरल है, विकास के दौर में आगे जरूर बढ़िए, लेकिन अपनी जड़ों को पीछे मत छोड़िए, क्योंकि संस्कृति तभी जीवित रहती है जब अगली पीढ़ी उसे केवल किताबों में नहीं बल्कि सम्मान के साथ अपने जीवन में भी जगह देती है।

और आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के तीसरे पड़ाव की ओर और इतिहास के उस अध्याय की ओर बढ़ते हैं जो मानवता को युद्ध की कीमत और शांति की आवश्यकता दोनों को समझाता है। 9 अगस्त 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जापान के नागासाकी शहर पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु बम गिराया। इससे 3 दिन पहले 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। नागासाकी की घटना ने मानव इतिहास में परमाणु युग को एक निर्णायक मोड़ दिया। इसके बाद दुनिया ने महसूस किया कि आधुनिक विज्ञान की शक्ति जितनी बड़ी है उसके उपयोग की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। नागासाकी दिवस किसी युद्ध का उत्सव नहीं है, ये एक स्मरण दिवस है। ये एक ऐसा स्मरण है जो हमें बताता है कि विज्ञान का उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए, उसे विनाश की ओर ले जाना नहीं। और इसीलिए आज जब हम नागासाकी को याद करते हैं तो संदेश केवल जापान के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। युद्ध समाप्त होने के बाद शांति स्थापित करना पर्याप्त नहीं होता श्रोताओं, शांति की संस्कृति को पहले से मजबूत करना आवश्यक है। अब जरा इन तीनों दिवसों को एक साथ देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन हमें देता है स्वतंत्रता और साहस का संदेश। विश्व आदिवासी दिवस हमें देता है विविधता, संस्कृति और प्रकृति के सम्मान का संदेश। और नागासाकी दिवस हमें देता है शांति और मानवता की रक्षा का संदेश। तीनों को जोड़ें तो एक खूबसूरत विचार सामने आता है, स्वतंत्रता हो तो जिम्मेदारी के साथ, विकास हो तो प्रकृति और संस्कृति के सम्मान के

और शक्ति हो तो मानवता की रक्षा के लिए। श्रोताओं, आज 9 अगस्त को हम अपने आप से 3 छोटे से सवाल पूछ सकते हैं। क्या हम अपने देश की आज़ादी के इतिहास को केवल किताबों में पढ़ते हैं या उसके मूल्यों को भी समझते हैं? क्या हम अपने आसपास मौजूद लोक संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का सम्मान करते हैं? और क्या हम अपने छोटे छोटे व्यवहारों से शांति की संस्कृति को मजबूत करते हैं? क्योंकि इतिहास केवल बीती हुई घटनाओं का संग्रह नहीं है श्रोताओं, इतिहास वो आईना है जिसमें भविष्य का चेहरा दिखाई देता है। तो आइए 9 अगस्त को हम 3 संकल्प अपने साथ लेकर चलें। आज़ादी का सम्मान करेंगे, विविधता का सम्मान करेंगे और शांति का साथ देंगे, क्योंकि एक देश की असली शक्ति केवल उसकी सीमाओं में नहीं।

इन्हीं विचारों के साथ नमस्कार प्रयागराज से मैं मोना पांडे आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई तारीख, एक नई कहानी और कुछ अनकही अनजानी लेकिन बेहद खूबसूरत जानकारियों के साथ। तब तक याद रखिए, इतिहास को जानिए, विरासत को बचाइए और भविष्य को शांति से सजाइए।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ।

0: 8700014242 पर।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह
2: फसा। अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
5: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
4: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

और लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए फिल्म संगीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गाना, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ें।

आइए अब सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक को फिल्म अकेले हम अकेले तुम में। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन तैयार की है अनु मलिक ने।

अभी आपने सुना फिल्म संगीत, हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब समय उचला है सामयिक चर्चा सुनने का, ये रिले करेंगे लखनऊ केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की ऐतिहासिकता, जन जागरण में भूमिका के साथ केंद्र सरकार द्वारा लाए गए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन बिल 2026 के महत्व पर जयनारायण महाविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर गिरिजेश त्रिपाठी से खास बातचीत। वार्ताकार है शैलेंद्र शर्मा।
2: वंदे मातरम ये केवल दो शब्द नहीं बल्कि भारत की आजादी की उस अमर गूंज का नाम है जिसने गुलामी की बेड़ियों में जकड़े करोड़ों भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की अलख जगाई। यही वो उद्घोष था जिसे बुलंद करते हुए अनगिनत क्रांतिकारी फांसी के फंदे तक मुस्कुराते हुए पहुंचे। हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने लाठियां और गोलियां झेली और लाखों देशवासियों ने भारत माता की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वंदे मातरम एक बार फिर राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 के माध्यम से वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान यानी जनगणमन के समान कानूनी संरक्षण दिया गया है। ऐसे में ये समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतिहास में वंदे मातरम की भूमिका क्या रही, आज इसकी प्रासंगिकता क्या है और ये विधेयक देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जीवन पर क्या प्रभाव डाल सकता है। आज इन्हीं सभी पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जयनारायण पीजी कॉलेज लखनऊ में इतिहास विभाग के प्रोफेसर गिरिजेश त्रिपाठी जी। सर, आपका आकाशवाणी पर बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सलेन जी।
2: सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि संसद में लाए गए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने की जो पहल की गई है, इतिहास और वर्तमान सामाजिक संदर्भ में आपको इसकी आवश्यकता क्यों महसूस होती?
3: देखिए सलेन जी, आप एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं कि जब हम कानूनी रूप से किसी चीज को ले आते हैं तो वो भले ही कुछ समय के लिए हमको लगता है कि वो हमारे ऊपर एक अनुशासनात्मक कार्यवाही के तौर पे डाली गई है, लेकिन कई बार उसको फॉलो करते करते वो हमारे आदतों में, हमारे स्वभाव में कब शामिल हो जाता है हमें पता नहीं चलता है। जैसे आप मेट्रो स्टेशन पे जाएं, और मेट्रो स्टेशन से ही जुड़ा हुआ बहुत सारी स्टेशन है, दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन की मैं बात करता हूँ। मेट्रो स्टेशन की जो दीवारें हैं उस पे लिखा हुआ है कि थूकना मना है या कहीं इधर उधर ना थूकें। वही जनता जब जाती है, रेलवे स्टेशन है अपना इंडियन रेलवे का, वहां पे ये सब चीजें नहीं लिखी हैं, कोई जुर्माना नहीं है, कोई कानून नहीं है। तो कई बार हम देखते हैं उस स्वभाव के उसमें है उनके कि बंदिश नहीं है, कोई कानून नहीं है, वो थूकना शुरू कर देते। तो कई बार होता क्या कि हम जब अनुशासनात्मक रूप से किसी चीज को लेते हैं, कोई चीज हमारे ऊपर व्यवस्था के रूप में डाली जाती है तो हमारे स्वभाव में आ जाती है। चूंकि वंदे मातरम कोई सामान्य दो शब्द नहीं है, अगर हम बात करें इतिहास की तो आप कहेंगे कि ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन बंकिम चंद्र जी ने जब इसको लिखा है तो उसमें बंगाली भी है और संस्कृत भी है। तो ये प्योर संस्कृत भाषा का भी नहीं है, मराठी भी नहीं है, प्योर बंगाली भी नहीं है, हिंदी भी नहीं है, तो ये किस भाषा का शब्द है? तो जब इसका उत्तर आप अपने अंतर्मन में तलाशेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो हमारे भारत में रहने वाले लोगों की हृदय भाषा का शब्द है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक और गुजरात से लेकर आसाम तक, तो ये पूरा जो देश है, इस देश में रहने वाले विभिन्न जो भाषा भाषी लोग हैं, विभिन्न पहनावों के साथ जुड़े हुए, विभिन्न खान पान के साथ जुड़े हुए, वो इस पूरी मातृभूमि को एक देवी स्वरूप में मानकर, अपनी मातृभूमि मानकर इसकी आराधना करते हैं, इसका वंदन करते हैं। उसको ये अभिव्यक्त करने वाले दो शब्द हैं वंदे मातरम, और इसने न केवल हमको ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा संबल दिया है, वरन आजादी के लिए जब हमारा आंदोलन

0: चल रहा था उस समय भी इन दो शब्दों ने हमको इतना प्रेरित किया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा देश, कोई ऐसा उदाहरण किसी कालखंड में आपको नहीं मिलेगा जब किन्हीं दो शब्दों ने इतना प्रभावित किया हो इतने बड़े जनमानस को, इतनी बड़ी जनसंख्या को।
1: आजादी का गान बन गया।
0: जी बिल्कुल, आजादी का गान बन गया। इसका उद्देश्य इतना ही है कि जब हम व्यवस्था के रूप में किसी चीज को दे देते हैं तो उसको हम बताएंगे कि ये व्यवस्था है, इसका किसी तरह से अपमान नहीं होने देना है,
1: हमारे
0: व्यवहार में शामिल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो ऐतिहासिकता भी उसके अंदर आएगी, ऐतिहासिक रूप से जो इसका महत्व था उससे भी वो जुड़ पाएगी।
1: सर बिल्कुल, आपने उसके ऐतिहासिक बात की, हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सर जानना चाहेंगे कि राष्ट्रगान जनगणमन के समान कानूनी संरक्षण देने का संदेश क्या गया है हमारे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक चिन्हों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाने के लिए, आखिर ये कितना जरूरी था?
0: देखिए सलिन जी, भारतीय संविधान में बड़े स्पष्ट रूप में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों और राष्ट्रगान आदि के संदर्भ में एक व्यवस्था दी गई है, कुछ अनुच्छेद है उससे संबंध में, कि भारत के प्रत्येक नागरिक को या भारत देश में रहने वाले प्रत्येक वासी को, अगर वो नागरिक नहीं भी है, कहीं बाहर से भी आया है और भारत में रह रहा है, तो उसको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का, भारत के राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा। तो ये जो जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है, तो वो तो चूंकि जब हमारा संविधान बना तो एक व्यवस्था के रूप में उसी समय संविधान में ये चीजें लागू कर दी, लेकिन वंदे मातरम हमारी सांस्कृतिक अवचेतना का तो बहुत बड़ा मानदंड था, लेकिन वो सांस्कृतिक अवचेतना के जो ये दो शब्द हैं वंदे मातरम, तो उसमें हुआ क्या कि बाद के दिनों में जब आजादी का जो हम आंदोलन जो हमारा चला, 1947 में हम स्वतंत्र हुए, स्वाधीन हुए, उससे कुछ वर्ष पहले, लगभग मान के चलिए 20 से 25 साल पहले, कुछ दुर्भाग्यवश तुष्टिकरण का एक ऐसा दौर चला हमारे कि जिसमें धर्म और मजहब के नाम पर बहुत सारी बातें राजनीति में हमारे शामिल हो गई, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मजहब के नाम पर हमारा देश बटा, दो टुकड़े हो गए इसके, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कारण बनते चले गए कि एक तुष्टिकरण का भाव कुछ राजनीतिज्ञों के द्वारा कहीं मजबूरी में और कहीं स्वार्थवश इसको लाया गया। तो उसी तुष्टिकरण के चलते वंदे मातरम को जो दर्जा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। देर से ही सही हमारी जो सरकार है, मैं उसका धन्यवाद करना चाहूंगा, हमारी जो अभी वर्तमान में संसद है उसमें बैठे माननीयों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि देर से ही सही, लेकिन उन्होंने इस भाव को समझा कि जो महत्व राष्ट्रगान का हमारे लिए है वैसा ही महत्व, चूंकि ये राष्ट्र को जोड़ने के दो शब्द हैं, हमारे हृदय के तारों को झंकृत करने का गान है, और इसको जब तक हम वही मान वही दर्जा नहीं देंगे जो जनगण मन को देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी ही जो सांस्कृतिक हमारी जो विरासत है उसके साथ हम अन्याय करेंगे।
1: स्तर पर भी अनेक देशों में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। ऐसे में जब भारत में वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने की अब ये पहल की गई है, ये अलग अलग वर्गों में किस तरह से प्रभावी होगी और आप इस पहल को किस तरह से देखते हैं?
0: बिल्कुल सलीन जी, आपने ठीक कहा। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं एशियाई देशों में, अगर हम देखें तो जापान एक बहुत प्रखर राष्ट्रीयता का देश है। हम लोग कहते हैं कि जब जापान में बच्चे से पूछा जाता है कि तुमको क्या बनना है, तो आमतौर पर उसका जवाब डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस से, जैसे हमारे आमतौर पर बच्चे कई बार बोलते हैं, वहां नहीं है। वहां एक सामान्य उत्तर होता है कि हमको अच्छा जापानीज बनना है। तो एक राष्ट्रीयता भाव का एक अच्छा उदाहरण हमारे सामने है जापान का, और वहां पे कानून के जरिए जैसे अभी व्यवस्था दी गई है हमारे यहाँ, इसी तरह कानून के जरिए वहां के राष्ट्रीय प्रतीकों, वहां के राष्ट्रगान को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है, उसका मान होता रहे, उसके मान में निरंतर वृद्धि होती रहे, किसी तरह का अपमान न हो वहां। ऐसे ही चले जाइए आप, कतर है, सऊदी अरब है, यूरोपीय देशों में जाएंगे तो इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, कई उदाहरण हमारे सामने ये देखने में आते हैं कि जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। और ये प्रावधान भारत में थोड़ा इसलिए जरूरी है कि देखिए भारत बहुत ही ज्यादा विविधता है सांस्कृतिक रूप से, यहाँ पे भाषा की दृष्टि से बहुत विविधता है, विचारों में भी बड़ी विविधता है, और ये विविधता हमारी कमजोरी नहीं है। इसको किसी भी व्यक्ति को इसे कमजोरी के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो एकता होती है वो उसी एकता का ही वास्तव में विशिष्ट रूप विविधता होती है। हमारे यहाँ विशिष्टाद्वैत दर्शन है, वो जो द्वैतों में विशिष्ट है वो अद्वैत है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो विविधता है उस विविधता में एकता कैसे स्थापित हो, तो वो उसका प्रयास हमारे दार्शनिकों ने, हमारे चिंतकों ने अनादिकाल से किया है। तो इस विविध देश में जो लोग रहते हैं सबके मन में हमारे इस राष्ट्रगान के प्रति, हमारे वंदे मातरम गीत के प्रति समान भाव जागृत हो पाए और समान रूप से हम उसका सम्मान कर सकें, आने वाली पीढ़ियां भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय आदि चीजों से ऊपर उठकर इस महत्वपूर्ण गीत को आत्मसात कर सकें, इसके लिए मैं समझता हूं एक व्यवस्था देने की जरूरत थी और वो संसद ने की।
1: सर चर्चा की शुरुआत में आपने वंदे मातरम की ऐतिहासिकता को लेकर बात की थी, तो सर आपसे हम समझना चाहेंगे कि वंदे मातरम की रचना किन ऐतिहासिक परिस्थितियों में हुई और स्वतंत्रता आंदोलन में इस गीत ने जन जागरण और राष्ट्रीय चेतना को किस प्रकार नई ऊर्जा दी।
0: जी सलन जी, आप चूंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी भी हूँ और प्रत्येक व्यक्ति को मैं मानता हूँ इतिहास का विद्यार्थी होना चाहिए, थोड़ा बहुत इतिहास जरूर पढ़ना। हम अपने मूल को नहीं जानेंगे तो हम बहुत सारी समस्याओं से रूबरू नहीं हो पाएंगे। देखिए 1870 का दशक था, उसमें एक प्रावधान लागू किया

0: या थोड़ा सा और पहले जाएं तो 1857 का गदर कहते हैं जिसको, या प्रथम
1: स्वतंत्रता।
0: स्वतंत्रता संग्राम हम जिसको मानते हैं, वो असफल हो गया। और उसकी असफलता ने जो राष्ट्रीय भाव से भारत के लिए काम करने वाले लोग थे उनके मन में बड़ी गहरी निराशा बैठ गई। ऐसे में एक बड़ी विशिष्ट घटना घटी, और वो घटना घटी रानी विक्टोरिया के सम्मान में, उनके सम्मान को किस तरह से ब्रिटिश इंडिया में एक कानूनन जामा पहनाया जाए इसका प्रावधान करते हुए एक व्यवस्था 1876 में दी गई यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और उसमें क्या था कि गॉड सेव द क्वीन करके एक गीत था, वो गीत गाना अनिवार्य कर दिया गया। जितने सांस्कृतिक समारोह सरकारी रूप से होते थे उसमें इस गीत को गाना अनिवार्य कर दिया गया। उस
1: इस गीत में
0: समय
1: क्या था?
0: गॉड सेव द क्वीन करके वो,
1: विक्टोरिया का
0: हाँ जी,
1: गुणगान।
0: विक्टोरिया के लिए। तो ब्रिटिश संसद के जरिए ही ये सब चीजें थोपी जाती थी यहाँ पे। तो ये गॉड सेव द क्वीन करके जो गीत था उसको जबरन एक तरह से सभी सरकारी समारोहों में गाने के लिए बाध्य किया गया। उस समय बंकिम चंद चटर्जी जी डिप्टी कलेक्टर के पद पे, उसी अंग्रेजी जो प्रशासनिक हायरार्की थी उसमें काम कर रहे थे, और उन्होंने जब इसको देखा और सुना तो बड़ी ठेस लगी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता से बहुत निराश भी थे, राष्ट्रवादी थे। उन्होंने मन में ठाना कि हमको मातृभक्ति का एक गीत रच, और उन्होंने ये इस उत्कट

0: व्यवस्था 1876 ईस्वी में दी गई यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और उसमें क्या था कि गॉड सेव द क्वीन करके एक गीत था, वो गीत गाना अनिवार्य कर दिया गया। जितने सांस्कृतिक समारोह सरकारी रूप से होते थे उसमें इस गीत को गाना अनिवार्य कर दिया गया। उस
1: इस गीत
0: समय
1: में क्या था?
0: गॉड सेव द क्वीन करके
1: विक्टोरिया का,
0: हाँ जी विक्टोरिया के लिए। तो ब्रिटिश संसद के जरिए ही ये सब चीजें थोपी जाती थी यहाँ पे। तो ये गॉड सेव द क्वीन करके जो गीत था उसको जबरन एक तरह से सभी सरकारी समारोहों में गाने के लिए बाध्य किया गया। उस समय बंकिम चंद चटर्जी जी डिप्टी कलेक्टर के पद पे उसी अंग्रेजी जो प्रशासनिक हायरार्की थी उसमें काम कर रहे थे, और उन्होंने जब इसको देखा और सुना तो बड़ी ठेस लगी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता से बहुत निराश भी थे, राष्ट्रवादी थे। उन्होंने मन में ठाना कि हमको मातृभक्ति का एक गीत रच, और उन्होंने ये इस उत्कट देशभक्त से परिपूर्ण गीत की रचना की। और 1878 के आसपास में यह गीत उनके द्वारा लिखा गया। 1882 में एक सन्यासी विद्रोह पे आधारित एक उन्होंने उपन्यास लिखा, आनंद मठ, आप लोगों ने नाम सुना होगा। उस आनंद मठ में इसको प्रकाशित किया, इस गीत को। उससे पहले गीत को स्वतंत्र रूप में वो लिख चुके थे, लेकिन उस उपन्यास में जी जी गीत तो प्रकाशित हो चुका था। 1882 ईस्वी में जब आनंद मठ प्रकाशित हुई तो उसमें ये गीत पूरा प्रकाशित हुआ, और उसमें एक सन्यासी है जिसके मुंह से इन्होंने इसको गवाया है। वो सन्यासी गाता है, पात्र है उसका,
1: वो अंग्रेजों के खिलाफ
0: जी
1: जो
0: जी
1: समय
0: जी
1: काल
0: जी
1: और
0: सन्यासी
1: जमींदारी
0: जी बिल्कुल बिल्कुल वो जो शोषण व्यवस्था थी कह लीजिए जमींदारी व्यवस्था से पनपी, और उसके मूल में ब्रिटिश शासन था। तो वहां से ये शुरुआत होती है। हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल में अथर्ववेद में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, माँ हमारी पृथ्वी है और उसके हम पुत्र हैं। तो यहाँ तो भगवान राम ने जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, तो ये हमारे यहाँ परंपरा में है, वो वैदिक काल से है, वो रामायण काल में मिलती है, आगे के समय में निरंतर उसका प्रवाह हम देखते हैं। ये जो भूगोल है, हम जिसको हम विश्व के मानचित्र पे, खाली भौगोलिक नक्शा नहीं है भारत देश, भारत में रहने वाला जो भी व्यक्ति है उसको ये भूमि का टुकड़ा के रूप में नहीं देखता है, वो मातृभूमि के रूप में देखता है। और जो भी व्यक्ति उस समय इस चीज को जी रहा था, इस चीज को महसूस कर रहा था, उसके मन में अपार पीड़ा थी। इस गीत ने इतना संबल दिया। इस गीत को जब आप सुनेंगे, मैं अपने श्रोताओं से निवेदन भी करूंगा कि आज तो गूगल का जमाना है, आप उस पर डालेंगे तो हिंदी अर्थ सहित उसका अनुवाद आपको मिलेगा। आप उसको पढ़िए, उसका भाव देखिए, उसको सुनिए, सुनिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपने भावपूर्ण मुद्रा में इसको सुन लिया, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप। 1886 का जो दूसरा कांग्रेस अधिवेशन था उसमें एक कविवर करके थे, कविराज की उपाधि उनकी, उन्होंने ये गीत गाया था। और वो 1896 में इसको स्वरबद्ध तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया। आगे चलकर देखते देखते देखते देखते अठभंग भंग आंदोलन हुआ, उसमें तो ये गीत प्रेरणा स्रोत बन गया। मैडम भीका जी कामा जिन्होंने स्टुटगार्ट में ध्वज अपना फहराया था उस पर वंदे मातरम छपा हुआ था। लाला लाजपत राय जी ने वंदे मातरम अखबार निकाला, पत्रिका निकाली, आपने उनका उन्होंने किया वंदे मातरम। अरे वो वंदे मातरम मंत्र बन गया कि आप ये समझिए 22 साल में जो आंदोलन हुआ अठभंग भंग विरोध के क्रम में, तो 1806 ईस्वी बारीसाल में एक बड़ा एक पदयात्रा निकली, और उस पदयात्रा में जो ही वंदे मातरम उद्घोष शुरू हुआ, और देखते देखते ऐसा वातावरण ऐसा माहौल बना, अंग्रेज सरकार घबरा गई। आपने नाम सुना होगा एक टाउन हॉल था कलकत्ता में, वहां 30,000 लोग इकट्ठा हुए बंग भंग में, और 30,000 लोगों ने इसका सामूहिक गान किया। लोग बताते हैं कि वहां सुनने वाले मतलब हजारों लोग रो रहे थे। तो ये जो गीत है वो मैंने कहा ना, ये कोई ऐसे साधारण सी पंक्तियां नहीं है, ये हमारे भाव में उतरा हुआ है, हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम मातृभूमि के प्रति, जो हमारा आदर है, जो सम्मान है, वो कूट कूट के इसमें भरा हुआ है। और मैं समझता हूँ इस गीत को इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ जब आप देखते हैं तो बहुत पहले इस गीत को कायदे से संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक व्यवस्था वैसे ही इस गीत के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन वो कुछ दुर्भाग्य या कुछ
1: संविधान सभा की बैठक हुई सर 1950 में, उसमें राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इसे राष्ट्रगान के समान ही सम्मान मिलने की प्रक्रिया को आगे किया जाए।
0: जी बिल्कुल, वहां भी वही जो राजनीतिक विमर्श जब हुआ वहां पे, तो वहां पे कुछ जो मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान बना चुका था, लेकिन फिर भी अभी मुस्लिम लीग के कुछ नेता यहाँ थे, कुछ उस समय के और भी नेता ऐसे थे जो सोकाल्ड धर्मनिरपेक्ष होने की बात कहते थे, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि वो धर्मनिरपेक्षता की उस भाषा में इस गीत में कोई आपत्ति हो सकती थी। लेकिन उन्होंने आपत्ति की, इसके दो अंतरा तो चल सकते हैं, लेकिन बाकी के तीन अंतरा, वो माँ दुर्गा की स्तुति जैसा है, उसमें साक्षात उनका नाम दिया है, उनके स्वरूप का वर्णन है, इसलिए हम इसको नहीं गा सकते, या देश का एक बड़ा हिस्सा है जो इसको मूर्ति पूजा के रूप में देखेगा और उसके लिए आपत्तिजनक है, और यह कहकर इस गीत का थोड़ा कह लीजिए महत्व राजनीतिक रूप से जानबूझ के या अनजाने में कम कर दिया गया, जो मैं समझता हूं कि थोड़ा मेरे लिए दुर्भाग्य का।
1: अब राष्ट्रीय एकता की बात है, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की बात है, उस लिहाज से और उस दिशा में वंदे मातरम वर्तमान परिवेश में कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम नेशनल इंटीग्रिटी की बात करें?
0: देखिए अभी जो भारत देश है हमारा वो युवाओं का देश है, अभी आपने कहा, और आने वाला समय युवाओं का है, और मैं केवल आने वाले समय की बात नहीं कर रहा हूं, कभी भी किसी भी कालखंड में किसी भी देश की दशा और दिशा है वो युवा ही तय करते हैं। और जब युवा वर्ग में मातृभूमि भूमि से जुड़ा हुआ

0: स्वभाव विकसित हो जाएगा और इस भारत देश को वो मातृभूमि के रूप में देख के सेवा करेगा, किसी भी क्षेत्र में, समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर करेगा। तो ऐसे में वंदे मातरम का भाव जागृत करना युवाओं में बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूँ समसामयिक रूप से भी देखा जाए या आने वाले किसी भी समय में मातृभूमि के प्रति वंदना, मातृभूमि के प्रति आराधना, मातृभूमि के प्रति वंदन, इसका तो मैं समझता हूँ कि कभी ये कालातीत नहीं हो सकता कभी, तो ये हमेशा बने रहना चाहिए। और इस व्यवस्था के अंतर्गत अगर युवा पीढ़ी में इसका भाव जागृत होता है तो ये स्वागत करने वाली बात है।
1: बिल्कुल सर, आपने वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व, स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी भूमिका और साथ ही वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता को लेकर विभिन्न पहलुओं पर बेहद महत्वपूर्ण और तथ्यपरक जानकारी दी। सर, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सर आपका बहुत बहुत
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की ऐतिहासिकता, जन जागरण में भूमिका के साथ केंद्र सरकार द्वारा लाए गए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन बिल 2026 के महत्व पर जय नारायण महाविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर गिरिजेश त्रिपाठी से खास बातचीत। वार्ताकार थे शैलेंद्र शर्मा, आकाशवाणी के।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र।
4: आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश के तहत आज उर्दू कार्यक्रम में काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस और भारत छोड़ो आंदोलन जयंती पर आइए सुनते हैं मबनी प्रोग्राम आजादी की राह पर इनकलाब की गूंज। सदाकार हैं शमशुल आरफीन, शाइस्ता जाहिद राजेश्वरी, सुरेंद्र राजेश्वरी, आसिफ इकबाल और राघवेंद्र सिंह। पेशकश आसिफ इकबाल की है।
5: सामईन आदाब, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम। सामईन, आज हम आपको लेकर चलेंगे हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद के उस सुनहरे और जुरअत भरे बाप की तरफ जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के करीब काकोरी के मकाम पर कुछ नौजवान इनकलाबियों ने अंग्रेजी हुकूमत का खजाना ले जा रही ट्रेन को रोककर एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो सिर्फ एक डकैती नहीं थी बल्कि गुलामी के खिलाफ बगावत का ऐलान था। इस कार्रवाई का मकसद अंग्रेजी खजाने से रकम हासिल कर आज़ादी की लड़ाई को मजबूत करना था। आज के इस प्रोग्राम में हम याद करेंगे उन जांबाज फर्जंदाने वतन को जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और उनके साथियों को उनकी कुर्बानियों को जो हमेशा हिंदुस्तान की तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखी जाएंगी। आइए सुनते हैं आज़ादी की राह में इनकलाब की गूंज।

0: बरस।
1: वतन की पास बानी जानो ईमा से भी अफजल है, मैं अपने मुल्क के खातिर कफन भी साथ रखता हूँ। और सामईन, यही वो जज्बा था जिसने अंग्रेजों को खौफजदा कर रखा था। 1857 से लेकर 1947 तक, यानी 90 सालों में हर हिंदुस्तानी के दिल की यही आरजू थी कि हम फिरंगियों से अपने वतन अजीज हिंदुस्तान को आजाद कराकर ही रहेंगे। आदाब सलाम, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ मरकज, और मैं हूं आपका मेजबान शम्सुल आरफीन, और मेरे साथ हैं
2: आपकी मेजबान शाइस्ता जाहिद। आदाब कबूल फरमाएं।
1: शाइस्ता जी, आज बेहद अहम दिन है, क्या कहेंगी आप?
2: अरे भाई, सिर्फ अहम ही नहीं, तारीखी दिन है आज।
1: तारीखी दिन? भला वो किस लिहाज से?
2: दरअसल मेरा जहन आज बार बार मरकजी लखनऊ से तकरीबन 20 किलोमीटर शुमाल मगरबी हिस्से की तरफ जा रहा है।

0: जी पहुंचते हैं उसी जगह पर जहां से ये बात सानिहा पेश आया था।
1: बिल्कुल, तो इसके बाद क्या हुआ था शम्स जी?
0: और फिर शाइस्ता जी, वो तारीखी दिन आखिरकार आ ही गया।
1: अच्छा
0: जी, दिन ढला तो इन सरफरोशों की बेचैनियां और धड़कने बढ़ने लगी। रात के करीब 8 बजे का वक्त था। सन्नाटा और गहराता जा रहा था। हवाओं की सरसराहट भी मानो किसी खंजर से चुभ रही थी। और फिर शाहजहांपुर से चली वो तारीखी ट्रेन की सीटी काकोरी के जंगलों के करीब किसी चीख की तरह फजाओं में गूंज उठी।
1: ट्रेन के अंदर 10 सरफरोश आम मुसाफिरों की तरह बैठे हुए थे, लेकिन इन इनकलाबियों के इरादे आम न थे। अचानक आजाद उठे और बुलंद आवाज में दहाड़े, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, हम आजादी के परवाने हैं, हमें आम हिंदुस्तानियों से कोई बैर नहीं, आप बस अपने सर नीचे रखिए।
0: और इतना कहते ही बिस्मिल ने कहा, जल्दी करो साथियों, वक्त रेत की तरह हाथों से निकलता जा रहा है, थैलियों में खजाना भरना शुरू करो।
1: और फिर इनकलाबियों ने सिर्फ 8,000 रुपये, जी हाँ सामईन, सिर्फ 8,000 रुपये सरकारी तिजोरी से थैलियों में भरे और हवा में असलहे लहराते हुए वहाँ से निकल गए। सरकारी खजाना लुट चुका था। ये अंग्रेजी हुकूमत के गुरूर पर एक करारा तमाचा था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के कई नुमाइंदे गिरफ्तार कर लिए गए। लखनऊ की अदालत में काकोरी की साजिश के केस का आगाज हुआ।
0: बिल्कुल, अंग्रेज जज ने उन्हें गुनाहगार ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई। आजादी के मतवाले फांसी की सजा सुनकर घबराए नहीं, बल्कि पुरजोश आवाज में हुब्बुल वतनी के तराने गुनगुनाने लगे। और वो तराना ये था,
1: मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। शम्स जी,
0: जी बिल्कुल,
1: आइए क्यों ना इसे हमारे कुछ साथियों की आवाज में सुना जाए।
0: जी मेरा भी यही कहना था, मैं भी यही चाह रहा था, और अब मेरे मुंह की बात आपने छीन ली।
1: और हम भी उस जोश को एक बार फिर से महसूस करते हैं।
0: चलिए सामने सुनते हैं।
2: मेरा रंग

0: अरे जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे,
1: जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे,
0: आज उसी को पहन के निकला।

सामईन, दिसंबर 1927 की चंद सर्द रातें कुछ इस तरह गुजरी जैसे आसमान भी मानो रोस आ रहा था। इन इनकलाबियों को जब फांसी के तख्ते तक ले जाने का वक्त आया, चार मुख्तलिफ जेलों में चार आजादी के दीवानों को उस दिन फांसी दी गई। बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक को फैजाबाद में, रोशन सिंह को अलाहाबाद में और राजेंद्र लाहिरी को गोंडा जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया।

0: शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा।
1: सामीन, आज जिन आजाद फजाओं में हम सांस ले रहे हैं उसमें काकोरी के इन शहीदों का भी कर्ज है।
0: तो शम्स जी, आज काकोरी एक्शन कांड के इन शहीदों की कुर्बानी को आइए हम सभी मिलकर दिल से सलाम करते हैं।
1: बिल्कुल, मेरा भी दिल से सलाम है इन शहीदों पर।

0: शाइस्ता जी, काकोरी एक्शन कांड के बाद एक और बड़ा इनकलाब सरजमीन हिंद ने देखा।
1: अच्छा
0: जी,
1: वो क्या था भला?
0: उस इनकलाब को आज सारे हिंदुस्तानी फख्र से भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं।
1: जी बिल्कुल सही फरमाया शम्स जी। सच तो ये है कि हम सबको अपने तमाम अकाबरीन पर फख्र होना चाहिए, जिन्होंने वतन को आजाद कराने के लिए न जाने कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की।

0: वैसे शमसल साहब, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हमारे सामाइन को भी आप थोड़ा और बताएं।
1: जी बिल्कुल। दरअसल बात ये है कि मुल्क की आज़ादी से 5 साल कबल यानी 8 अगस्त 1942 ईस्वी में अंग्रेजों के जुल्म और जबर से तंग आकर बाबाए कौम महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया।
0: जी बिल्कुल, गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में, जिसे आज अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, वहीं से अंग्रेजों को देश छोड़ने की आवाज बुलंद की और नारा दिया, करो या मरो।
1: और इस आंदोलन के पसमंजर में जाएं तो इसके कई

0: वजूहात थे जिस पर आप रोशनी डालें।
1: जी बिल्कुल, इसकी एक बड़ी वजह थी क्रिप्स मिशन की नाकामयाबी।
0: हाँ, ये बात तो सही है। इसके अलावा आलमी जंग दोम में बिना शर्त भारत को शामिल करना भी भारतीयों को नागवार गुजर रहा था।
1: फिरंगियों के खिलाफ हर हिंदुस्तानी के दिल में एक आग सी भड़क रही थी। उसकी एक बड़ी वजह थी महंगाई।
0: जी, और इस महंगाई के पीछे बड़ी वजह वही थी जो आलमी जंग दोम में भारत शामिल हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ का जो इकोनॉमी सिस्टम था वो काफी हद तक कमजोर हो गया था।
1: बिल्कुल सही फरमाया।
0: हम फिर से बात करें शाइस्ता जी, जैसे ही गांधी जी ने हर हिंदुस्तानी से इस आंदोलन में शिरकत की अपील।
2: मीडियम वेव 92.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। बस थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं चित्रा चौरसिया।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
6: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
5: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: और आइए श्रोताओं सुनते हैं सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं चित्रा चौरसिया। सबसे पहले सुनते हैं इनके स्वर में ये गीत।

अभी आपने सुना चित्रा चौरसिया के स्वर में गीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 10 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गेरिमुइडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लिया। उन्होंने पुदुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट स्कॉलर मिलने पर बधाई दी। गृहमंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर पुदुचेरी में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेरी वेन्स और उनकी पत्नी उषा वेन्स को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया। सरकार ने 4 उच्च न्यायालय में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है। गृहमंत्री अमित शाह ने काकोरी रेल घटना के अमर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि काकोरी रेल घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय अध्याय है जिसने ब्रिटिश शासन के अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ सशस्त्र क्रांति को नई गति प्रदान की। जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को ध्यान में रखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांधरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की आशंका है। वहीं ओडिशा के कई क्षेत्रों में तेज बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी ऊपर वाले निम्न दबाव क्षेत्र का असर राज्य में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जबकि शेष जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बैतरणी और सालंदी नदियों के जलस्तर बढ़ने से भद्रक जिले के कई लोगों की चिंता और बढ़ गई है। बड़े स्तर पर फसल नुकसान की भी आशंका बताई जा रही है। चीन के हेफई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सांगनिक रॉय और सायंतम कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता।

0: क्रोएशिया के एम फेरेनेका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जेहान और जेडे वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। भारत की अश्मिता चलेहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। वहीं फाइनल में आज अश्मिता ने चीन की हान चियानशी को 14-21, 21-14, 21-14 से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज के कलाकार हैं विकास चंद्र पांडे, सूर्य प्रकाश पटेल और साथी और चंद्र प्रकाश पाठक। सबसे पहले सुनते हैं विकास चंद्र पांडे के स्वर में देवी गीत।

अभी आपने सुना विकास चंद्र पांडे के स्वर में देवी गीत, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं इनके स्वर में ये दादरा।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी आप सुन सकते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। और अब समय हो चला है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनने का। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं विश्वात्मा फिल्म से ये गाना।

श्रोता, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा फिल्म संगीत। कभी कोई गीत दिल की धड़कनों को आवाज देता है, कभी किसी की यादों में भिगो देता है, और कभी मोहब्बत को ऐसी शायरी दे जाता है जिसे सुनकर लगता है ये तो हमारे ही दिल की बात है। आज के गीतों में भी कुछ ऐसे ही रंग हैं श्रोताओं। कहीं दूरियों को पार करके किसी तक पहुंचने की चाहत, तो कहीं इंतजार की बेचैनी, और कहीं प्रेम को शब्दों में ढालती हुई शायरी। कभी आपने महसूस की होगी कि मोहब्बत अगर सच्ची है तो दूरियां भी छोटी लगने लगती हैं। साथ समुंदर हो या हजारों मील का फासला, दिल को तो बस अपने हम सफर तक पहुंचना ही होता है। एक खूबसूरत सा एहसास इस गाने के साथ अभी आपने सुना। फिल्म थी विश्वात्मा,

और अब आप सुन रहे हैं कयामत से कयामत तक फिल्म का गाना। श्रोताओं, कभी कभी इंतज़ार भी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत भाषा बन जाता है। आंखें रास्ता देखती हैं, दिल किसी आहट का इंतज़ार करता है और ऊंट पर बस यही कहते हैं, मगर ज़रा ठहर कर इस दिल को अपनी धड़कनों को संभालने का मौका तो दीजिए।

लीजिए सुनिए कभी हाँ कभी ना फिल्म का ये गाना। ऐसे हालात जब किसी की याद इतनी गहरी हो जाए कि होश में लौटना भी अच्छा ना लगे। मोहब्बत की यही तो खूबी है श्रोताओं, कभी सुकून देती है, कभी बेचैन करती है और कभी इंसान को अपनी ही दुनिया में खो देती है। तो सुनते हैं एक खूबसूरत सा नगमा।

कहते हैं शायर शब्दों को नहीं लिखता, वो अपनी दिल की धड़कनों को कागज़ पर उतारता है, और जब मोहब्बत सामने हो तो हर शब्द शायरी बन ही जाती है, हर खामोशी एक गज़ल और हर नज़र एक खूबसूरत मिसरा। इसी एहसास को समेटे हुए आपने सुना ये गाना, और अब हम आपको सुना रहे हैं अगला गीत, जिसमें मोहब्बत में इंतज़ार भी है और शिकायत भी, और कभी कभी एक मीठी सी जिद भी कि आखिर कब तक यूं ही दिल की सी मासूम शिकायत और प्रेम भरी पूरा

चलते तो हम जमीन पर हैं, मगर एहसास ऐसा होता है कि जैसे कदम हवा में हो। किसी की मुस्कुराहट, किसी की एक नजर और किसी का साथ, बस इतना ही तो काफी है दिल को बेखुद करने के लिए।

0: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। ख्वाबों की भी अपनी एक दुनिया होती है, जहां कोई चुपके से आता है, दिल में हलचल मचाता है और फिर हमें उसी ख्वाब के सहारे छोड़ जाता है।

बचपन की गलियों से निकलकर जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो दिल में न जाने कितने सवाल, कितने सपने और कितनी अनजानी राहें। जाएंगे कहाँ, होंगे कहाँ, इन सवालों में भी एक खूबसूरत सी बेफिक्री छुपी है। तो आइए जवानी के उसी मासूम उमंग उत्साह सपनों की दुनिया में लौटते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों, गीतों का ये सफ़र यहीं थमता है, लेकिन संगीत की महफिल कहाँ थमती है। ये तो दिल में कहीं बजती रहती है, कभी किसी पुराने ख्वाब की तरह, कभी किसी भूली हुई याद की तरह, और कभी किसी अनकहे एहसास की तरह। आज के गीतों ने कभी मोहब्बत की दस्तक दी तो कभी इंतज़ार की कसक जगाई, कभी ख्वाबों की दुनिया में ले गए तो कभी शायरी बनकर दिल के बेहद करीब आ गए। कहते हैं कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, और कुछ एहसास कभी पुराने नहीं होते। इन्हीं खूबसूरत एहसासों को अपने साथ लिए मैं मोना पांडे आपसे लेती हूँ इजाज़त। फिर मिलेंगे, फिर सजाएंगे सुरों की महफिल कुछ नए नगमों के साथ, कुछ पुरानी यादों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, संगीत सुनते रहिए, और अपने दिल में मोहब्बत के सुरों को हमेशा जिंदा रखिए।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। बस थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। अगले उद्घोषणा के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब बच्चे सुने अपना कार्यक्रम बाल संघ।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद, भारत माता की जय।
0: और जय उन सभी क्रांतिकारियों की जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करके आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
2: बच्चों आज है 9 अगस्त, चलो हम आज तुम्हें 9 अगस्त 1925 रात 8 बजे की एक घटना सुनाते हैं।
0: काकोरी स्टेशन से आगे 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन अचानक चलते चलते रुक जाती है। रात का घुप अंधेरा था, किसी ने इमरजेंसी चेन पुलिंग करके ट्रेन रोक दी थी।
2: कुछ लोग लोहे के औजारों के साथ सीधे गार्ड की बोगी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल की गरजती आवाज सुनाई देती है,
0: कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, हम भारत के क्रांतिकारी हैं, हमारा मकसद

0: सरकारी खजाने को जब्त करना है।
1: वो आकर सीधे उस लोहे की तिजोरी पर वार करने लगे जिसमें शाहजहांपुर से लाया गया सरकारी टैक्स रखा था। उनके पास जर्मनी की माउजर पिस्तौलें थीं।
0: वो रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां थे। चंद्रशेखर आजाद भी वहीं मुस्तैद खड़े थे। लेकिन ये क्या, तिजोरी बहुत मजबूत थी, कुल्हाड़ी के वार से भी नहीं टूट रही थी। समय बीतता जा रहा था।
1: तभी अशफाकुल्ला खान ने कुल्हाड़ी अपने हाथ में ले ली। लंबा नौजवान, गजब की ताकत, उसने तीन ही वार में तिजोरी का सीना चीर दिया। वो खजाना बोरियों में भरने लगे।
0: तभी अचानक ट्रेन के दूसरे डिब्बे से अहमद अली अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए नीचे कूदता है। मन्मथनाथ गुप्त उन्हें पीछे हटने के लिए कहते हैं, पर हड़बड़ी में ठाएं की आवाज के साथ गोली चलती है, ना जा चाहते हुए भी।
1: वो मुसाफिर गिर पड़ता है और अब ब्रिटिश सरकार के लिए ये मामला डकैती से बढ़कर हत्या का बन जाता है।
0: वो लोग अंधेरे का फायदा उठाते हुए वंदे मातरम का नारा लगाते जंगलों में गायब हो जाते हैं।
1: बच्चों, ये थी काकोरी ट्रेन एक्शन की अमिट कहानी।
0: और बच्चों, जानते हो ये जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ, यानी कि जो सरकारी खजाने को लूटा गया, उसका मकसद सिर्फ यही था कि उस लूटे हुए खजाने से क्रांतिकारियों के लिए हथियार खरीदने में सहयोग किया जा सके, और साथ ही जो हथियार भी उससे लूटे गए और उससे क्रांतिकारियों को कुछ मदद मिल सके।
1: बिल्कुल, आज़ादी की लड़ाई में जान माल हर चीज़ की हानि हुई, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ी, और किसी ने भी कभी भी डर के एक भी कदम पीछे नहीं हटाया।
0: और दीदी, हम सबको मालूम है कि आने वाले कुछ दिनों बाद यानी कि 15 अगस्त को हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं।
1: जी भैया।
0: और हमें ये नहीं भूलना है कि हमें जो आज़ादी बहुत ही संघर्षों के बाद मिली है, हमारे क्रांतिकारियों ने सीने पर गोलियां खाई हैं और अपनी जान की कुर्बानी दी है।
1: बिल्कुल भैया, और इस कहानी में ये बात हम स्पष्टता से बता देना चाहते हैं, और इसीलिए हमने कहा कि ना चाहते हुए भी वो जो एक हत्या उस कहानी के साथ जुड़ गई, वो बिल्कुल भी किसी की मंशा नहीं थी, लेकिन बहुत सी ऐसी घटनाएं गई हुई और हमारी आज़ादी की लड़ाई में बहुत जाने गईं।
0: बिल्कुल।
1: और ब्रिटिश सरकार को तो मौका चाहिए था कि इस तरीके की चीज़ों को वो बढ़ा चढ़ा के पेश करें, तो उन्हें मौका मिल जाता था।
0: बिल्कुल। और तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दीदी, जो नए साथी जो रेडियो पर अपना कार्यक्रम सुन रहे हैं, नन्हे श्रोता, और इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जो आज़ादी का महत्व है उसको समझेंगे कि आज़ादी कितनी मुश्किलों के बाद मिली है। और आज़ादी का मतलब केवल दीदी यही नहीं होता है कि हम आज़ाद हो गए, हम अपने देश के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम अपने देश के लिए और क्या कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये भी मायने हैं आज़ादी के।
1: हम जहाँ पर भी जो भी करें जीवन में, आगे चलकर जो भी बने, वो ईमानदारी से अपने देश हित में काम
0: देश
1: करें,
0: हित के लिए करें, तो ये सबसे बड़ी बात हो जाएगी हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, जो आने वाली जो पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उनके लिए। तो दीदी, और ऐसे ही एक प्रेरणादायी गीत है, तो हम बच्चों को वो गीत सुनवाते हैं कि आगे उनके क्या करना है भविष्य में।
1: बिल्कुल, आइए बच्चों सुनते हैं ये प्यारा सा बाल गीत।

0: तो बच्चों कुछ समझ में आया?
1: भाई देखिए दीदी, हमारे साथ जो नए साथी
0: हाँ, ये
1: हैं,
0: सर हिला के कह रहे हैं
1: सर
0: इनको
1: ला के
0: समझ में
1: अच्छा
0: आया
1: लगा
0: ये
1: होगा। निश्चित
0: गाना।
1: है, गीत जो था बहुत ही प्रेरणादायी था,
0: बिल्कुल।
1: और जो हमारे नए नए साथी सुन रहे हैं, हमने कहा था ना कि कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम ये जो आज़ादी मिली है बहुत
0: देखिए ये,
1: संघर्षों के बाद
0: हाँ,
1: मिली
0: इस
1: है।
0: गीत के बोल

0: तो बच्चों कुछ समझ में आया?
1: भाई देखिए दीदी, हमारे साथ जो नए साथी
0: हाँ, ये
1: हैं,
0: सर हिला के कह रहे हैं
1: सर
0: इनको
1: ला के
0: समझ में
1: अच्छा
0: आया
1: लगा
0: ये
1: होगा। निश्चित
0: गाना।
1: है, गीत जो था बहुत ही प्रेरणादायी था,
0: बिल्कुल।
1: और जो हमारे नए नए साथी सुन रहे हैं, हमने कहा था ना कि कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम ये जो आज़ादी मिली है बहुत
0: देखिए ये,
1: संघर्षों के बाद
0: हाँ,
1: मिली
0: इस
1: है।
0: गीत के बोल थे कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों
1: बच्चों
0: संभाल
1: संभाल
0: के।
1: के
0: यही बात हम अभी बच्चों से कह रहे थे कि ये जो हमें आज़ादी मिली है, उसकी जो आज़ादी की लड़ाई थी वो बहुत संघर्षपूर्ण थी।
1: बिल्कुल
0: उसको आप समझिए और अपनी ज़िंदगी में ऐसे उसूल बनाइए जो आपके देश हित में हो,
1: बिल्कुल,
0: है ना?
1: और बिल्कुल ऐसी ही कुछ बातों के साथ हमारे साथ दीदी ये नए साथी आए हैं, तो हम इनसे भी परिचय करते
0: अपना
1: हैं।
0: नाम बताइए।
2: मेरा नाम संकल मिश्रा है, मैं
0: जी
2: कक्षा 4 में पढ़ता हूँ।
0: अच्छा, और आज आप अपने साथियों को क्या सुनाने के लिए लेकर आए हैं?
2: आज मैं सबको 15 अगस्त के बारे में
0: जी
2: चीजें बताऊंगा,
1: हाँ, 15 अगस्त के बारे में कुछ बातें
0: स्वतंत्रता
1: बताएंगे।
0: दिवस के बारे
1: बिल्कुल
0: में।
1: भाई,
0: बिल्कुल।
1: आप सुनाइए।
2: देखिए भैया, 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है,
0: जी
2: क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। तब से हम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं।
1: बिल्कुल
2: इस दिन भारत के उन महान नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाती है जिनके नेतृत्व में भारत के लोग सदा के लिए आज़ाद हुए। 15 अगस्त 1947, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम चाचा नेहरू भी कहते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले पर भारतीय झंडा फहराने के बाद भारतीयों को संबोधित किया। इसी प्रथा को आने वाले दूसरे प्रधानमंत्री ने भी आगे बढ़ाया, जहां झंडारोहण, परेड तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि हर साल इसी दिन आयोजित होते हैं।
0: जी
2: कई लोग इस पर्व को अपने घर पर तथा वाहनों पर झंडा लगाकर मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस को मनाने का अर्थ केवल औपचारिक तौर पर ध्वजारोहण करना नहीं है, अपितु स्वतंत्रता के महत्व को समझना और शहीदों के योगदान का स्मरण करना भी है।
1: बिल्कुल
2: देखिए भैया, भारत एक ऐसा देश है जहाँ करोड़ों लोग विभिन्न धर्म, परंपरा और संस्कृति के एक साथ रहते हैं, और स्वतंत्रता दिवस के इस उत्सव को खुशी के साथ मनाते हैं। इस दिन हम भारतीयों को वादा करना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार के बाहरी आक्रमण या अपमान से अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए सदा भक्ति से पूर्ण और ईमानदार रहेंगे।
1: बिल्कुल,
0: बहुत
1: देशभक्ति से
0: सुंदर।
1: पूर्ण और ईमानदार रहेंगे, यही बात अभी हमने अपनी बातों में भी थोड़ी देर पहले कही थी। तो संकल्प, आप जो हैं ये बताइए कि इतनी अच्छी आपने एक वार्ता हम लोगों को सुनाई स्वतंत्रता दिवस के ऊपर, यानी कि 15 अगस्त के ऊपर, और आप समझते हैं कि ये जो जो देश के बारे में आप अपने क्या सोचते हैं ये बताइए।
2: देखिए, हम लोग का देश बहुत सुंदर है,
1: हाँ
2: अच्छा है,
1: हाँ
2: दूसरे देश की तरह नहीं है।
1: हाँ तो भाई अपना देश तो है ही महान। हाँ, इसमें देखिए कितनी विविधता है ना। अगर देखिए, अभी आपने कहा ना कि

0: हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग सब एकजुट होकर मिलजुल कर रहते हैं, यही सबसे बड़ी अनेकता में एकता की बात आती है, तो भारत का नाम आता है सबसे पहले। यहाँ पे जितनी संस्कृतियाँ हैं, विभिन्न तरह की संस्कृतियाँ हैं, सब का एक तरह से समावेश है ना। यहाँ पर बहुत विविधता है,
1: बिल्कुल
0: हर पर्व हर त्योहार लोग मिलजुल कर मनाते हैं, ये सबसे बड़ी खूबसूरती है अपने भारत देश की, है ना।
1: ये आपने वार्ता खुद से लिखी है, आपको लिखने का शौक है?
2: हाँ,
1: क्या क्या लिखते हो आप?
2: मेरे को पोयम लिखना बहुत अच्छा लगता है।
1: अच्छा,
2: एक मैंने लिख के भी लाई है कविता। आप लिख के लाए
1: यहाँ।
2: हो, तो आप सुनाना चाहोगे? नहीं, चलिए फिर
0: चलिए, ये
1: कभी,
0: लिख
1: कोई
0: के लाए
1: बात
0: हैं
1: नहीं।
0: ये, अभी हमने
1: अच्छा, ये
0: शायद दूसरी।
1: बताइए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो?
2: मैं बड़ा होकर या तो एक पोएट बनना चाहूंगा या तो एक सिंगर बनना चाहूंगा।
1: बहुत सुंदर। तो
0: वाह।
1: इसका मतलब आप संगीत की भी शिक्षा लेते हैं?
2: हाँ,
1: अच्छा, तो कितने साल सीख चुके हैं आप संगीत?
2: अभी मेरे को 2 या 3 साल हुए
1: तीन
0: हैं,
1: साल
0: अभी
1: हो गए
0: सीख
1: हैं।
0: रहे
1: ये
0: हैं।
1: बहुत लंबी पढ़ाई है और इसमें भी उतनी ही मेहनत लगती है जितनी दूसरे क्षेत्रों में लगती है। कभी भी मेहनत से नहीं घबराइएगा, और जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए चुना है उसे आप पूरी मेहनत से उसमें ज़रूर सफलता पाइएगा।
0: और भी कुछ आप हमें सुनाएंगे?
2: हाँ, एक पोयम मैं लिख के लाई है, वही सुना दूँ आपको।
0: हाँ बिल्कुल,
1: क्या विषय है आपकी
0: विषय क्या
1: कविता का?
0: है?
2: अभिमान देश का।
1: नहीं,
0: नहीं,
1: जो
0: आप
1: आप
0: अपनी
1: लिख के लाए
0: कविता
1: हैं
0: जो
1: उसका क्या विषय है?
0: वो नहीं सुनाएंगे। अच्छा, तो आप अपनी अपनी पुस्तक की कोई कविता इन्होंने याद की है जो इनके
1: अच्छा
0: क्लास में
1: अच्छा
0: है ना, तो वो सुनाइएगा,
1: ठीक
0: तो
1: है।
0: वही सुनाइए।
2: अभिमान देश का। हमको है अभिमान देश का, जिसके पांव पखारे सागर, गंगा भरे सवारे गागर, सोए जिस पर स्वर्ग वही तो शीश मुकुट हिमवान देश का। हमको है अभिमान देश का, जिसके रच कर का कर चंदन, झुक झुक नभ कर ता पदवंदन, कली कली के प्राण खोलता, ज्ञान किरण स्वर्ण रेशम का गान देश का। हमको है अभिमान देश का, जग के जीवन के विकास में, जग के नैनों के प्रकाश में, लगा हुआ है आदिकाल से ज्ञान किरण का बाण देश का। हमको है अभिमान देश का।
0: वाह, बहुत
1: बहुत
0: अच्छी
1: बढ़िया भैया,
0: कविता।
1: इनके लिए बढ़िया तालियां हो जाएं, जोरदार। बहुत सुंदर कविता सुनाई आपने। और अब भैया, जब बच्चे ने हमको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सुनाई हैं, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है
0: बिल्कुल
1: कि हम
0: भाई
1: भी उनको कोई
0: दीदी,
1: अच्छा सा कार्यक्रम सुनवाएं।
0: और देखिए बच्चों, हम तो अपने कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को अच्छी बातें बताते ही हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनाते हैं। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आज जो अनुशासन की बात हम लोग करते
1: जी
0: हैं
1: भैया,
0: उसका भी बहुत महत्व है, और अक्सर पढ़ाई के माध्यम से या एक जब बच्चों की पढ़ाई की बात के साथ साथ कुछ और ज्ञान की बातें होती है तो अनुशासन का बहुत महत्व बढ़ जाता है दीदी।
1: बिल्कुल भैया, हर क्षेत्र में, चाहे आज ये बच्चे विद्यार्थी हैं तो भी अनुशासन की ज़रूरत है सफलता के लिए।
0: या
1: और
0: जीवन
1: सफल
0: के
1: होने के
0: हर हर
1: बाद,
0: क्षेत्र में अनुशासन
1: हाँ, जब
0: बहुत मायने
1: आप
0: रखता
1: अपने
0: है।
1: जीवन में एक करियर को चुन लेते हैं, आप उस पर काम करने लगते हैं, वहाँ पर भी अगर आप अनुशासन से नहीं चलेंगे
0: तो फिर
1: तो
0: मुश्किल होगी।
1: बहुत मुश्किल होगी।
0: तो ऐसी ही एक प्यारी सी कहानी है अनुशासन, और बच्चों को हम सुनवाते हैं एक बार फिर से, क्योंकि इसको हम पहले भी सुनवा चुके हैं,
1: जी भैया,
0: और इसे लेखा इसके इसे लिखा है अरविंद बिंदु भैया ने, सुनते हैं।
3: दीपक और रोहित बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ही कक्षा 5 में साथ पढ़ा करते थे। दोनों में खास बात देखी गई कि वे आपस में एक दूसरे की परवाह करते एवं एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। रोहित में यह विशेष बात देखी जाती कि उसे पढ़ाई संबंधी या दूसरी कोई अन्य बातें समझाने पर समझ में नहीं आती तो उसे फिर से समझने की कोशिश करता। दीपक कुछ अलग था। लोगों की बातें तो जरूर सुनता, विषय संबंधी सवालों को समझता, लेकिन समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछने की कोशिश नहीं करता। रोहित दीपक की तुलना में कुछ अधिक जानकार था। रोहित के पिता जब उसे पढ़ाने बैठते तो उसके विषय के साथ बाहर की भी नई नई जानकारियां देते थे। दीपक के घर की भी लगभग स्थिति कुछ कम लेकिन वैसी ही थी जैसे रोहित की। रोहित खेल में भी रुचि रख

सकता था। खाली समय में वह कभी बैडमिंटन बैट बॉल तो कभी कभी शतरंज की भी जानकारी लेता है। वह जब घूमने के लिए बाहर जाता तो स्थान एवं पेड़ों के बारे में जानकारी लेता। रोहित की इन बातों में दिलचस्पी देखकर माता पिता बहुत खुश होते हैं। दीपक की पढ़ाई में कुछ समय पिता देते, उसे पढ़ाते, लेकिन पिता के पास समय कम होने की वजह से उसके लिए एक मास्टर रख लिया गया था। दीपक के पिता को सरकारी नौकरी में हमेशा बाहर जाना होता था, इसलिए वह दीपक को समय नहीं दे पाते थे। यही कारण था कि उसे मास्टर पढ़ाने आते थे। इधर घर में दीपक ने मोबाइल की जिद पकड़ रखी थी। वह मोबाइल खरीदवाना चाहता था। अक्सर किसी लड़के के हाथ में मोबाइल देखता तो समय उसी में लगाता। रोहित को घर वालों ने पहले से ही मोबाइल दिलवा रखा था। घर वाले मोबाइल की जानकारी उसे जरूरत के अनुसार देते रहते थे। उसे समझाया जाता, मोबाइल कम से कम चलाओ, अधिक चलाओगे तो पढ़ाई खराब होगी, उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितनी जरूरत हो। इधर दीपक की जिद से घर वालों ने भी उसे मोबाइल दिलवा दिया। आए दिन दीपक मोबाइल में कुछ न कुछ देखता। मास्टर साहब उसके हाथ में जब मोबाइल देखते तो गुस्सा करते, उसे समझाते, पहले स्कूल का काम होमवर्क करना जरूरी है, लापरवाही करोगे, हमेशा मोबाइल देखोगे तो नुकसान हो जाएगा, तुम पिछड़ जाओगे। दीपक ने अपने मास्टर की बातों पर कुछ दिन ध्यान दिया, लेकिन धीरे धीरे वह मोबाइल की चपेट में आता गया, उस पर ज्यादा समय देने लगा। रोहित के पिता उसे जो सीख देते वह उनकी बातों को ध्यान में रखता था। वह उनकी बातों को गंभीरता से समझता। पिता समझा रहे हैं तो इन बातों में दम है। रोहित के पिता बेटे के प्रति सतर्क रहते। वह अपने बेटे को अच्छी अच्छी बातें बताते, साथ में उसके दोस्त को भी समझाते। कुछ दिन बाद यह देखा गया कि रोहित भी अपना समय मोबाइल पर देने लगा। स्कूल का काम तो कर लेता था, इसके बाद उसका समय मोबाइल पर ही बीतता। उसे भी अब मोबाइल देखना ज्यादा अच्छा लग रहा था। इससे यह हुआ कि रोहित और दीपक दोनों ही न खेलते और घर में ही बैठकर मोबाइल देखते। भूख भी नहीं लगती। धीरे धीरे उनके शरीर और पढ़ाई दोनों पर असर पड़ने लगा। रोहित की माँ उसकी इस लापरवाही को समझ रही थी। एक दिन उन्होंने बेटे को खूब डांटा, कहा, तुम अपना पूरा समय घर पर मोबाइल देखते बिताते हो, खेलते कूदते नहीं, बीमार पड़ जाओगे तो पढ़ाई का अलग नुकसान होगा, पहले ऐसी आदत तो नहीं थी, तुमने अपनी आदत खराब कर ली है, अच्छी बात नहीं है। एक दिन की बात है, स्कूल से उसके घर क्लास टीचर आ गए। उन्हें रोहित के माता पिता से शिकायत करनी थी। उन्होंने उसके माता पिता से शिकायत की, क्या बात है कि रोहित का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा है, हमेशा मोबाइल देखता रहता है, आप लोग रोहित पर ध्यान दीजिए, एग्जाम्स आने वाले हैं, इनके स्कूल टेस्ट में मैथ में बहुत ही कम नंबर आए हैं। पिता उनकी शिकायत सुनकर बहुत दुखी होते हैं। रोहित की माँ ने क्लास टीचर से कहा, इधर इसकी आदत मोबाइल देखने की हो गई है। मास्टर ने रोहित को समझाया, बेटा मोबाइल देखना, उस पर खेल खेलना, बहुत से ऐसे ऐप हैं जो देखने लायक नहीं हैं। देखोगे तो तुम्हारी आदत खराब होगी, समय का ख्याल नहीं रहेगा तो अपना काम नहीं कर पाओगे, कोई समझाएगा तो बुरा लगेगा, परीक्षा में फेल हो जाओगे, फिर तुम्हारे नींद पर भी असर पड़ेगा, आगे कैसे बढ़ोगे। टीचर अब चलने लगे तो पिता ने पूछा, रोहित की और क्या गतिविधियां हैं। मास्टर ने बताया, बात व्यवहार में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन क्लासरूम में बैठकर अकेले या लड़कों के साथ मोबाइल देखता है, आदतें तो धीरे धीरे ही खराब होती हैं, शुरुआत में ही इस तरफ ध्यान दिया जाए तो बातें बिगड़ने से बच सकती हैं। मैथ में बहुत कम नंबर आए हैं, मोबाइल इसका बड़ा कारण हो सकता है। क्लास टीचर जाते समय कहते हैं, बेटे पर थोड़ी नजर रखें। पिता ने रोहित को अपने कमरे में बुलाया, कहा, रोहित स्कूल से शिकायत आना अच्छी बात नहीं है, समय से पढ़ाई करो, कुछ खेलो कूदो, इससे तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, हर चीज का समय होता है, सब समय से करो, मोबाइल देखना है तो कुछ थोड़ा बहुत देखो, मगर पढ़ाई जरूरी है, लापरवाही नहीं। उधर उसका दोस्त दीपक आए दिन मोबाइल के बारे में अपने दोस्त रोहित को बताता।

0: तो वह बहुत खुश होता है। कभी किसी खेल के विषय में तो कभी मोबाइल के किसी ऐप के बारे में। एक दिन दीपक के पिता किसी काम से जा रहे थे, तभी दीपक के क्लास के एक विषय के मास्टर से मुलाकात हो गई। मास्टर ने दीपक की शिकायतें शुरू कर दी। दीपक का आजकल पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है कि सवालों का जवाब भी ठीक से नहीं देता है, उसे कुछ याद ही नहीं रहता है। उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ लड़के बता रहे थे कि दीपक हमेशा मोबाइल देखता रहता है। तिमाही टेस्ट में हिंदी अंग्रेजी में फेल हो गया है। पिता ने कहा, हो सकता है पढ़ाई के बहाने मोबाइल देखता हो, मैं देखूंगा। दीपक के पिता ने बताया, ऑडिट पर मुझे कुछ कुछ समय के लिए बाहर जाना होता है, मैं उस पर जरूर ध्यान दूंगा, मैं उसे समझाऊंगा, फटकार लगाऊंगा। मास्टर जी ने बताया, अगले महीने से 6 मंथली एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। दीपक के पिता घर आकर उसे अपने पास बुलाते हैं। बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है? आज तुम्हारे मास्टर साहब मिले थे, शिकायत कर रहे थे। पता चला है कि तुम मोबाइल देखते रहते हो। तुम्हारी परीक्षा होने वाली है, तुम मोबाइल पर खेल खेलते रहते हो। तुम पढ़ाई न करके दूसरी बातों पर ध्यान दोगे तो समझ लो पढ़ नहीं पाओगे, फेल हो जाओगे। पिता के समझाने से दीपक ने मोबाइल देखना तो जरूर कम कर दिया, लेकिन मन पर उसने कंट्रोल नहीं किया, मोबाइल के चक्कर में ही लगा रहता था। एक दिन पिता उसके लिए बैट बॉल और बैडमिंटन लेकर आए। अब पिता उसके साथ रोजाना कुछ समय के लिए कभी बैडमिंटन तो कभी बैट बॉल खेलते। रोहित भी आकर साथ ही खेलता है। खेल के बाद पढ़ाई करने के लिए कहा जाता। अब रोहित और दीपक कुछ देर बैट बॉल बैडमिंटन खेलते, फिर पढ़ाई में जुट जाते। दोनों जितनी देर खेलते पढ़ते मोबाइल के व्यवहारिक प्रभाव से दूर रहते। इससे दोनों में कुछ परिवर्तन जरूर आया। जहाँ वे मोबाइल लेकर बैठते थे, अब वे मैदान पार्क में दिखाई पड़ते, अन्य दूसरे लड़कों से बातचीत करते एवं स्कूल के होमवर्क पर आपस में सवाल जवाब भी करते। रोहित एवं दीपक के पिता ने यह तय किया कि अवकाश के दिन बच्चे जब खेलने आएं तो 2-3 बातों पर खास ध्यान दिया जाए। जो बच्चा मोबाइल लेकर आए उन्हें मना कर दिया जाए, खेलते समय मोबाइल छूना नहीं है, खेल और पढ़ाई के समय मोबाइल से दूर रहना है, घर में भी सोते समय नहीं देखो, इससे क्या क्या नुकसान है। इस तरह की जानकारी और सीख बच्चों को दी जाएगी तो इससे बच्चों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। दोनों के पिता ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया। इसका असर दोनों बच्चों पर अच्छा पड़ने लगा। छमाई एग्जाम करीब आ गया था। दोनों बच्चे रोहित और दीपक मन लगाकर पढ़ाई करने लगे। दोनों के माता पिता के प्रयास से दोनों बच्चे अनुशासन में आ गए। वे पढ़ाई के समय उसी पर ध्यान देते, खेल के समय खेल, अब वे मोबाइल कम देखते, मर्यादा और अनुशासन के साथ। टीचर भी बच्चों पर विशेष ध्यान रखते हैं। 6 मंथली एग्जाम शुरू हो गए। रोहित और दीपक ने स्वयं से मोबाइल से दूरी बना ली थी। दोनों ने ही मन लगाकर पढ़ाई की। जब उनके एग्जाम्स के रिजल्ट्स आए तो दोनों के बहुत अच्छे नंबर आए। रोहित और दीपक के माता पिता भी बहुत खुश हुए। फिर दोनों दोस्त पिता के साथ खेलने के लिए पार्क में चले जाते हैं।
1: भाई बच्चों, ये थी कहानी अनुशासन, और इसे लिखा और सुना रहे थे अरविंद बिंदु भैया। और देखिए दीदी
2: जी, भैया
1: इस कहानी का जो शीर्षक ही था कि अनुशासन, और हमारे जीवन में अनुशासन का कितना महत्व है, इस कहानी के माध्यम से बच्चों को और अच्छे से समझ में आ गया होगा।
2: बिल्कुल।
1: कि देखिए कुछ खास बातें थी, जैसे कि अगर हम खेल रहे हैं या जो भी जरूरी काम कर रहे हैं पहले वो, न कि उसके साथ साथ मोबाइल भी हम देख रहे हैं, तो ना हम मोबाइल ही ढंग से देख पाएंगे या जो काम कर रहे हैं उसको ठीक से कर पाएंगे।
2: सही बात है।
1: यानी कि हर चीज में अनुशासन बहुत जरूरी है। हाँ। हमारे जीवन में तो कुछ ऐसी ही कहानी का एक इसका महत्व था
2: जी भैया
1: बता रहे थे अरविंद बिंदु भैया।
2: जी भैया।
1: और दीदी अब हम लोग अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं जो कि है शब्द ज्ञान।
2: और आज जैसा का शब्द
1: जो
2: है,
1: पहला हिंदी का जो शब्द है। हाँ। वो है औदात्य।
2: हाँ,
1: यानी कि इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है उच्चता, भव्यता या श्रेष्ठता। जब हम किसी

0: कि बात करते हैं किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में, बताते हैं कि
1: हम्म,
0: बहुत, यानी कि औरों से बेहतर, तो
1: जैसे हम
0: वहाँ
1: अगर
0: हम,
1: किसी के बारे में बात करें कि उनके विचारों के बारे में, तो हम कह
0: हाँ
1: सकते हैं कि उनके विचारों में औधता
0: हाँ
1: है,
0: यानी कि
1: श्रेष्ठता है,
0: हाँ
1: उच्च
0: उच्चता,
1: विचार
0: उच्च
1: है,
0: विचार
1: उच्च विचार
0: या
1: है।
0: भव्यता, जब कोई भव्य जो उसकी विचार बात करते हैं हम लोग, कि कोई एक भव्य समारोह हुआ तो वो भव्यता, तो यहाँ पर इसका एक अर्थ होता है औदात्य। और
1: जी,
0: दूसरा जो शब्द है वो
1: दूसरा
0: क्या
1: शब्द
0: है?
1: जो है अंग्रेजी का वो है अकिन।
0: हाँ,
1: इसका
0: स्पेलिंग,
1: मतलब होता है सदृश,
0: यानी कि
1: मतलब
0: इसकी
1: कि
0: स्पेलिंग है AKIN।
1: IN, और जो दो चीजें या कई चीजें हमें एक जैसी दिखें या जिसको कहते हैं अलाइक, वही शब्द होता है अकिन। और अब
0: हमारे जो एक नए साथी और भी इंतजार कर रहे हैं, हम इनसे भी इनका परिचय जानते हैं।
1: अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम ओम श्रीवास्तव है।
1: ओम, और आज आप अपने साथियों को सुनाने के लिए क्या लेकर आए हैं?
2: मैं कविता सुनाऊंगा।
1: जी, सुन, पहले अपनी कविता का शीर्षक बताइए।
2: ठीक, मेरे इस कविता का नाम कदम मिलाकर चलना होगा, और
1: हाँ?
2: इसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा है।
1: बहुत खूब,
0: तो
1: चलिए
0: सुनाइए
1: सुनाइए ओम।
2: बाधाएं आती हैं आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पावों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हस्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, उघानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारों में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों में ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
0: वाह,
1: बहुत बहुत
0: ये
1: सुंदर, बहुत
0: देखिए
1: सुंदर।
0: अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जैसा कि इन्होंने बताया, कविता है, इसका शीर्षक था कदम मिलाकर चलना होगा।
1: हाँ,
0: वास्तव में ये एक एकजुटता की बात है, या सामूहिकता की बात यहाँ पर इन्होंने, कवि ने कही है कि हमें एक दूसरे के साथ कदम मिलाकर चलना होगा, तभी हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और दीदी
1: और भैया, ये जो कविता अभी ओम ने सुनाई है ना,
0: हाँ,
1: इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो बच्चों को समझाने लायक है वो ये है, इस कविता की पंक्तियाँ ये कह रही हैं कि आपके साथ कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा भावुक नहीं होना है। अगर आपको जीत मिली, आप बहुत ज़्यादा हाइप कर गए, अगर आपको हार मिली, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, ये नहीं करना है। जैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में आ रही है, उसके साथ आपको कदम मिला के चलते रहना है, और आगे बढ़ते रहने से कभी ना कभी हमें जीत जरूर हासिल होती है।
0: अक्सर कभी कभी असफलता मिलती है,
1: हाँ,
0: किसी भी काम में, तो लोग निराश हो जाते हैं,
1: निराश हो जाते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं, दोबारा हाँ, प्रयास नहीं करना
0: तो
1: चाहते,
0: निराश
1: हैं,
0: होने
1: है ना?
0: की जरूरत नहीं है, बार बार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। जैसे कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी कि अभ्यास करने से जो हमारी ऐसी जो क्षमता है कम समझने की, वो भी विकसित हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: है ना?
1: तो,
0: और तो
1: इसलिए कैसी भी जीवन की परिस्थितियां हो, संभाव में रहें और आगे बढ़ते रहें।
0: बिल्कुल,
1: बिल्कुल।
0: और अच्छा, इनसे और भी कुछ जानकारी ले लेते हैं इनसे, ओम जी से।
1: अच्छा ओम, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं?
2: मैं 8th में पढ़ता हूँ।
1: अच्छा, और आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है?
2: हिंदी और आर्ट।
1: हिंदी और आर्ट, आर्ट में क्या करते हैं अभी छुट्टियों में, आप क्या करते हैं ये बताइए?
2: छुट्टियों में जैसे हॉलीडे जब होता है गर्मी की, तो उसमें मैं ड्राइंग्स बनाता हूँ अच्छी अच्छी, अच्छा लगता है।
1: स्केचिंग करते हैं या पेंटिंग करते हैं?
2: दोनों चीज करते
1: हैं। दोनों चीज करते हैं, अच्छा। और
2: मुझे सिंगिंग करना अच्छा लगता है, और छुट्टियों में घूमना अच्छा लगता है कहीं बाहर।
1: अच्छा, कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या चीज़ देखना, क्या चीज़ ऑब्जर्व करना पसंद करते हैं, कैसी जगहों पे घूमना पसंद करते हैं आप?
2: जैसे पहाड़ों जगह, जैसे
1: पहाड़ों पे जाना अच्छा लगता है, वहाँ पे अलग तरह का खान पान होता,
2: हाँ,
1: है, अलग तरह का पहनावा होता है,
2: हाँ,
1: है ना, अलग तरह के रास्ते होते,
2: हाँ,
1: हैं।
0: तो कहीं का कुछ अगर याद हो तो बता सकते हैं हम लोगों को ये?
1: हाँ बताइए, आप कहीं अगर घूमने गए हो, कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी हो।
2: मैं एक बार जम्मू कश्मीर गया था वैष्णो देवी जी का दर्शन करने।
1: अच्छा,
2: तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा दर्शन करने में, बहुत भीड़ थी, अच्छा लग रहा था पहाड़ों में, मजा आ रही थी वहाँ पे।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है ओम, और अगली बार फिर आप बालसंग कार्यक्रम में और अच्छी कोई चीज लिख के अपने दोस्तों के लिए लेकर आइएगा।

0: है ना? और बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं आप?
1: मैं इंजीनियर बनूंगा।
0: अच्छा, पसंद है आर्ट और आप बनेंगे इंजीनियर। वाह, आप तो ऑलराउंडर हैं ओम, बहुत अच्छी बात है। तो हमारी गुड विशेस, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप खूब पढ़िए, बहुत अच्छे इंजीनियर बनिए और इंजीनियर बनके अपने देश के लिए अच्छा काम करिए, अच्छा नाम कमाइए।
2: तो दीदी,
1: थैंक यू।
2: हमारे जो दोनों नए साथी हैं,
0: हाँ
2: यानी कि संकल्प और ओम, इन्होंने इतनी अच्छी बातें की और हमें सुनाया, तो हमें भी चाहिए कि इनको एक प्यारा सा गीत और सुना दें।
0: बिल्कुल भैया, तो आइए सुनते हैं बच्चों ये प्यारा सा बाल गीत।

0: तो दीदी ये जो गीत था हमें लगता है कि बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा जो सुन
1: बिल्कुल
0: रहे हैं अपना
1: भैया।
0: कार्यक्रम, और मुझे तो बहुत ही पसंद है ये गीत। और देखिए दीदी, अब इस गीत को सुनते सुनते जो हमारे नए साथी संकल्प हैं
1: हाँ
0: उनकी भी इच्छा हो गई कि वो भी कुछ अपने नए साथ अपने साथियों को सुना दें। तो संकल्प आप क्या सुनाएंगे?
1: एक गाना है तेरी मिट्टी नाम का, मैं वो
0: हाँ
1: सुनाऊंगा।
0: तो सुनाइए
1: देशभक्ति गीत
0: भाई,
1: है
0: सुनाइए।
1: जी, सुनाइए। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे

कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है।

0: क्या बात है। देखिए
1: बहुत
0: दीदी,
1: सुंदर, बहुत
0: बहुत ही
1: सुंदर।
0: अच्छा ये संकल्प इन्होंने ये गीत सुनाया। और संकल्प, आप गाना पसंद करते हैं गाना, और सीखते रहिए, और बहुत अच्छा आप बड़े होकर गाएंगे, हमें उम्मीद
1: जी
0: है। और दीदी,
1: जी
0: अब देखिए, हमने आज कार्यक्रम में बच्चों को बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सुनवाई
1: जी
0: और
1: भैया,
0: अच्छे गीत सुनवाए। मुझे उम्मीद है कि बच्चे इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, अनुशासन की जो बातें हमने की और भी बहुत सी बातें जो की उनको बच्चे ध्यान में रखेंगे।
1: और
0: और एक
1: आज हमने आजादी के उत्सव की शुरुआत भी
0: भी
1: कर
0: कर दी
1: दी।
0: है। और देखिए, अब अपने कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त हो रहा है।
1: जी
0: हम बच्चों
1: भैया,
0: से अगले रविवार को अपने बाल संघ कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों,
1: जय
0: जय।
1: हिंद।

अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल संग। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर 12 बजने को हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष देश भर में वंदे

0: मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए तीन नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के तीन महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर तीन भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये तीन पिलर पर खड़ी की गई है।
0: श्री अमित शाह आज पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में 124 पात्र कैदियों की सजा में कमी की जाएगी। इनमें से 118 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को समय से पहले रिहा किया जाएगा। 6 अन्य पात्र कैदियों को विशेष छूट दी जाएगी। ये छूट अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार और निर्धारित नियमों के पालन के आधार पर दी जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय भंडार में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय ज्ञान, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का आह्वान किया। इस बीच नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान क्यानशी को हराया। चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज आर रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through the 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. The campaign, which began in 2022 as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, has since evolved into one of the country's largest public

अनुरोध होगा दिन में 1:15 पर। 2:30 पर सुनिएगा लोकगीत, गायक कलाकार रंजीत कुमार और साथी। बाल गोपाल कार्यक्रम में शाम 5 ग्रामीण बच्चे सुनेंगे बाल कहानी केचुआ, कहानीकार विजय बहादुर सिंह। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर युवा साथियों को सुनाएंगे कार्यक्रम हेलो युवा। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे मनोज कुमार सिंह से की गई बातचीत, खेतों की उर्वरा शक्ति बनाए रखने हेतु आवश्यक उपाय। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर आप सुनेंगे चित्रा चौरसिया के स्वर में गीत और भजन। श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी आई है का समय होगा रात 8 और 8:30 पर। आज इतवार है, इसमें सुनिएगा राजेंद्र कुमार की लिखी झलकी एलटीसी का चक्कर। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा होगा रात 9:30 पर। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना। सानिया बानो, जिनकी उम्र है 34, कद 5, रंग गोरा, चेहरा लंबा है, ये दिनांक 3 मई 2026 से वैधग्राम कटैया नेवादा प्रतापगढ़ से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क करें अब्दुल हमीद से, जिनका नंबर है 8004438068। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 8004438068। सहिदा, जिनकी उम्र है 15, कद 5, रंग गेहुआ, इकहरा बदन, चेहरा गोल है, ये दिनांक 22 मई 2026 से डिरबा बाजार जेठवारा प्रतापगढ़ से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क करें खलुतीन मियां से, जिनका मोबाइल नंबर है 7344477213। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 7344477213। रबीना, जिनकी उम्र है 22, कद 5, रंग सांवला, चेहरा गोल, इकहरा बदन है, ये दिनांक 2 जून 2026 से हराईपट्टी प्रतापगढ़ से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क करें रामजीत से, जिनका मोबाइल नंबर है 8957473682। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 8957473682। ये थी खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पद्मा तलवलकर का गायन, राग है गौड़ सारंग।

अभी आपने सुना पद्मा तलवरकर का राग गौर सारंग में खयाल गायन। तबले पर संगत कर रहे थे ओमकार गुलवाड़ी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं आंखों की गुस्ताखियां फिल्म के साथ, जिसे गाया है जुबीन नौटियाल ने। गीत और संगीत है विशाल मिश्रा का।

0: यूं ही सफर।
1: अब आपको सुनवाने जाते हैं धड़क 2 फिल्म का गाना, जिसे गाया है दर्शन रावल ने। गीत गुरप्रीत सैनी का है और संगीत है रोचक कोहली का।

अब जो गीत आपको हम सुनवाने जा रहे हैं उससे हमने लिया है फिल्म धुरंधर से। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और शाश्वत सचदेव की। गीत इरशाद कामिल का है और इसकी धुन बनाई है शाश्वत सचदेव ने।

हीर एक्सप्रेस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, नक्श अजीज और हरजोत कौर की आवाजों में। गीत श्लोक लाल का था और इसकी धुन बनाई थी तनिष्क बागची ने। अब जो गीत श्रोताओं आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म हाउसफुल 5 से। आवाजें मधुबंती बागची और सुमंतो की हैं, गीत कुमार का है और धुन है वाइट नॉइज क्रिएशन की।

जुबिन नौटियाल को आपने सुना फिल्म रेड टू में। गीत मनोज मोहनसिर का था और संगीत था रोचक कोहली का। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं सैयारा फिल्म का गाना, जिसे गाया है फहीम अब्दुल्ला ने। गीत इरशाद कामिल का और संगीत तनिष्क बागची का है।

0: सैयारा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 1 बजने को हैं, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और ये 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। इस दौरान सामूहिक वंदे मातरम गायन, तिरंगा रैलियां, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी से हर घर तिरंगा

0: यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री ने आज गोरीमेदू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बम्पर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश की जा रही है। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चियनशी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. The campaign, which began in 2022 as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, has since evolved into one of the country's largest public participation movements. In Delhi, as part of the campaign, Lok Sabha BJP MP Basuri Swaraj paid floral tributes at the memorial of Pandit Madan Mohan Malviya in Malviya Nagar, followed by a Tiranga Yatra from Pilanji village to Greater Kailash. Speaking to the media, Ms. Swaraj said the BJP has launched a week-long campaign starting today, during which party office bearers and workers would visit the memorials of national heroes and martyrs. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi has paid tributes to the freedom fighters who participated in the Quit India movement. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said, "They united the nation in the struggle for freedom, taking inspiration from Mahatma Gandhi's clarion call of do or die." In a social media post, the Prime Minister said, "Their courage will always

0: वजीर आला की रिहाइश गाह से शुरू हुई और सिविल अस्पताल और अटल चौक से होती हुई विधान भवन के सामने अख्तितम पजीर हुई। इस दौरान मरकजी वजीर ममलकत बराए ख़जाना और रियासती बीजेपी सदर पंकज चौधरी, नायब वज़राए आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थनगर ज़िले का दौरा करेंगे और दो असम्बली हलकों में तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आला सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज और बांसी असम्बली हलकों के लिए 311 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 107 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर वजीर आला मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों से फ़ायदा उठाने वालों को सर्टिफिकेट देंगे और एक जलसा आम से भी खिताब करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलकत जितिन प्रसाद और मरकजी वजीर ममलकत प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल ने कल आगरा में दो रोज़ा एआई फ्यूचर रेडी कॉन्क्लेव 2026 की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ममलकत जितिन प्रसाद ने कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में उत्तर प्रदेश एआई के मैदान में आगे बढ़ रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए मरकजी वजीर ममलकत ने कहा,
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच अनुरूप कार्य हो रहा है कि धरातल पर इसका प्रभाव दिखाई दे, कृषि से लेकर स्वास्थ्य से लेकर छोटे मध्यम उद्योग और तमाम ऐसी जगहों पे एआई का इस्तेमाल करते हुए भारत कैसे आगे बढ़ेगा और खास तौर से हमारे युवा इन प्रतिभा मैंने देखी, ये जो छात्र छात्राएं हैं कॉलेजेस में उनको एआई के लिए क्या सरकार प्रोत्साहन दे रही है उसके बारे में जानकारी दी।
0: मरकजी वजीर ममलकत प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल ने कहा कि एआई के बगैर भारत तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बन सकता।
2: एआई का भविष्य क्या है, हमें कितना इस्तेमाल करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और इसके बिना भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। विशेषज्ञों ने अपने विचार देखे, इस वैचारिक मंथन से अनुरोध निकलेगा वो भारत को प्रधानमंत्री का विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को पूरा।
0: रियासत के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। मरकजी हुकूमत ने वाजह किया है कि सार्फीन के लिए यूपीआई और तमाम जाती लेन देन मुफ्त बने रहेंगे। वजारत मालियात ने कहा कि यूपीआई के ज़रिए से अदायगी करते वक्त सार्फीन को किसी भी किस्म के लेन देन की फ़ीस नहीं देनी होगी, जबकि ज़्यादातर तजारती लेन देन भी मुफ्त रहेंगे। वजारत ने मजीद कहा कि अगर मर्चेंट डिस्काउंट रेट फीस लागू होती है तो यह सिर्फ एक मखसूस हद से ज़्यादा महदूद तजारती लेन देन पर बराए नाम शरह पर लागू होगी। रियासती हुकूमत ने 12 साल तक की उम्र के स्कूल जाने वाले बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक नई पहल की है। इन बच्चों को ले जाने वाली हर स्कूल की गाड़ी के लिए एक अटेंडेंट होना लाजमी होगा जो बच्चों को महफूज तरीके से सवार करने और उतारने का जिम्मेदार होगा। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशुतोष निरंजन ने इस सिलसिले में रियासत के तमाम स्कूलों के मुंतजमीन को एक ख़त जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने से रियासत में कई नदियों की आबी सतह में इजाफा हुआ है। बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बदायूं और फर्रुखाबाद में गंगा नदी, लखीमपुर खीरी में शारदा नदी और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। इस दरमियान महकमे मौसमियात ने अगले दो दिनों के लिए रियासत के कई हिस्सों में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुईं।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो अनुरोध। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।

0: महेंद्र यादव बरौत हंडिया प्रयागराज से।
1: जी महेंद्र जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: मासूक फिल्म का गाना है, ओ यारा जीने न देगी ये जुदाई।
1: कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना है। तो महेंद्र जी ने पसंद किया है, हम आपकी पसंद का ये गाना सुनवाने जा रहे हैं। महेंद्र जी लीजिए, सुनिए।

0: सुरेंद्र यादव बांका जलालपुर
1: जी।
0: मैम गाना सुनना है नागिन फिल्म का
1: जी जी
0: मन डोले,
1: अच्छा
0: ये
1: अच्छा
0: वाला गाना।
1: अच्छा ये पुरानी वाली नागिन फिल्म।
0: गया।
1: हाँ जी हाँ, ये पुरानी नागिन का गाना है, लता जी की आवाज
0: जी,
1: है
0: मैडम लता मंगेशकर
1: जी,
0: गाना
1: जी,
0: है जी
1: जी जी। तो सुरेन जी आपकी जी। इस पसंद को हम सुनवाने जा रहे हैं, लीजिए सुनिए।

0: जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्रद्धा की मधुर से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आपको करता हूँ सादर नमस्कार।
1: नमस्कार जी, नमस्कार। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: दीदी गीत तो अवश्य सुनूंगा और आपसे फरमाइश भी करूंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ श्रोताओं को कि हमारी जो मधु दीदी है बहुत ही खूबसूरत और अंदाज में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है, और जो आपकी पसंद कार्यक्रम आता है वो तो बेहतरीन से बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा लगता है। और दो शब्द दो लाइनें और दो अपने विचार व्यक्त करती है वो हमें बहुत अच्छा लगता है।

0: है, और जो आपकी पसंद कार्यक्रम आता है वो तो बेहतरीन से बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा लगता है। और दो शब्द, दो लाइनें और दो अपने विचार व्यक्त करती हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही आकर्षित करता है।
1: बहुत
0: इसके
1: बहुत
0: लिए मैं
1: धन्यवाद।
0: मधु दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनका प्रयास, उनका जो कोशिश है, कौशल है, सराहनीय है, वंदनीय है और अनुकरणीय है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे शब्दों में इस कार्यक्रम की तारीफ की। इससे हमें बहुत उत्साह मिलता है कि और अच्छे से अच्छे कार्यक्रम अपने श्रोताओं के लिए प्रसारित कर सकें। तो बताइए अब कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: दीदी, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है अनुरोध है,
1: जी
0: और किशोर कुमार साहब ने गीत को गाया है, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर।
1: जी जरूर सुनवाएंगे। तो हेलो अनुरोध कार्यक्रम में अनुरोध फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति जी। तो आइए सुनवाते हैं आपको।
0: जी धन्यवाद दीदी, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो अनिरोध, और मैं हूं मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बताएं।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार।
1: रेखा यादव कुकुरा हंडिया प्रयागराज से बोल रहे हैं।
0: जी जी, हंडिया से रेखा जी हैं हमारे साथ। तो रेखा जी, कौन सी फरमाइश है आज आपकी?
1: मैम, मेरे दुश्मन, मेरे भाई, मेरे हमसाए, मेरे दोस्त, यही फिल्म का यही गाना हमको सुनवा दीजिए।
0: अच्छा, ये हरिहरन साहब की आवाज में बड़ा ही अच्छा गीत है जिसे जावेद अख्तर ने लिखा है। अनु मलिक का संगीत है और आवाज हमने आपको बता ही दी। फिल्म का नाम है बॉर्डर।
1: हाँ मैम।
0: तो आपकी इस पसंद को पूरा करते हुए हम सुनवाएं गीत की, पहले आप किसी का नाम लेंगी?
1: नहीं मैम, बच्चों का नाम लेंगी।
0: हाँ जी, ले लीजिए
1: मैम। आयुष और अनन्या और हमारे नाना नानी हैं। हमारे नाना आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे से सुनते हैं।
0: अच्छा, तो आप खुद लगा के देती हैं उनको प्रोग्राम?
1: जो पंचायत घर नहीं आता है।
0: हाँ,
1: हमारे नाना तो ऐसे सुनते हैं कि जैसे हमारे नाना से बात कर रहे हैं, हमारे नाना उन सर से बात करते हैं।
0: अच्छा, देखिए कितना जुड़ाव है कार्यक्रमों से।
1: हाँ, मिलाते रहते हैं।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है रेखा जी, आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए और सुनवाते भी रहिए, और हम आपको सुनवा देते हैं बॉर्डर फिल्म का ये गाना। लीजिए, सुनिए।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: आदरणीय मधु दीदी जी को सादर से प्रेम प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: सबसे पहले तो परिचय देना चाहूंगा श्रोताओं को, मैं आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ।
0: जी राजू जी बोलिए।
1: और आज का गीत हमारा रहेगा, फिल्म का नाम है बारिश।
0: जी
1: जिसके फनकार हैं सुरेश वाडेकर और लता जी।
0: जी जी
1: और गाने के बोल हैं, घटा छा गई है, बाहर आ गई है।
0: वारिस फिल्म के इस गाने की फरमाइश आई है आगरा से और की है राजू लवानिया जी ने। तो राजू जी, आपको नाम लेने हैं क्या किसी के?
1: नहीं दीदी, मेरे लिए तरफ से ये गाना पूरी आकाशवाणी प्रयागराज को डेडिकेटेड है, हमारी प्यारी दीदी सहित और सभी श्रोताओं को।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको भी इस गाने की फरमाइश में रखा और हम आपको सुनवा देते हैं वारिस फिल्म का गाना। हाँ जी हाँ, जरूर जरूर कहिए।
1: इंसान सोचता नहीं कि गलत काम में क्या रखा है।
0: जी
1: इंसान सोचता नहीं कि गलत काम में क्या रखा है। अरे फोन करो और गीत सुनो, किसी के नाम में क्या रखा है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो हम आपको सुनवाएं वारिस फिल्म का ये गाना।
1: थैंक यू दीदी, नमस्कार।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए।
1: पोस्ट आडिया तहसील आडिया थाना आडिया गांव मुगराम जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं मैम। नमस्कार।
0: नमस्कार प्रेमचंद यादव जी, नए गानों के बहुत शौकीन हैं, जब भी फरमाइश करते हैं नए गाने ही रहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम, नए गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर अरिजीत सिंह का।
0: अच्छा अच्छा, अरिजीत सिंह के फैन हैं आप?
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम।
0: तो आज कौन सा गाना चुना है आपने?
1: फिल्म का नाम है क्रीचर 3D
0: जी।
1: विक्रम भट्ट और बिपाशा बसु की फिल्म है ये।
0: जी जी।
1: और गाने के बोल हैं, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है।
0: बहुत बढ़िया गाना और आपने चुनाव जो किया है बहुत अच्छा, और आपने गाया भी बहुत अच्छा।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: संगम नगरी प्रयागराज नेवी कला पंचपुकरा से पवन निषाद।

0: रहा है मैम। नमस्कार।
1: नमस्कार पवन जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: नदिया का पार का फिल्म कौन दिशा में चली रे बटोहिया।
1: चला रे बटोहिया, बहुत खूबसूरत सा गाना है नदिया के पार का। ये फिल्म भी बहुत हिट हुई थी।
0: हाँ जी मैम।
1: अच्छा तो पवन जी, आपने जैसा कि पहले भी बता चुके हैं आप कि आप नाव चलाते हैं,
0: हाँ,
1: तो ये बताइए कि जब बरसात के समय तो काफी पानी बढ़ जाता होगा गंगा जी का, तब भी आप नाव चलाते हैं उस समय भी?
0: हाँ हाँ बिल्कुल मैम, हमको लोग पानी गंगा जिस कोई डर नहीं रहता है।
1: अच्छा अच्छा वहीं खेल के बड़े हुए हैं, उन्हीं की गोद में बड़े हुए हैं।
0: हाँ हाँ
1: अच्छा अच्छा तो इस समय भी लोग भ्रमण करते हैं बरसात के समय
0: हाँ
1: या जब
0: बिल्कुल
1: गंगा
0: हाँ आते
1: जी?
0: हैं।
1: हाँ हाँ आते हैं
0: अभी
1: अभी भी? हाँ
0: इस समय थोड़ा धान के लगाई चल रहा है ना, थोड़ा
1: हाँ
0: पब्लिक कमजोर है।
1: जी जी
0: जब धान लग जाएगा फिर से पब्लिक आते रहेगा पूरा ये जो है नवंबर वम्बर तक। हाँ खूब फायदे आते हैं नवरात्र कुवार उवार में।
1: अच्छा अच्छा तो चलिए पवन जी, हम आपको सुनवाते हैं
0: अपने
1: नदिया
0: बेटे
1: के।
0: का नाम लेना चाहते
1: हाँ
0: हैं मैम।
1: जरूर लीजिए, ले लीजिए।
0: महेंद्र निषाद है एक,
1: हाँ
0: एक अद्रका निषाद है, मेरा पोता एक श्रियांश निषाद।
1: अच्छा, तो चलिए सुनिए नदिया के पार फिल्म का ये गाना।

0: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम स्थित फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने डॉ बीआर आम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित राजकीय समारोह वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया। उन्होंने 30 दिसंबर 1943 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था।
2: It is indeed to pleasure to launch this campaign today on the August Kranti Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
1: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर हैं। इधर दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
3: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक जितने भी हमारे शहीद स्मारक है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
1: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृह मंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
1: श्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
4: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की

0: सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
1: राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने की इस उपलब्धि के साथ ही पुदुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गतिरोध जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है।
2: सरकार की 4 सदस्यीय मंत्री स्तरीय टीम छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रही है। इधर जेकेएलएम विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री से छात्रों के सीधे संवाद की मांग की है। वहीं रांची के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने सीबीआई और ईडी जांच, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने तथा पुलिस कांस्टेबल शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 युवाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से चारों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है। 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जालंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन तथा लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आसपास के क्षेत्रों के 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को भी प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ताइवान की कुछ एयरलाइंस ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति आज सवेरे तक लगभग 162 किलोमीटर प्रति घंटा

0: घोषणा की गई थी। इससे तेज बारिश हो रही है जिससे भीषण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और इसके चचियांग प्रांत और पड़ोसी फुचियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है। अधिकारियों ने चचियांग में भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। शंघाई के हांगशाओ और पुडोंग हवाई अड्डों ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानों को रद्द कर दिया है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
2: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बस्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में

0: बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
1: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बस्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टेयर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेन शी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता, जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीत। गायक कलाकार हैं रंजीत कुमार और साथी। इनके स्वर में पहले सुनते हैं देवी गीत।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं लोकगीत। गायक कलाकार है रंजीत कुमार और साथी। सुनते हैं इनके स्वर में दादरा।

रंजीत कुमार और साथियों की गाई इस शिव वंदना के साथ ही लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और

0: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्स और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।
1: ब्रेकिंग न्यूज, आज के सफर पर पापा हैं ड्राइवर और मैं उनकी नेविगेटर, तो चलिए मेरे साथ, लेकिन उससे पहले सीट बेल्ट ऑन। गाड़ियों का शोर एक दूसरे से आगे निकलने की हो, अभी अभी हमको गलत ढंग से ओवरटेक करते हुए गुजरी है एक मोटरसाइकिल, 3 पैसेंजर और वो भी बिना हेलमेट। हम चल रहे हैं सीधे आगे क्रॉसिंग पर, हम लेंगे राइट टर्न, स्पीड लिमिट इज 40 किलोमीटर पर आवर। अरे हमारे सामने से हमारी लेन में क्यों आ रही है ये स्कूल वैन जिसमें है बच्चे जरूरत से ज्यादा, और ड्राइवर का ध्यान है विंडस्क्रीन पर नहीं मोबाइल स्क्रीन पर। अब सामने नजर आ रही है क्रॉसिंग और वहाँ ट्रैफिक सिग्नल की लाइट है ग्रीन, पर समय है कम तो हमें बढ़ानी होगी अपनी रफ्तार इससे पहले कि सिग्नल हो रेड, पर ये होगा खतरनाक इसलिए हम चलेंगे नॉर्मल स्पीड। लीजिए आगे क्रॉसिंग और अब सिग्नल भी हो गया है रेड, तो अब वक्त है रुकने का, लेकिन ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले, तो अब हम लेते हैं ब्रेक।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 3 बजे हैं, हमारी आज की ये सभा अब संपन्न होती है, लेकिन एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती के राष्ट्रीय नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे। सायंकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में ग्रामीण बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल। ये आकाशवाणी प्रयागराज है। अब बच्चे सुने अपना कार्यक्रम बाल गोपाल।
1: लरिकनों जय हिंद। भैया देखा हो इसमें बुन्नी बरसात का मौसम बा, तो बुन्नी की बरसात में एक तो खान पान में बड़ा ध्यान रखे के चाहिए।
2: अच्छा,
1: और साथे साथे भैया देखा पानी और चुन्नू मुन्नू देखा हो, कहीं कुछ खेलत रहते हैं, कहीं से आवत तो भूख लगत है, खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं,
2: कुछ खा लेते हैं। भैया हम कहीं देखा है समय भाई, इतना सावधानी बरतक जरूरत बा। हम कहे भाई सिर्फ खाने पान नहीं भैया, भाई साफ सफाई के देखा बहुत विशेष
1: बहुत बहुत ध्यान देवे की जरूरत बा।
2: भाई देखा है चुन्नू मुन्नू है ना भैया, बाहर निकल ही तिनका भाई घर का अनाज देखा नहीं पसंद आओ। देखिए भाई बाजार में का भाई चटक मटक बना बा, बस वही पसंद करत
1: हे। भैया देखा हो चटक मटक तो मान ला सबके पसंद आवत है, और लड़कैया में देखा हमानो के पसंद आवे है। मुला देखा आज का जो जमाना बा ना, वो चटक पटक से निकल के वो फास्ट फूड पर चला गया है, वो कुल पैकेट बंद आवत है और भैया झट से बन जाते है, और ओके देखा अच्छा भी लगत बा, तुरंते बन भी जाता है, तो चुन्नू मुन्नू बहुत पसंद करते हैं। मुला देखा ई कुल जौन भी फास्ट फूड भैया बाजार का जौन पैकेट बंद खाद्य सामग्री बा, वहसे चुन्नू मुन्नू के बचे के जरूरत है भैया, वो बहुत नुकसानदायक है।
2: काहे नहीं भाई, हम कहीं देखा जौन चीज बाजार में बनत बाटे और बंद बाटे, वो भाई ताजा बना बा की कितना समय से बना बाटे,
1: बिल्कुल
2: हाँ, तो ये सब चीज देखा बहुत विशेष ध्यान दे जरूरत बाटे भाई। तुरंत तो स्वाद बहुत बढ़िया लागत, लेकिन जब देखा कोनो बीमारी पकड़त है ना, तो भाई हम कही ओकर गंभीर परिणाम हो जाते।
1: भैया देखा हो एक बात बताई कि चुन्नू मुन्नू ही आवे वाले भविष्य का कंधा है भैया, आवे वाले भविष्य का ऋण है। तो और देखा अगर तन स्वस्थ है ना,
2: हाँ,
1: तो पढ़ाई लिखाई भी स्वस्थ रहता, बढ़िया रहता,
2: बिल्कुल हाँ, बिल्कुल।
1: तो चुन्नू मुन्नू खाएं चटक मटक भी खाएं, देखा हो हम कहें कि कोनो चीज बन करत है तो घरे में बोल के बनवा ले हैं कि हमके ये खाए के बा। मुला अपने सेहत का ध्यान रखे के चाहिए, खाना बिल्कुल संतुलित और पौष्टिक होके के चाहिए, शुद्ध होके के चाहिए, जौन शरीर के लगे। तो देखा बहुत जरूरी बा कि चुन्नू मुन्नू थोड़ा ऐसे परहेज करें, और पढ़ाई लिखाई का मतलब यह होता है कि ये ध्यान दे कि कौन चीज पौष्टिक बा, कौन हमारे शरीर खातिर बढ़िया हुई।
2: बिल्कुल,
1: अब बचपन में अगर देखा शरीर अपन संवर गए भैया है, तो देखा वो बात तक काम आवत है।
2: बिल्कुल भाई, कही गया हम कही देखा अपने बूढ़ पुरनिया है ना, भी आजो भाई बिना चश्मा का अखबार पढ़ लेता है, तो भाई कहो ना कहो देखा सब खान पान के ही असर।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, खान पान का असर बा। मुला देखा बात बत कही हुई, का सुनवाओ थोड़ा चुन्नू मुन्नू के।
2: भाई देखा आज अपने चुन्नू मुन्नू भाई देखा एक विजय बहादुर सिंह के भाई पाल कहानी बा कछुआ, तो भाई कछुआ कहानी और सुनाओ जाए भैया।
1: सुनवा दे भैया।
3: यह कहानी आदर्श महाविद्यालय के छात्र दीपक की है। दीपक यहाँ 7वीं कक्षा का छात्र है। स्कूल में इस समय 8वां घंटा चल रहा है। यह खेलकूद का घंटा है। सभी बच्चे इस समय खेल के मैदान में हैं। स्कूल में खेलकूद की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बच्चे अपनी अपनी रुचि के अनुसार कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी या बैडमिंटन

खेल रहे हैं। कुछ बच्चे झूला झूलने का आनंद भी ले रहे हैं। इस समय कक्षा अध्यापक अनिरुद्ध सर मैदान में एक किनारे कुर्सी पर बैठे बैठे बच्चों की गतिविधियों को देख रहे हैं। अनिरुद्ध सर की निगाह मैदान के एक किनारे फूलों की क्यारियों की ओर गई। उन्होंने देखा कि वहाँ काम कर रहे माली के पास एक छात्र खुरपी से जमीन को खोदकर कुछ खोज रहा है। यही नहीं, वह मिट्टी से उठा उठा कर कोई चीज़ एक प्लास्टिक थैली में जमा भी कर रहा है। अनिरुद्ध सर ने बैठे बैठे उस छात्र को पहचान भी लिया। वह दीपक था। अनिरुद्ध सर ने एक छात्र को भेजकर दीपक को बुलवाया, साथ साथ यह भी कहा कि वह उस थैली को भी लेता आए जिसमें कोई चीज़ एकत्र कर रहा है। अनिरुद्ध सर का आदेश सुन दीपक घबराया। घबराहट का कारण यह था कि खेलकूद के इस घंटे में वह कोई अन्य काम कर रहा था। खैर, डरते डरते दीपक हाथ में प्लास्टिक की थैली लिए अनिरुद्ध सर के सामने हाजिर हुआ। अनिरुद्ध सर ने पूछा, दीपक, सभी बच्चे खेल रहे हैं और तुम वहाँ माली के पास बैठे बैठे क्या कर रहे हो और इस थैली में क्या जमा कर रखा है? सर, यह केंचुआ है, डरते डरते दीपक ने कहा। केंचुआ, अर्थवर्म? अनिरुद्ध सर चौंके। उन्होंने दीपक के हाथ की थैली अपने हाथ में ले ली। थैली खोलकर देखा, उसमें बहुत सारे केंचुए एक दूसरे से गुथे हुए रेंग रहे थे। अनिरुद्ध सर ने अनुमान लगाया कि दीपक इन केंचुओं का इस्तेमाल मछली पकड़ने के लिए करेगा। उन्होंने नदी नालों में तमाम लोगों को कंटिया में केंचुआ फंसाकर मछली पकड़ते देखा था। उन्होंने दीपक से कहा, तो तुम मछली पकड़ने का इंतजाम कर रहे हो? दीपक, नहीं सर, मैं और मेरे परिवार में कोई मछली नहीं खाता। फिर मेरे इर्द गिर्द कोई नदी तालाब भी तो नहीं है, फिर तुम इन केंचुओं का क्या करोगे? अनिरुद्ध सर ने पूछा। सर, मैं इन्हें अपनी फूलों की क्यारी में डालूंगा। किताब में केंचुओं के ऊपर एक पाठ है जिसमें लिखा है कि केंचुए मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। हमारे लान की मिट्टी में एक भी केंचुआ नहीं है। केंचुओं के न होने से हमारी मिट्टी बेजान सी हो गई है। वहाँ पहले तो फूल खिलते नहीं, खिलते भी हैं तो उनमें वो रौनक नहीं जो यहाँ स्कूल के फूलों में दिखती है। सर, यहाँ स्कूल की क्यारियों में तो ढेर सारे केंचुए भरे पड़े हैं। दीपक का जवाब सुन अनिरुद्ध सर का चेहरा खिल उठा। बोले, वाह बेटे, बढ़िया बात। तुम केंचुओं का महत्व जानते हो। केंचुए हमारे मित्र हैं। दुर्भाग्य है कि खेतों में रसायनों के उपयोग से वे गायब हो रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, तुम इन केंचुओं को अपनी क्यारी में तो डाल दोगे, लेकिन इनको खिलाओगे क्या? ये तो सूखी पत्तियां वगैरह खाते हैं सर, दीपक ने कहा। हाँ, खाते तो हैं, पता नहीं तुम्हारे लान में सूखी पत्तियां हैं भी या नहीं। अभी ज़रूरत है इनकी संख्या बढ़ाने की। पहले इनकी संख्या खूब बढ़ा लो, फिर वे स्वयं आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इसके लिए तुम्हें गोबर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। गोबर इनका प्रिय आहार है। क्या एक दो टोकरी गोबर का इंतजाम हो जाएगा? हाँ सर, क्यों नहीं। हमारे पड़ोसी शर्मा जी हैं, उन्होंने एक गाय पाल रखी है, वहाँ से हमें गोबर मिल जाएगा। ठीक है, क्यारी में 24 घंटे पहले का गोबर फैला देना, फिर उस पर इन केंचुओं को फैला देना। धूप हो तो उनके ऊपर जूट का भीगा बोरा फैला देना। कुछ दिनों बाद तुम्हारी क्यारी में केंचुओं की वंश वृद्धि शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद अनुज सर ने दीपक से पूछा, दीपक, क्या तुम जानते हो कि केंचुओं की खेती भी होती है? केंचुओं की खेती? नहीं सर, मैंने तो ऐसा नहीं सुना। अब जान लो, केंचुए पाले जाते हैं जिनसे केंचुए की खाद यानी वर्मी कंपोस्ट तैयार होती है। उस वर्मी कंपोस्ट को बाजार से खरीदा भी जा सकता है। क्या तुम ऐसा कोई केंचुआ फार्म देखना चाहोगे? क्यों नहीं सर, यह तो मेरे लिए बड़ा नया अनुभव होगा। देखो, मैं प्रयास करता हूँ, कहकर अनिरुद्ध सर कुर्सी से उठे, दीपक को साथ लिया, उसकी केंचुए वाली थैली को भी लिया और प्रिंसिपल सर के ऑफिस में पहुँच गए। अनिरुद्ध सर ने थैली खोलकर प्रिंसिपल सर को केंचुए दिखाए और दीपक द्वारा उन्हें एकत्र किए जाने की पूरी कहानी सुनाई। प्रधानाचार्य जी दीपक की जिज्ञासु प्रवृत्ति से बहुत खुश हुए। अनिरुद्ध सर से बोले, अनिरुद्ध जी, ऐसे जिज्ञासु बच्चों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अनिरुद्ध सर ने अपने दिमाग में पहले से ही योजना तैयार रखी थी। बोले,

0: सर, प्रकृति अध्ययन हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसे क्लासरूम में पढ़ाने के बजाय बच्चों को प्रकृति के निकट ले जाया जाना चाहिए। इसके लिए मेरे दिमाग में एक योजना है। क्यों न एक दिन बच्चों के भ्रमण का कार्यक्रम रखकर उन्हें केचुआ फार्म दिखा दिया जाए। प्रधानाचार्य अनुरुद्ध जी, आपकी योजना तो अच्छी है, मुझे क्या करना है ये बताइए। सर, एक दिन कॉलेज बस की व्यवस्था करवा दीजिए। 5-6 किलोमीटर दूर मेरे एक मित्र का जैविक खेती का फार्म है। वहाँ केचुआ फार्म तो है ही, मधुमक्खी पालन, मछली पालन और जैविक खेती संबंधी अन्य कार्य भी होते हैं। बच्चों को वहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। प्रधानाचार्य ठीक है अनुज जी, एक नहीं 2 बस ले लीजिए, एक लड़कों के लिए और दूसरी लड़कियों के लिए। विद्यालय समय के अंदर ही भ्रमण करके लौट आइएगा। अनुज सर ने जैविक फार्म के मालिक अपने मित्र विवेक से बातचीत करके भ्रमण का कार्यक्रम तय कर लिया। नियत तिथि पर अनुरुद्ध सर 2 बसों में बच्चों को लेकर विवेक जैविक फार्म पर पहुंच गए। विवेक जी फार्म के गेट पर ही अनुरुद्ध सर और बच्चों का इंतजार कर रहे थे। बच्चों और अनुरुद्ध सर को अपने बीच पा विवेक जी बहुत खुश हुए। वे बच्चों को अपने साथ जैविक फार्म में घुमाना शुरू कर दिया। फार्म में इस समय केले की फसल तैयार थी। केले के पेड़ों में ढेर सारे फलों की लच्छियाँ लटक रही थीं। उन्हें दिखाते हुए विवेक जी ने बच्चों से कहा, बच्चों केले देखकर तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए इंतजाम कर रखा है। इतने में फार्म के 2 कर्मचारी बड़े बड़े 2 टोकरों में पके केले लेकर आ गए और बच्चों के सामने रख दिए। बच्चे उन पर टूट पड़े। ऐसे लजीज और मीठे केले बच्चे पहली बार खा रहे थे। विवेक सर ने बच्चों को बताया कि ये केले पूर्णतया जैविक हैं। इन्हें तैयार करने में रासायनिक खादों और रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि बाज़ार में बिकने वाले सारे केले रसायनों से पकाए जाते हैं, जबकि ये केले जूट के बोरे में ढक कर पकाए गए हैं। विवेक जी ने बच्चों को अपना मधुमक्खी फार्म भी दिखाया। लकड़ी के बक्सों में पाली गई इन मधुमक्खियों का पुष्प रस और पराग लेकर आते जाते देखना बच्चों के लिए नया और अनोखा अनुभव था। विवेक जी ने एक बॉक्स खोलकर मधुमक्खियों का जीवन चक्र और उनका क्रियाकलाप भी समझाया। सबसे आखिर में विवेक जी बच्चों को लेकर केचुआ फार्म पर पहुँचे। यह फार्म घास फूस और पयाल के छप्पर से ढका बड़ा हालनुमा स्थान था। उस हाल में ढेर सारी छोटी छोटी क्यारियाँ थीं। उन क्यारियों में गोबर डालकर केचुए पाले गए थे। विवेक जी ने एक क्यारी का ऊपर का गोबर हटाकर नीचे से एक मुट्ठी अधबनी खाद निकाली। उसमें असंख्य छोटे छोटे केचुए कुलबुलाते दिखने लगे। उन्होंने बताया कि गोबर को वर्मी कंपोस्ट में बदलने में करीब 1 माह का समय लगता है। तब तैयार वर्मी कंपोस्ट को तार की जाली से छानकर केंचुओं को अलग कर लिया जाता है। फिर एक केंचुए नई क्यारियों में डाल दिए जाते हैं और वर्मी कंपोस्ट को पैक करके बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। अपना वक्तव्य समाप्त करने के उपरांत विवेक सर ने दीपक को बधाई दी कि उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति के फलस्वरूप ही यह भ्रमण यात्रा बन पाई। उन्होंने उपहार स्वरूप वर्मी कंपोस्ट का एक थैला भी दीपक को दिया ताकि वह अपनी फूलों की क्यारी में उसका उपयोग कर सके। इस तरह ढेर सारी जानकारियों के साथ बच्चे हंसते खिलखिलाते स्कूल की ओर लौट पड़े।
1: मनु भैया, हम कहीं देखा भाई, कितनी बढ़िया विजय बहादुर सिंह के भाई केचुआ कहानी रही।
2: बिल्कुल भैया, कहानी भी रही और कहानी में देखा कितना बड़ा संदेशा रहा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और संदेशा भी देखा अपने गांव माटी परिपाटी से जुड़ा रहा, किसानी से भी जुड़ा रहा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और चुन्नू मुन्नू के देखा, हर चीज का जानकारी होके के चाहिए। विशेष कई के भैया गाँव गिराज में रहते हैं, पढ़ाई लिखाई तो जरूरी होते है ना, लेकिन खेती किसानी भी कैसे होता है, कौने ढंग से होता है, कौने ढंग से फसल उपजावा जाता है, कौने ढंग से अन्न मिलत है, हम तो कहीं की सबके जानल बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल भाई, हम कहीं देखा माटी से जो जुड़ा बाटे भाई, हम कहे हम तो कहीं बहुत श्रेष्ठ बाटे जो।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और
1: एक बात यह कहा भाई, देखा सब तो भाई ठीक है भाई, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखब जरूरी बाटे। साथे साथे भाई देखा घर में बड़े बुजुर्ग हैं भाई, उनके भी सम्मान अपने चुन्नू मुन्नू के सीखे के जरूरत
2: है। भैया देखा, ये तो सबसे जरूरी है। वो देखा हर चीज के साथ साथ खेल कूद भी करें, पढ़ाई लिखाई भी करें, बढ़िया खान पान रखें, लेकिन सबसे जरूरी होता जो उन कहा जाता है ना, नैतिक।

0: सांस्कृतिक मूल्य भैया,
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया,
0: कुछ बात जो ना अपने मूल्य से संबंधित होता और वो मूल्य का विकास चुनु मुनु के हमेशा करे के चाहिए। अक्सर करके ये देखे में आवत है कि बड़ छोट को कोई कुछ बतावत हैं कहत हैं तो देखा कबो कबो ना ही अच्छा लगत है चुनु मुनु के। लेकिन अपन बड़वार लोग जौन भी कहत हैं ना ओके सुने के चाहिए, ओके गुने के चाहिए और अपने जीवन में उतारे के चाहिए। हम कहें कि देखा भैया धीरे धीरे अब जौन समय होत बा कि चुनु मुनु से है विदा लिया जाए और ये उम्मीद के साथ साथ कि चुनु मुनु ये बातन का ध्यान रखिए और अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखिए है। तो विदा लिया जाए लड़िकनो, जय हिंद।
2: अभी ग्रामीण बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी प्रयागराज है। थोड़ी देर में युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
5: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
4: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: अब युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल आवर डियर लिसनर्स. मैं हूँ सुष्मिता श्रीवास्तव.
1: और मैं हूँ आपकी दोस्त ज्योति.
0: और हम दोनों स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चहेते कार्यक्रम में, यानी कि युवाणी में. और आज है संडे ज्योति, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो सारे दोस्त हैं ना, वो थोड़ा सा इस दिन रिलैक्स किए होंगे. अपनी जो नॉर्मल रूटीन है उनका, कॉलेज का, ऑफिस का, या कहीं पे भी, आज के दिन थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालेंगे. और सिर्फ अपने लिए जब हम टाइम निकालने की बात करते हैं ज्योति, तो सिर्फ ये नहीं होता है कि हम बैठे हैं और स्क्रॉल कर रहे हैं या हम बैठे हैं और मूवी देख रहे हैं. मुझे लगता है उसका रियल सेंस तब जस्टिफाई होता है जब हम एक्चुअली कोई ऐसी चीज़ करते हैं ना जिससे हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स करता है.
1: एग्जैक्टली. क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जब हमारा जो वर्किंग डे होता है या फिर कॉलेज का डेज होते हैं, तो उसमें पढ़ाई का प्रेशर हो गया या फिर ऑफिस का स्ट्रेस हो गया, वो सब इतना ज़्यादा होता है कि हम वो चीज़ें करना भूल जाते हैं जिन्हें करके हमें खुशी मिलती है.
0: बिल्कुल,
1: है ना. तो मुझे ऐसा लगता है कि संडे का दिन हमें एक दिन खुद के लिए, मतलब जीने का भी एक दिन हमें देता है ना. कि जो भी हमारे पैशंस हैं, हमारी हॉबीज हैं, या फिर जो भी हमें करने में अच्छा लगता है, हम उसे कर सके आज के दिन.
0: हाँ, और कहीं ना कहीं उसको एक रीसेट का डे समझ सकते हैं कि वाकई कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो शायद हम अपने रेगुलर वर्किंग डेज में उस चीज़ का हमें टाइम नहीं मिलता. तो संडे एक ऐसा दिन होता है जब हम सोचते हैं अच्छा ये वाला काम है, तो जब हम नई वीक स्टार्ट करेंगे तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम असॉर्टेड रख सकते हैं अपने कमिंग वीक के लिए. और कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है ना ज्योति कि यार हम अपनी जो जर्नी है उसको दूसरों से कंपेयर करने वाले, हम अक्सर सुनते हैं लोगों से कि अपनी जो जर्नी है ना उसको दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए. लेकिन मुझे लगता है संडे को जब आपके हाथ पे टाइम होता है और आप कुछ चीज़ एक्टिवली अपना दिमाग कहीं इंडल्ज नहीं करते, तो ऐसे थाट्स से आप घिर जाते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं लाइफ में, अगल बगल क्या हो रहा है और मैं आखिर क्या कर रहा हूँ.
1: एग्जैक्टली. सुष्मिता, तुमने बहुत मतलब एकदम सही बात कही है. क्योंकि ऐसा कई बार होता है ना कि जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा

0: फोमो कह सकते हैं कि होने लगता है कि अरे
1: बिल्कुल
0: यार वो लोग उनके पास देखो कितने अच्छे कपड़े हैं, या उनके पास तो इतना महंगा वाला फ़ोन है बट मेरे पास नहीं है,
1: बिल्कुल
0: उनके पास गाड़ी है मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो हम मतलब कहने का मतलब है कि हम उसको पाने के लिए बहुत कोशिश अपनी, जाहिर सी बात है कि हम अच्छी करेंगे कि हमें वो चीज़ें मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरीके से कंपैरिजन वाली बात आ जाती है, तो
1: बिल्कुल
0: हमें पीयर प्रेशर भी तो देखने को मिलता है ना।
1: और कहीं ना कहीं कंपैरिजन सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों का नहीं होता,
0: हाँ
1: कई कई हद तक वो यहाँ तक भी हो जाता है कि हम शायद अपना जिस स्टेज ऑफ लाइफ में हम हैं या जिन चीज़ों से हम डील कर रहे हैं, हमें लगता है कि नहीं वाह सामने वाले को तो वो सब चीज़ें बहुत ईजिली अचीव हो गई। और मुझे लगता है कि वाकई जब हम ये सब बातें करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जब हम अपने माइंड को किसी अच्छी एक्टिविटी में, कुछ ऐसा फ्रूटफुल में इंगेज नहीं करते हैं, तो वो ये सब चीज़ें सोचने लगता है, या हम अपने आप को इनसिक्योर होने से बचाने के लिए भी जो थी हमें कई चीज़ें करनी चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, आप अपनी पर्सनालिटी में हर दिन जब आपके हाथ पे टाइम है तो अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर रूटीन आप कोई ऐसी चीज़ें करें जो आपकी पर्सनालिटी में ऐड हो, उसे इन्हांस करें। अब चाहे अगर आपके पास कोई हॉबी ऑलरेडी है तो आप वो परस्यू करें, या फिर कई बार ऐसा नहीं होता ज्योति कि कुछ ऐसे कोई छोटी मोटी ऐसी चीज़, कुछ कोर्सेज होते हैं जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स पे या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी अच्छे कुछ हैं, तो जब इस तरह की चीज़ों में हम इंगेज कर लेते हैं अपने आप को, तो उसका तो बस पॉजिटिव इम्पैक्ट ही है, कोई नेगेटिविटी तो उसके साथ आती नहीं है।
0: बिल्कुल, और ये एक बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ तुमने बताई है, और हमारे लिसनर्स इस चीज़ को मतलब ट्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि ना आजकल तुमने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले एक सिविक सेंस वाली रील खूब वायरल हो रही थी, है ना। तो हालांकि उसको मतलब उस रील को हम याद नहीं करते हैं, लेकिन उसमें एक सिविक सेंस वर्ड यूज़ हुआ है।
1: बिल्कुल
0: तो ऐसे जो तुमने अभी बोला ना कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मतलब स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कोई कोर्स कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा हो जाता है हम लोग की लाइफ में कि हम लोग जाने अनजाने में वो चीज़ें कर जाते हैं जो हम मतलब हम करना नहीं चाहते, हम वैसे इंसान भी नहीं कि हम कुछ वैसा करें। जैसे कि हम आज मतलब हम यूथ्स बहुत ज़्यादा अवेयर हैं अपने एनवायरनमेंट को लेके, साफ़ सफाई को लेके, तो कभी ना कभी क्या होता है कि हम लोग कोई भी रैपर होता है तो फेंक देते थे, है ना, पहले के टाइम पे। पर अभी क्या होता है कि हम उसको कैरी कर लेते हैं, जब हमको डस्टबिन दिखता है तब हम डस्टबिन में फेंकते हैं, है ना। तो सिमिलरली मतलब ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जो देख देख के और ऐसे प्रैक्टिस कर करके हम खुद को और बेहतर बनाते हैं।
1: बिल्कुल ज्योति, और कहीं ना कहीं ये भी होता है ना कि जब हम सही लोगों के साथ रहते हैं तो वो सब जो एक्चुअली अच्छी चीज़ें हैं वो हम दूसरों के इन्फ्लुएंस में रहकर भी बहुत कुछ सीखते हैं। और फिर सेम गोज़ कि अगर हम ऑलरेडी ऐसे लोगों के साथ हैं तो हम कुछ अच्छा सीखेंगे और शायद हम भी कभी किसी के लिए बहुत छोटी सी इंस्पिरेशन बन सकते हैं। और जैसा कि तुमने पीयर प्रेशर की बात की है, तो सिर्फ पीयर प्रेशर में हम ये नहीं बात करते कि हम मतलब कंपैरिजन के साथ तो हम थोड़ा सा नेगेटिव कभी कभी हो जाते हैं, और वो एक ह्यूमन नेचर भी है, कंपैरिजन का आ ही जाता है, लेकिन जब हमें पता है ऑलरेडी हम इन चीज़ों से अवेयर हैं तो हम इसका शिकार क्यों हूँ।
0: बिल्कुल,
1: हाँ,
0: लेकिन
1: अपने ऊपर जो काम करने की
0: हाँ
1: जो
0: हाँ
1: एक प्रोसेस है उसको जारी रखना चाहिए।
0: बिल्कुल, कंपैरिजन ना हम लोग जब वर्ड सुनते हैं तो अक्सर क्या होता है नेगेटिव थॉट दिमाग में आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सुष्मिता कि हम इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि ये एक तरीके से हमें मतलब मोटिवेट भी करते हैं उन चीज़ों को करने के लिए, खुद को और बेहतर बनाने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को और अच्छा बनाने के लिए, है ना।
1: बिल्कुल
0: अगर मान लो तुम बहुत फिट हो, है ना, और मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे देख के तुम्हें मन करे यार काश मैं भी तुम्हारे जैसी फिट होती, तो वो एक पॉजिटिव थॉट आ रहा है ना मेरे अंदर, तो हो सकता है कि वो थॉट आने से मैं अपनी खुद को इम्प्रूव करने के लिए हो सकता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूं, या फिर योगा या जो भी स्टार्ट कर दूं। तो ये ऐसा हम कह सकते हैं ना कि कंपैरिजन को हम बस माइंड का गेम है कि हम उसको किस तरह से ले रहे हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ तुमने याद दिलाई ज्योति, कि कई बार ना लोग कहते हैं ना कि हम जिस सिचुएशन में हैं वो सिचुएशन ही डिसाइड करती कि उसका आउटकम क्या होगा, आउटकम हम डिसाइड करते हैं कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उस सिचुएशन में। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं इसी बात का एक पर्सोनिफाइड वे है बताने का, कि अगर हमारे पास ऐसी कोई भी तरीके की प्रॉब्लम या है या इनसिक्योरिटीज है, अगर हमें उस पर सही तरह से रिएक्ट करना आ रहा है और हम हर चीज़ को पॉजिटिव स्ट्राइड में बदलने की एक इच्छा रखते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं,

0: मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई भी चीज़ हमें पुल डाउन कर सकती है या हमें जो हम बेहतर इंसान हर दिन बनना चाह रहे हैं उससे रोक सकती है।
1: वाकई तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो हमारे लिसनर्स हैं ना, जो हम जो भी हमें सुन रहे हैं, वो अपने माइंड में ये प्रोग्राम सुन के पॉजिटिव थॉट तो ज़रूर लेके आएंगे कि अपनी लाइफ में कुछ तो ऐसा चेंज करें जिससे वो और बेहतर बन सके।
0: बिल्कुल, और हम आपसे यही कहेंगे दोस्तों कि लाइफ में ना किसी भी सिचुएशन में कभी अटक के मत रहें, और हमेशा आपका गोल यही होना चाहिए कि आप खुद को जैसे भी इम्प्रूव करते रहें, हर दिन कुछ नया सीखते रहें, चाहे वो कोई एक छोटी सी और बहुत माइन्यूट सी चीज़ हो, बट आपकी लाइफ में वो कैसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है आगे चल के, वी नेवर नो। तो इसी के साथ ज्योति, आज की शाम का अपने प्रोग्राम का पहला गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: सुष्मिता, गाना सुन के तो एकदम पूरी अगस्त वाली वाइब आने लगी। मतलब अब लगने लगा कि हाँ भाई 15 अगस्त पास आ रहा है।
1: और कहीं ना कहीं ज्योति, कुछ ऐसे जो गाने हैं ना हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जो हम सुनते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको ऐसे जोश से भर देते हैं ना कि अपने आप आपको लगता है कि हाँ वाकई हम और प्राउड फील करने लगते हैं टू बी एन इंडियन।
0: बिल्कुल।
1: और दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं ना कि भारतीय होने पर हमें गर्व है, पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि हमने देश के लिए आखिर ऐसा क्या किया कि ये जो कंट्री है ना वो हम पे गर्व कर सके।
0: हमने हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन देखा। मेडल टैली में हम चौथे स्थान पर रहे और कुछ स्पोर्ट्स ने तो पहली बार मेडल लाया, तो ये भी उसमें भी हमने देखा कि हमें गोल्ड मिला है ना।
1: तो कहीं ना कहीं ज्योति, जब हम देखते हैं ना ऐसे युवा परफॉर्मर्स को देखते हैं तो हमें गर्व होता है, साथ ही साथ इंस्पिरेशन भी फील होती है ना। लगता है कि हाँ यार, इन लोग को देख के एक अलग सी आप प्रेरणा लेते हैं कि आप भी शायद जिस भी फील्ड में हो, हमारे जो श्रोता हैं वो जिस भी फील्ड को परस्यू कर रहे हो, सीरियसली परस्यू कर रहे हो, अगर उसको अच्छे से परस्यू करें ना, तो कहीं ना कहीं क्या पता आप अपनी फील्ड में कुछ ऐसा कर ले जाएं कि कल आप ही न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो।
0: बिल्कुल। और जब आज हम प्रेजेंट इंडिया की बात कर रहे हैं, तो मतलब हमने देखा है कि जो आज की डेट है ना,
1: 9th अगस्त,
0: हमारे इतिहास के पन्नों को पलटने पर मजबूर कर देती है।
1: बिल्कुल, इस जो डे है इसकी इम्पोर्टेंस तो बहुत ही ज़्यादा है ज्योति, क्योंकि आज की इतिहास की कहानी है एक ऐसी ट्रेन की जिसे लूटा गया लेकिन किसी यात्री को या किसी सामान को छीना नहीं गया, कोई और हानि नहीं पहुंचाई गई।
0: एक ऐसी डकैती जिसका मकसद धन कमाना नहीं बल्कि भारत की आज़ादी की लड़ाई को गति देना था।
1: ये कहानी है 9 अगस्त 1925 के काकोरी कांड की कहानी।
0: 1919, जलियांवाला बाग, सैकड़ों निहत्ते मासूम भारतीयों पर गोलियां बरसाई गईं, पूरा देश गुस्से से एकदम भर उठा।
1: फिर आया 1920 का असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में करोड़ों भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए, लेकिन 1922 को चौरी चौरा की जो घटना थी ना, उसके बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया।
0: कई युवाओं को लगा क्या केवल शांतिपूर्वक आंदोलन में आजादी मिलेगी,
1: और इसी में जन्म हुआ नए क्रांतिकारी दौर का। वर्ष था 1924, जब जन्म हुआ एक युवा क्रांतिकारियों द्वारा बनाया गया HRA, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। प्रमुख नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, सचिंद्र सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी। बाद में आए अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लहीरी, चंद्रशेखर आज़ाद, केशव चक्रवर्ती जैसे क्रांतिकारी भी।
0: उद्देश्य एक ही, कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ कर भारत को आज़ाद कराना है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना है। लेकिन समस्या थी कि संगठन के पास धन नहीं था। क्रांतिकारियों को फैसला लेना पड़ा कि जनता का पैसा नहीं छोड़ेंगे, अंग्रेज सरकार का खजाना लेंगे,

0: ऐसी योजना बनाई गई।
1: और सरकारी जो खजाना ले जा रही ट्रेन थी उसको रोककर धन कब्जे में लिया जाएगा। दोस्तों, सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन, उसमें सरकारी राजस्व का संदूक था। शाम ढल चुकी थी, ट्रेन जब लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन से आगे पहुंची, तब इस लूट को अंजाम दिया गया।
0: इस घटना ने सरकार को गहरा झटका दिया। देश भर में गिरफ्तारी शुरू हुई, कई क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए, करीब 1.5 साल मुकदमा चला, आखिरकार फैसला आया।
1: राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोहन सिंह और राजेंद्र लहिरी जैसे जो हमारे क्रांतिकारी थी, इन्हें फांसी की सजा मिली। राजेंद्र लहिरी को 17 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई, वहीं बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को 19 दिसंबर 1927 में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
0: और अशफाक और बिस्मिल की दोस्तों, ये जो दोस्ती थी ना, वो मिसाल आज भी हम लोग देते हैं। इस काकोरी कांड से
1: सरकार को ये समझ आ गया था कि भारत के जो युवा है ना, वो चुप नहीं बैठेंगे और किसी भी कीमत पर उन्हें जो हटाने की जो योजना थी ना, वो उससे पीछे नहीं हटने वाले हैं।

0: तो दोनों दोस्तों अभी हमने सुना ये बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक, और आगे की जो हमारी चर्चा है दोस्तों वो तो होती रहेगी क्योंकि बहुत सारी बातें हमें आपसे करनी है, लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं ये संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे, सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो दोस्तों हम जैसा कि कह रहे थे ज्योति कि हम बहुत सारी बातें आपसे करेंगे, और आज का डे हमने डिस्कस किया कि कितना इम्पोर्टेंट था हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए।
5: बिल्कुल।
0: तो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, क्योंकि जानकारियां तो हम बहुत लाए हैं, फिर चाहे वो हमारा ये सेगमेंट हो प्रेरणा पुंज का या फिर हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, कुछ ना कुछ आप ज़रूर यहाँ से सीख के जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं
5: हमारे अगले सेगमेंट यानी प्रेरणा पुंज की। दोस्तों भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं था, देश के जंगलों, पहाड़ों और दूर दराज के इलाकों में भी ऐसे वीर पैदा हुए जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही महान क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू की, जिन्हें लोग प्यार से मन्यम विरुडू यानी जंगलों का वीर भी कहते हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, जब भी आज़ादी के आंदोलन की बात होती है तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन दक्षिण भारत के आदिवासी क्षेत्रों में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक ऐसी क्रांति भी हुई जिसकी अगुवाई एक क्रांतिकारी ने की। उनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू जी।
5: उनका जन्म 4 जुलाई 1897 को वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही वो तेज बुद्धि, आध्यात्मिक प्रवृत्ति और समाज के प्रति संवेदनशील थे। उन्होंने अलग अलग स्थानों की यात्राएं की और लोगों को, समस्याओं को बहुत करीब से देखा और उनको समझा भी।
0: बिल्कुल, और उस समय अंग्रेज सरकार ने जंगलों पर कड़े

0: कानून लागू कर दिए थे। आदिवासी ना तो जंगल से लकड़ी ले जा सकते थे, ना खेती कर सकते थे और ना ही अपने पारंपरिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते थे। इससे उनका जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया था।
1: राजू जी ने महसूस किया कि अगर अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई गई तो आदिवासी समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यहीं से उनके संघर्ष की शुरुआत हुई।
0: बिल्कुल, शुरू हुआ रंपा विद्रोह, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलनों में से एक माना जाता है। राजू और उनके जो साथियों ने अंग्रेजों के कई पुलिस थानों पर कब्जा किया, हथियार अपने नियंत्रण में किए और उनकी रणनीति गुरिल्ला युद्ध पर आधारित थी। घने जंगलों और पहाड़ियों का उपयोग करके वे अंग्रेजों पर लगातार उनको चुनौती दे रहे थे।
1: सबसे खास बात ये थी कि स्थानीय आदिवासी जनता का जनता उन्हें पूरा समर्थन दे रही थी। लोगों का विश्वास था कि राजू केवल नेता नहीं बल्कि उनके अपने रक्षक हैं। अल्लूरी सीताराम राजू केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी थे। वो सदा जीवन जीते थे, सादा अनुशासन में विश्वास रखते थे और लोगों की सेवा को अपना धर्म मानते थे।
0: कहा जाता है कि वे योग और ध्यान का अभ्यास करते थे और उनके व्यक्तित्व में आध्यात्मिक और साहस का अद्भुत संगम दिखाई देता था। अंग्रेज सरकार राजू से इतने परेशान हो चुके थे कि उन्हें पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। भारी संख्या में सैनिक तैनात किए गए और लेकिन लंबे समय तक वे अंग्रेजों की पहाड़ से उन्हें पकड़ नहीं पाए थे।
1: आखिरकार 1924 में उन्हें पकड़ लिया गया। बिना किसी निष्पक्ष सुनवाई के अंग्रेजों ने उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया। उस समय उनकी उम्र केवल 27 वर्ष थी। आज जब हम अल्लूरी सीताराम राजू को याद कर रहे हैं तो केवल उनके बलिदान को नहीं बल्कि उनके विचारों को भी याद करना चाहिए।
0: बिल्कुल ज्योति, उन्होंने हमें सिखाया कि अन्याय के सामने कभी भी झुकना नहीं चाहिए। अगर उद्देश्य सही हो और इरादे मजबूत हों तो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़ी से बड़ी ताकत का सामना किया जा सकता है।
1: आज का युवा अगर उनके जीवन से प्रेरणा ले तो वो अपने समाज, पर्यावरण और देश के प्रति जिम्मेदार नागरिक बन सकता है।
0: बिल्कुल, और जैसे कि हमारे सेगमेंट का नाम ही है ज्योति, प्रेरणा पुंज, तो वाकई जब हम ऐसे पर्सनालिटीज को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं लाइफ कोई चेंजिंग लेसन हमें ज़रूर मिल जाता है। और बात जब हम इनकी कर ही रहे हैं तो उन्होंने आदिवासी समुदाय को संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ जो बड़ा आंदोलन किया था उसमें गोरिल्ला जो वॉरफेयर है उसका इस्तेमाल किया था। और उनकी दहशत के बाद भी उनका संघर्ष दक्षिण भारत में प्रेरणा का स्रोत बना रहा।
1: आज़ादी केवल इतिहास की किताबों का अध्याय नहीं है, ये जिम्मेदारी भी है कि हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझें। अगर हम अपने समाज, प्रकृति और संस्कृति की रक्षा करेंगे तभी हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को भी भारत में आज जिंदा कर पाएंगे।
0: बिल्कुल, और अल्लूरी सीताराम राजू जी का जो जीवन है ये हमें बताता है कि एक व्यक्तित्व भी पूरे समाज में बदलाव की शुरुआत कर सकता है। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं ना कि सिर्फ हमारे चेंज होने से क्या होगा, तो हम रिजल्ट देख सकते हैं कि कोई एक छोटा सा चेंज भी कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है।
1: और यही वजह है कि उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। उनका साहस, उनका त्याग और उनका राष्ट्र प्रेम आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।

0: तो ज्योति, अब फाइनली हम आ गए हैं अपने कार्यक्रम के उस टाइम पे जहां हम अपने दोस्तों से कहते हैं थोड़ा अपना दिमाग चलाइए और जो हमने सवाल आपसे पूछा है उसका जवाब दीजिए। तो कल का जो हमारा प्रश्न था वो था कि प्रसिद्ध हिंदी लेखक भीष्म साहनी जी द्वारा रचित प्रथम उपन्यास कौन सा था। और दोस्तों, इसका सही जवाब है कि साहनी जी द्वारा रचित उनका पहला उपन्यास था वो झरोखे नाम से था और जिसका प्रकाशन हुआ 1967 में। और आज का प्रश्न क्या है ज्योति?
1: और आज का हमारा प्रश्न है, भारत की 101वीं रामसर साइट कौन सी है। आप अपना सही जवाब हमें भेज सकते हैं हमारे हमारी ईमेल आईडी पर। हमारी आईडी है yuvvaniald@gmail.com। और अगर आप चाहें तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं हमारे नंबर पर। हमारा नंबर है 8004926250।
0: तो इसी के साथ ज्योति, मुझे लगता है कि हम लोग ने काफ़ी बातें कर ली और चलते चलते दोस्तों को फाइनली बाय कहने से पहले एक प्यारा सा गीत और सुनवा देते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो ज्योति,
1: हाँ?
0: मुझे लगता है कि आज के जो प्रोग्राम था ना, उसमें हमने इतनी ढेर सारी बातें की और काफ़ी ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ भी दी, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो श्रोता हमें सुन रहे हैं उन्हें काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी, साथ ही एन्जॉयमेंट भी किया होगा उन्हें।
1: बिल्कुल, उन्हें अच्छा भी लगा होगा हमारे, क्योंकि हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दी, साथ में एंटरटेनमेंट भी दिया, तो आज का उनका संडे मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा गया है ना,
0: फ्रूटफुल कहेंगे, क्योंकि ये पूरा एक पैकेज हमने अपने एंड से तो ट्राई किया ही था। और इसी के साथ ज्योति, क्योंकि घड़ी हमें इशारा कर रही है कि हम कहीं ना कहीं ये बात का जो अपने दोस्तों को ना ये प्रॉम्प्ट दे दें कि भाई हाँ, अब हमारा कार्यक्रम है वो टुवर्ड्स द एंड है, लेकिन हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हम जो कार्यक्रम में हम अपने एंड से तो अच्छा करते ही हैं, हम उनका फीडबैक भी चाहेंगे।
1: बिल्कुल,
0: कि हमने क्वेश्चन एयर के बाद आपसे बोला कि आप अपने क्वेश्चंस हमें भेजिए ईमेल आईडी और नंबर पे, साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि अपने फीडबैक्स भी हम तक ज़रूर भेजें, जिससे हमें पता लगे कि हम अपने प्रोग्राम में क्या अलग करें जिससे कि उनको और अच्छा लगे सुनने में।
1: बिल्कुल, तो अगर आप चाहें तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर से बता देते हैं, हमारा नंबर है 8004926250
0: और हमारी ईमेल आईडी है
1: yuvvaniald@gmail.com।
0: तो इसी के साथ दोस्तों, हम ये कहेंगे कि आप जो हम क्वेश्चंस आपको देते रहते हैं ना, उसको ज़रूर कायदे से पढ़ा करें, क्योंकि कई बार ज्योति हमने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमने उठाए हैं जो कई बार एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अपना ध्यान रखें, और साथ ही साथ ये सब जो नॉलेज है ना, जनरल नॉलेज, क्योंकि हर बार हम ऐसे क्वेश्चंस लाते हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए और उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर समय हो चला है आपसे विदा लेने का, मुझे यानी सुष्मिता श्रीवास्तव को
1: और मुझे यानी ज्योति को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी प्रयागराज है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: घर घर तिरंगा, आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है।
1: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र शामिल होंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोग इस यात्रा में तिरंगे के साथ शामिल हुए। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। इससे पहले गृहमंत्री पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी गई है। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित

0: विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। महिला सिंगल्स फाइनल में आज अश्मिता ने चीन की हान क्यानशी को हराकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम हीट 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले आज के शीर्ष कार्यक्रम। रात 10 बजे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रविवार सरी अखिल भारतीय संगीत सभा। पंचायत घर में शाम 6:30 बजे ग्रामीण श्रोता रंजीत कुमार और साथियों के स्वर में लोकगीतों के अलावा मनोज कुमार सिंह से चंद्रजीत यादव की बातचीत सुनेंगे। विषय होगा खेतों की उर्वरा शक्ति बनाए रखने हेतु आवश्यक उपाय। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी आई है रात 8 बजे। रात 7:45 बजे सुगम संगीत कलाकार होंगी चित्रा चौरसिया। साप्ताहिक कार्यक्रम आज इतवार है में रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे राजेंद्र कुमार की लिखी झलकी LTC का चक्कर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात 9:30 बजे और शाम 7:31 पर रात्रि 8:15 पर चित्रपट संगीत होगा। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल रात 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रसारित की जाएगी रात 10 बजे। दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृषि जगत में प्रातः 6:35 पर ग्रामीण भाई डॉक्टर प्रवीण चरण से बातचीत सुनेंगे मौसम के अनुरूप कृषि प्रबंधन। प्रातः 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम होगा। इसमें आप डॉक्टर विजय बसंत की वार्ता सुनेंगे मधुमेह का आंखों पर प्रभाव एवं सावधानियां। श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ सुनवाएंगे सवेरे 7 बजे। शास्त्रीय संगीत में सवेरे 7:30 पर आप कमल कुमार का बांसुरी वादन सुनेंगे और दिन में 12:15 पर पंडित CR व्यास का ख्याल गायन। लोकगीतों का आनंद लीजिएगा सवेरे 10:05 पर और शाम 6:30 बजे कलाकार होंगे सुरेंद्र प्रताप पटेल और साथी। पंचायत घर में लोकगीतों के अलावा शाम 6:30 बजे ग्रामीण भाई अनीश देहाती से लोक भाषा में कविता पाठ सुनेंगे। गृहलक्ष्मी में दिन में 7:15 बजे बहनें सुनेंगी विशेष सावन में सखियां। श्रोता अपने फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गाने सुन सकते हैं दिन में 12:30 पर। कार्यक्रम होगा फोन इन आपकी पसंद। नन्ही दुनिया शाम 5 बजे और शाम 5:15 पर युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी होगा। हिंदी कार्यक्रम में शाम 7:31 पर आप राधा शुक्ला की वार्ता सुनेंगे। वार्ता का विषय होगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। सुगम संगीत में सवेरे 9:50 पर और रात 7:45 बजे आप बनवारी लाल शर्मा की गाई गजलें सुनेंगे।

अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं समूह स्वर में देशगान।

0: आरक्षकबलस्य जीवने अतीव गौरवपूर्णः क्षणः भवति।
1: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
0: सः अकथयत् यत् यद्यपि पुडुचेरी आरक्षक सेनायां 5,000+ न्यूनाः आरक्षकाः सन्ति, तथापि केन्द्र शासित प्रदेशस्य सुरक्षायाः, आन्तरिक सुरक्षायाः च उत्तरदायित्वं एतेषां हस्तेषु अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय अन्वेषण अभिकरणेन केरल राज्यस्य मलप्पुरम जनपदे अवैध विस्फोटक राशि ग्रहण प्रकरणे अपरः आरोपी निगडितः। संस्थया सूचितं यत् आरोपी गतदिने मलप्पुरम जनपदस्य मंजेरी स्थानात् निगृहितः। अवधेयमिदं यत् असौ मुख्य षड्यंत्रकारीषु अन्यतमः अथ च अस्मिन् प्रकरणे प्राप्तानां विस्फोटक द्रव्याणां अवैध प्राप्तौ सह संलग्नः आसीत्। एतत् निगडनम् एनआईए संस्थया शुक्रवासरे कर्नाटक राज्यस्य विजयपुर स्थानात् त्रयाणाम् अन्य आरोपीणां निगडनानन्तरम् अभवत्, येन अस्मिन् प्रकरणे निगृहीतानां संख्या आहत्य 10 संजाता। नवीनवृष्टया ओडिशा राज्ये पुनः जलाप्लावस्य स्थितिः वर्धिता जाता। राज्यस्य बहवः प्रदेशाः पूर्वमेव जलाप्लावेन दुष्प्रभाविताः सन्ति। इदानीम् अनेकाः नद्यः पुनः जलस्तरवृद्धिं प्राप्नुवन्ति। बालासोरजनपदे जलका नदी अपि च भद्रकजनपदे वैतरणी सालन्दी नद्यः जलस्तरवृद्धिं प्राप्नुवन्ति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य प्रोक्तवान् यत् ऑपरेशन सिन्दूर इति सैन्याभियानेन विश्वपटले एषः सन्देशः प्रेषितः यत् भारतं स्वनागरिकाणां सुरक्षायै सहैव देशस्य महिलानां सिन्दूरं रक्षितुं यत्किमपि कर्तुं शक्नोति।
2: पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार है।
0: रक्षामन्त्री नवदिल्ल्याः मुख्य सैन्य चिकित्सालये आयोजितस्य सिन्दूर महारक्तदान यात्रा रक्तदान शिविरस्य उद्घाटन समारोहे एतत् अवोचत्। रक्षामन्त्रिणा पाकिस्ताने स्थितानाम् आतंकवादीनां विनाशाय भारतीय सुरक्षाबलस्य मुक्तकण्ठं प्रशंसा कृता। सः अकथयत् यत् महाराष्ट्रस्य प्रायः 1,000 मल्लाः क्रीडकाश्च अस्मिन् शिबिरे रक्तदानम् अकुर्वन्। सः एतदपि प्रतिपादितवान् यत् एषा घटना सुरक्षाबलैः सह निस्वार्थ सेवाभावस्य, सुदृढ एकतायाः च परिचायिका अस्ति। सः जनेभ्यः विशेषतः युवभ्यः रक्तदानं स्वजीवनशैलीं विधातुम् आह्वानम् अकरोत्। केन्द्रीय उपभोक्तृ कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्री प्रह्लाद जोशी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभागस्य सचिवेन तथा वरिष्ठाधिकारिभिः सह समीक्षा सभाम् आयोजितवान्। अस्यां सभायां वर्तमानस्य शर्करा भाण्डारस्य स्थितिम्, उत्पादनस्य स्तरं तथा च वर्तमानस्य शर्करा कालस्य आवश्यकतां ज्ञातुं समीक्षा समाचरितं गता। जम्मू कश्मीर प्रदेशे प्रतिवर्षम् आयोज्यमाना अमरनाथ यात्रा अद्यतन

0: पहलगाम बालतल मार्गयोः स्थगिता भविष्यति। निर्णयोऽयं सतत वृष्टि कारणात् तीर्थयात्रा मार्गे जीर्णोद्धार कारणात् अपि च आगामिषु कतिपय दिवसेषु प्रतिकूल जलवायोः पूर्वानुमान कारणात् स्वीकृतोऽस्ति। भारतीय बैडमिंटन क्रीडिका अश्मिता चालिहा अद्य प्रातः महिला एकल स्पर्धायाः अन्तिमचक्रे चीनदेशस्य हान शियांशी इत्येतां पराजित्य कोरिया मास्टर्स 20-26 स्पर्धायां विजयं प्राप्तवती इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब ग्रामीण भाई सुने अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

0: पंचो राम राम
1: और मनु भैया।
0: हाँ भैया,
1: देखा था आज भाई धान के खेती से भाई मरवही कहके आई यहाँ का भाई खरपतवार नियंत्रण काम शुरू है ये लागत
0: ये
1: है।
0: भैया देखा हो सबसे जरूरी बा मढ़वाई तो भाई जितना कह ले जाए।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: कि देखा बरसात भी झमाझम हुई रहा बा और मूला देखा अगर तनिको मेढ़ कमजोर हुई ना तो धाने में पानी टिकत नहीं है
1: बिल्कुल।
0: और हम तो कहीं कि देखा हो मेढ़िया बढ़िया है पहलुए के बना दिए चौचक लेकिन ऊपर माटी जो है चढ़ा दिया करते हैं
1: भाई। मेढ़वाई मतलब एक चीज और बात है, हम कहे भाई देखा खरीफ का प्रमुख फसल धान थे भाई देखा लग गई बात है। अब भाई अगर संध्या सवेरे होकर जाए के देखबा ना मेढ़वाई न करबा तो का हमारा बढ़ोतरी हो जाए।
0: भैया खरवो तो जितने पानी मिलत हो ना हो तो जौने स्पीड से धान बढ़त है वही से दुगुना स्पीड में भैया खरपतवार बढ़त है।
1: भैया हमके खरपतवार देखा जौन सी चीज से फायदा नहीं ने ना, अब चाहे खेते के देख ले चाहे भाई बने के देख ले भाई जौन पौधान के उतना उपयोगिता ना है ना वो तेजी से बढ़त है।
0: बिल्कुल तेजी से बढ़त है तो हम कहीं की देखा हो इसमें बहुत जरूरी बा कि अगर ज्यादा घास हो गए बा भैया बिना मतलब का खरपतवार हो गए बा तो पहले तो देखा सोहनी है सबसे बढ़िया होते निकाल दाओ मन है।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया।
0: और खरपतवार का नियंत्रण करे लोग मेड़बंदी एकदम बराबर करत रहे। बरसतवा होके बाद क्या है ना कि जो माटी चढ़ाए है मेड़िया पर वो मटिया बह जाते भैया और फिर से एक तरीके से नीचे हो जाते मेड़ तो उससे पानी जो है कि बहे लगत हो ऊपर से।
1: बिल्कुल भाई हम कहीं देखा खेती बाड़ी के साथ साथ कुछ चीज ऐसा बाटे जेका हम उसे के भाई समय समय पे याद करे चाहिए जो ना।
0: बिल्कुल भैया देखा एक बात बताई जो
1: बताओ भैया बताओ
0: कि आज एक तरीके से पूरे विश्व स्तर पर जो है कि विश्व मूल निवासी दिवस पाए।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा भैया।
0: और विश्व में हर देश में जितने स्वदेशी लोग हैं भैया उनके अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते हैं ही हर साल 9 अगस्त के विश्व स्तर पर मनावा जाते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा भैया।
0: और ये दिवस 1982 में स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह का पहली बैठक के याद दिलावते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: और देखा हो भारत वर्ष में यही दिवस के आदिवासी दिवस के रूप में मनावा जाते
1: अच्छा, अच्छा, है। अच्छा, हाँ भैया।
0: तो भारत में कई समुदाय और सामाजिक संगठन जैसे जल जंगल जमीन और सामाजिक न्याय से संबंधित मुद्दन के उजागर करे बदे
1: भवा की भैया देखा देश प्रदेश के भाई भाई जगह जगह के बोली भाषा तो मतलब भाई हमार तुहार कोनो भाषा और बा आदिवासी भाषा कुछ और बाटे तो एह दिवस पे भाई उनका जो भाषा बाटे उनका शिक्षा बा उनका संस्वास जौन भी चीज बा एक तरीके से उसका संरक्षित करे के लिए जो
0: बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि देखा अपन जो देश बा ये देश में कई प्रदेश ऐसा है जो ने प्रदेश का पहचान वहाँ के आदिवासी से है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: मुला कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में पीछे रह गए हैं और जोने गति से मान ला कि विकास एक तरीके से हो ही रहा बा लेकिन नहीं मिल पाया तो जरूरी बा कि उनके मुख्य
1: धारा में
0: जोड़ा जाए।
1: बिल्कुल भाई।
0: कहें कि वह एक प्रकार से वहाँ का संस्कृति है वो प्रदेश का है और वह एक तरीके से पूरा का पूरा मानव संसाधन है वहाँ का।
1: बिल्कुल भाई। हम तो कही देखा अपन जौन भी आदिवासी समाज बा भैया हम तो भाई देखा जहाँ भी जंगल में रहता है वो खास करके देखा भाई उनका जो प्रकृति प्रेम बाटे भाई जल जीवन और जंगल के लिए भी देखा कितना काम करता
0: है। हाँ हाँ बिल्कुल कहे ना भैया एक तरीके से सबसे बड़ा और सबसे पहला मित्र होते हुए जंगल का है।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया।
0: तो उनके हक के और उनके संस्कृति के सबसे बड़ी बात संरक्षित रखल बहुत जरूरी है भैया ताकि उनका संस्कृति न कहीं से गड़बड़ हुए पावे।
1: बिल्कुल।
0: तो संस्कृति बड़ी महत्वपूर्ण है। अब देखा अगर बात किया जाए तो आजादी के आंदोलन में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है आदिवासी लोगों का।
1: अच्छा अच्छा भैया।
0: और अब जैसे देखा बिरसा मुंडा का नाम है
1: भैया
0: कितना बड़ा क्रांतिकारी रहे तो अनेक लोग ऐसा रहे जो देश के आजादी में स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिए हैं। दूसरी चीज कई बात इनसे सीखे लायक है हो आदिवासी देखा एक तरीके से ना दृढ़ता बहुत ज्यादा हो

0: अध्ययन किया था।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: दृढ़ता वो तो भैया हम कहीं के देखा हो पत्थर काट के रास्ता बना लेवे वाले और कठिन से कठिन परिस्थिति में लोग जीवन यापन कर लेते हैं रह लेते हैं। और जो एक कहावत कहे जाए गुआ में कि पत्थरे पे डूब उगावते हैं ना, तो भैया वो क्षमता होते इनके अंदर कि वो पत्थरे पे डूब उगा सकते थे। इनका जो ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा के बचावे की जरूरत है और ये ऊर्जा के देश के विकास में लगावे की जरूरत है।
1: कहीं भाई देखा जिसे बात करा ना कि जो दृढ़ इच्छा शक्ति बांटे, मतलब उनके पास भाई जो आज के दौर में शहरी जीवन में आधुनिक सुख सुविधा लोग रहता है उसे दूर रह के भाई प्रकृति के साथ प्रेम करके जो है अपन जीवन यापन कराता है और अपने संस्कृति की रक्षा के लिए देखा कितने अच्छे से जो है। और हम तो कहीं भाई देखा आज इनके भाषा संस्कृति लोग जाने के खातिर प्रदेश के भाई अलग अलग हिस्सों से लोग भी जाता है उनके बीच में और देखा है। और तो अब तो भाई एक दौर रहा
0: बहुत समृद्ध परंपरा है भाई इन लोगों का, बहुत समृद्ध संस्कृति है इन लोगों का। इनका आपन गीत है, आपन नृत्य है, ये सब एक तरीके से अपने भारत का, अपने माटी का, अपने परिपाटी के पहचान है लोग है।
1: ए भैया हम तो कही अब तो उनके द्वारा जौन भी उत्पाद भैया बनावा का बाट है वो भी देखा आज भाई बड़ी बड़ी कुठरीन का स्थान बाट है जौन।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जौन भाई चाहे काष्ठ कला को हो बात भाई जो चाहे लोहे से जो बनाओ तो हो भाई उनके पास जो हुनर बटे और जो भाई अपने आसपास के चीजन से वो जो बनाए के करत है तो भाई आज ओकर भी महत्व बटे
0: महत्व बा ओकर और महत्व बढ़ावे की जरूरत बा भैया। हमार तुहार सबकर ई दायित्व तो बनत है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: एकदम मुख्य धारा से उनके जोड़ा जाए और कई तरह का सीख हमके तो अके सबके लेवे के चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: भाई देखा आज के दौर में आज के दौर आधुनिक दौर कहा जाता भैया भौतिकवादी दौर कहा जाता है। ये भौतिकवादी दौर में बहुत कुछ सीख मिलत है कि कैसे प्रकृति के साथ रहा जाए, कैसे प्रकृति के सानिध्य में रहा जाए, कैसे भैया बनावटी जीवन से हट के प्राकृतिक जीवन जिया जाए।
1: बिल्कुल
0: तो स्वाभाविक और प्राकृतिक जीवन लोग जिए थे और यह कारण होता कि मानसिक रूप से शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ होते हैं लोग, बहुत मजबूत होते हैं लोग। तो बहुत कुछ तो के हमके सीखे की जरूरत बा, मुला देखा इनके और ऊपर बढ़ावे की जरूरत बा और इनके संस्कृति के और समृद्ध करे की जरूरत बा। और एमन भैया हर वर्ग का, शहरी वर्ग का विशेष रूप से यह ध्यान जाए के चाहिए।
1: बिल्कुल भाई हम कही भाई अकेले देखा अब तो प्रयास भी शुरू हो के बाद जो हमारे तोहरे भाई जाने से दूर रहा अब वो चीज सामने हम लोग देख सकते है तो हम तक भाई कहीं ना कहीं भाई देखा प्रयास भी चलत बाटे और जो आज 9 अगस्त के दिन बाटे जो निकल मनावे के जो उद्देश्य बा एक भाई यही है कि हम उनके भाषा संस्कृति उनके जो परंपरा बा ओकर जो जाने करिए ओकर संरक्षित प्रयास करे जो भैया।
0: बिल्कुल
1: तब यह दिवस के जो है सार्थकता सिद्ध हो जो
0: भैया देखा हो बतकही तो होत्री और बतकही हुई आज 9 अगस्त का बहुत महत्व बा भैया है और भी बड़ा महत्वपूर्ण बा अपने देश के आजादी आंदोलन में है तो ओहू पर चर्चा हुई। मुला पहले ही बतावा कि का सुनवा होते हैं
1: हम कहे भाई देखा भाई समय तो भाई सावन चलत बाटे भाई गीत गौनाई तो होबे करे साथे साथे देखा खेत खलिहानों के बात हुए हाँ
0: बिल्कुल भैया
1: खेतों में भाई जो उर्वरा शक्ति बाव का बनावे के बिना का आवश्यक उपाय बाटे उसे भाई मनोज कुमार सिंह से चंदित यादव बहुत सुनाई जाए।
0: मूला भैया हम कहब कि देखाओ जो लेके बैठा है ना
1: हाँ।
0: है रंजीत कुमार और संघातिन का गावा पहले गवनई एक हो जाए फिर एक बात कुछ बात हो।
1: बिल्कुल भाई बिल्कुल

0: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: भैया देखा, भैया गवने ही हो गए और देखा बात होत रहा आज 9 अगस्त का है
3: भैया।
2: तो 9 अगस्त भैया देखा एक बात खाती और बहुत ज्यादा जाना जाता है।
3: बताएं भैया बताएं
2: कि काकोरी कांड भैया है।
3: हाँ,
2: देखा हम तो कहें कि अपने देश का बच्चा बच्चा एक जानत है। 9 अगस्त के 1925 लगभग एक तरीके से कहिला भैया 100 है शतक पूरा होखे वाला बा। पूरा हो गए बा, 100 वर्ष एक तरीके से पूरा हो गए होकर। तो एहमन देखा जो उन्हें रामप्रसाद बिस्मिल है के साथ साथ और भी कई लोग क्रांतिकारी रहें।
3: अच्छा अच्छा।
2: और देखा ये लोग एक एक जो है कि जाना जाते जो घटना भय रहा ना कि काकोरी ट्रेन ट्रेन में से भैया खजाना लूटा गया रहा।
3: अच्छा अच्छा।
2: और खजाना लूटे का जो उद्देश्य रहा ना ये शाहजहां

0: से लखनऊ जाए वाली हैं जौन ट्रेन रही, पैसेंजर ट्रेन रही, वही के लूटा गया रहा है। ब्रिटिश सरकार का एक तरीके से नगदी लिया गया रहा है यहाँ से, और कुछ हथियार। एक उद्देश्य रहा कि भाई क्रांतिकारी के जो है हथियार का जरूरत रहा,
1: हाँ
0: ठीक है ना, जोने से कि स्वतंत्रता आंदोलन के आगे बढ़ावा जा सके।
1: बिल्कुल
0: देखा गरम
1: बिल्कुल।
0: दल के लोग रहन भैया हैं, और
1: काहे मतलब ही भाई कि भाई बिना संसाधन के कौनो भी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकत रही। यह बिना जो ना अपन क्रांतिकारी साथी रहन जो ना है वो भाई अब वो अपने साथियन के सहायता के लिए तरह से जो ना है कदम उठान भी ना।
0: बिल्कुल, हाँ बिल्कुल भैया। और देखा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना रहा, और वही की तरह वहीं के जो लोग क्रांतिकारी लोग रहन भैया आए, चंद्रशेखर आज़ाद जी भी रहन है अपन, तो ये लोग लुटे रहन। और एक प्रकार से इन लोगों का उद्देश्य रहा भैया अपने देश का सेवा कैल, अंग्रेजी सत्ता के कमज़ोर कैल। और देखा एक घटना के बाद फिर मुकदमा भी चला रहा, और बहुत लोगों के जेल भई, कई लोगों के आजीवन कारावास भय।
1: अच्छा अच्छा भैया।
0: देखा बतावे का मतलब ये है ना, कोनो भी तिथि का महत्व यह बात में होता कि सबके याद रखे के चाहिए कि आज जो आज़ाद भारत में
1: बिल्कुल
0: हम तो
1: बिल्कुल।
0: सांस लिया जाते भैया, आज देश इतना आगे जात बा, तो बहुत लोग अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे दिए,
1: बिल्कुल
0: अपने जीवन
1: भाई।
0: से स्वार्थ से हट के परमार्थ के कारण देश के खातिर लोग सोचे ना है, और सोच के
1: बिल्कुल
0: ये तरीके
1: बिल्कुल
0: से काम किए हैं लोग।
1: बिल्कुल। एक बात यह कहा भैया मन्नू, हम कहीं देखा जब देश भाई अपने अंग्रेजन के गुलाम रहा तो उसने जब अपने क्रांतिकारी भैया रेन अपने आज़ाद कराव के खातिर जब अपन प्राण भाई न्यौछावर करें तरह तरह के यातना सहन जो है तो उनका यह रहा कि या उन अपन देश बाटे ये स्वच्छंद रहे और भाई आज़ाद रहे और जो यहाँ के आई वाली पीढ़ी बाटे वो भैया यह गुलामी से मुक्त रहे जो है। हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया। देखा यही बदे तो लोग की भैया, एक तरीके से हथियार चाहिए, हथियार खातिर धन चाहिए, तो भाई अब का करे जो कि जब ना कुछ बा, तो एक तरीके से इस तरह का कदम उठाए लोग भैया। और देखा जो प्रमुख क्रांतिकारी रहन भैया, ओमन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल रहन, अशफाक उल्ला खान रहन, चंद्रशेखर आज़ाद जी रहन, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी रहन, और ठाकुर रोशन सिंह हैं, ये लोग रहन भैया। और 40 क्रांतिकारी इन पर मुकदमा चला वगैरह भैया।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: हाँ,
1: भैया।
0: तो हम कहीं कि देखा सबके एकुल घटना के याद रखे के चाहिए, ये शहादत के याद रखे के चाहिए, और अपने देश खातिर हमेशा तैयार रहे के चाहिए, चाहे जौने तरीके का बलिदान देवे के पड़े भैया, जौने तरीके का त्याग करे के पड़े,
1: बिल्कुल
0: वो
1: बिल्कुल
0: भावना
1: भैया।
0: सबके अंदर होके के चाहिए, आज भी होके के
1: ये
0: चाहिए।
1: तो मनु भैया हम तो यह कहब कि बहुत ऐसे क्रांतिकारी भैया हरे रहन कि जेके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं बा लेकिन अपने देश के खातिर जो ना है भैया वो बहुत अमूल्य योगदान दें जो ना है। हाँ तो भाई एके लिए भाई देखा भाई उनका जो उद्देश्य रहा आज के जो ना अपन युवा पीढ़ी बाटे जो ना जनता बाटे वो यह बात के भी मनन करे कि भाई जो उनका उद्देश्य रहा वो उद्देश्य अपने देश के आगे बढ़ावा जाए कि भाई उन रहा कि भाई हम लोग अपराध मुक्त भाई अपन देश रहे कि भाई
0: बिल्कुल,
1: यहाँ
0: हाँ, अपराध मुक्त रहे, भ्रष्टाचार मुक्त रहे।
1: भ्रष्टाचार मुक्त
0: और
1: रहे
0: एक
1: लोग।
0: बात बताएं भैया,
1: हाँ
0: देखा कबो कबो ऐसा होता, अधिकार का बात सब करत हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया।
0: संविधान में मूल अधिकार सबके दिया गया बा, संविधान का देश बा, लेकिन वही के साथे साथे मूल कर्तव्य भी लिखा गया भैया।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो
1: कही
0: जैसे
1: गए।
0: मूल अधिकार का बात लोग करत है ना, हम तू चाहे जे होके भैया, वैसे मूल कर्तव्य के बारे में भी सोचे के पड़ी, कि अगर देश हमके बहुत कुछ देत बा, तो हमारो कुछ योगदान होके चाहिए
1: ए
0: देश के विकास
1: भैया
0: में,
1: सोचे नहीं ये दायित्व बाटे है
0: दायित्व बा।
1: भाई
0: बिल्कुल
1: अपने देश के नागरिक होए के नाते हमारे तो हर दायित्व बाटे कि अगर हम रास्ता चलत देखे थे कि अपने भाई कुछ नुकसान होत बाटे तो अपने देश के ही नुकसान हो जाऊ है
0: हाँ, सरकारी
1: भाई।
0: संपत्ति जोनी के
1: किसी
0: कहा
1: सरकारी
0: जाता
1: संपत्ति में कुछ अगर होत बाटे तो ये भाई अगर देखा हम कहब कि भाई चला शिकायत करबू का तो समय हमें लागत लेकिन जौन काम आपके त्वरित कार्यवाही से हो ही जात बाटे थोड़े से सहयोग से हो ही जात बा
0: बिल्कुल
1: तो बिल्कुल
0: बिल्कुल
1: ओका आगे बढ़ के
0: बिल्कुल
1: करे लोग।
0: भाई। हम कहें कि पानी है, सड़क है, बिजली है भैया, सड़क पे ही चलत हुआ, सड़क एक प्रकार से हमार तो हर बात है भैया,
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल।
0: देश का संपत्ति, अपन संपत्ति की तरह रखा, स्वार्थ की भावना से ऊपर उठ के भैया अपने देश के प्रति गर्व का भावना रखें, प्रेम का भावना रखें, और साथे साथे भाई अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से, अपने बाणी से कुछ ऐसा
1: बिल्कुल
0: करें जोने से कि देश आगे बढ़े,
1: कहा
0: क्यों को
1: बिल्कुल।
0: नुकसान ना होके भैया फायदा होके।
1: बिल्कुल। एक बात यह भाई कि देखा अगर जहाँ आपके लागत बाटे कि संगठन बनाई के भाई श्रमदान कर के कुछ ऐसा काम हो ही जाए कि जैसे भाई अपने देश के भाई कुछ उसे खर्च बच जात बाटे और अपने समाज के भलाई बा तो ऐसे कार्य में भाई देखा बढ़ चढ़ के
0: बहुत
1: हिस्सा
0: बढ़िया,
1: ले जाए।
0: बहुत बढ़िया भैया। हम कहें कि बिल्कुल सही बात भैया, जैसे मान ला कि कुछ अगर संगठन बनाएला, समूह बनाए के हम कहीं पेड़ लगा सकते हैं लोग,
1: बिल्कुल देखा जब
0: खाली जगह तमाम भैया, इना के
1: पेड़
0: अपने
1: भाई
0: ही घरे लगावे, कहीं
1: पेड़
0: जगह
1: के
0: मिल जाए
1: देखा
0: पेड़
1: भाई
0: लगावे।
1: पेड़ के जब बात आवत है तब देखा कितना बड़ा अभियान चलत बाटे।

0: देश में कि एक पेड़ माँ के नाम भैया। हाँ भाई, ये एक अभियान सरकार एक नारा दे बाटे कि हमका तोहका ए के तहत काम करे बाटे, लेकिन इसका फायदा जो बा भैया देश के जनता को हुई बा।
1: बिल्कुल हमें
0: भाई, वो पेड़ का हम सब लगाई, ओका सेब पाली और साथे साथे ओके जो है पूरी देखभाल करी ताकि आए वाली जो पीढ़ी बाटे अपन प्रकृति बाटे अपन पर्यावरण बाटे वो भी संतुलित रहे।
1: भाई देखा, आप जैसे सफाई का बात है, सबके पता है कि स्वास्थ्य का सबसे बड़ा आधार होता है स्वच्छता।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अब सड़क है भैया, कोनो कोना अतरा हो के मान ला सफाई कर्मी लोग लगा है, लेकिन हमारे तोहार भी दायित्व भाई कि कम से कम गंदगी न फैलाई। और अगर कहीं कुछ दिखत बा भैया कि अगर कुछ गलत चीज सड़क पर पड़ा बा कोनो जगह, भैया हम कहीं कि हम तो केहू होकर अगर उके उठा के कहीं रख दा हो जो कूड़ेदान रखा रहा था,
0: बिल्कुल,
1: तो उसे कोनो नुकसान ना होता है।
0: बिल्कुल भाई,
1: यह राष्ट्र का सेवा है भैया।
0: भाई आपके शिष्टाचार के परिचय।
1: हाँ, हाँ,
0: भाई हम कहीं अगर इस तरह से काम करते तो भाई अगर अगला आदमी फेंके बा तो वो देख के ओके अंदर भावना आए ना कि भाई देखा एक आदमी थरत बाटे और हम गंदगी फैला तो ओके मन में ही बैठे कि देखा हमका ये चीज नहीं करेंगे।
1: बिल्कुल, तो हम कहें कि देखा आज इतना लोगन के शहादत के बाद, इतना लोगन के सर्वोच्च बलिदान देवे के बाद, कितना लोग फांसी के फंदे में पर चढ़ गए भैया, अपना पूरा जीवन गवा दिए और एक शानदार जो ना आजाद देश हमें तुहे मिला बा, आजाद देश में सांस लिया जात बा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो एक जो ना कि कम से कम यही तरीके से योगदान हम तो के सबके करे।
0: बिल्कुल भाई, देखा खुली हवा में सांस लेके भाई कहीं भी आ जा सका था स्वच्छंद रूप से, और देश में ढंग से देखा विकास करत बाटे अपन दिनों दिन। तो छोटा छोटा अगर हम सब योगदान देव तो भाई देखा अपन जो काकोरी कांड के जो भाई घटना रही जो उद्देश्य से लेके किया गया,
1: बस उद्देश्य देखे की जरूरत है कि देखा उद्देश्य का रहा है, अपना कौन व्यक्तिगत स्वार्थ ना रहा,
0: स्वार्थ ना है भैया, हम सब के अपने देश के लिए निजी स्वार्थ से हट के काम करे के बाटे जो ना है, और अपने देश की जनता अपने किसान भाई सबसे ही अरदास बाटे कि भाई सबके अपन जो स्वतंत्रता दिवस आए वाला बा 15 अगस्त के, तो असली मायने यही रहे जो ना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया,
0: तो भाई खेत खलिहान के भी बात तो होत रहा था किसान भाई के साथ है, तो भाई देखा मन लगा रहा था।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो भाई देखा खेत में उर्वरा शक्ति बनाए रखने हेतु का आवश्यक उपाय बाटे, तो मनोज कुमार सिंह से भाई चंद्रजीत यादव के बात कही बाटे, आवाज सुना जाए।
1: सुनवा दे भैया।
2: किसान भाई, आप सब खेती बाड़ी के काम में लगा बाटे, निश्चित तौर पे आप सब के खेती बाड़ी में मकसद ही रहा थे कि कैसे कम से कम लागत लागे और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले। तो भाई देखा एक लिए तो जो ना खेत के उर्वरा शक्ति बाटे वो का बनाए रखे की जरूरत बाटे, और जहाँ तक आधुनिक खेती और वैज्ञानिक खेती की बात बाटे तो हमें इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता कि जौन खेत बाटे ओकर माटी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहा है और भरपूर उत्पादन भी मिलत रहा है। तो भाई यही विषय पर जानकारी देख ले आज हमारे साथे बाटे हैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह भैया जौन की ही कुल के विशेषज्ञ हैं। भैया आपके कार्यक्रम में स्वागत बा, और जाने चाहे भैया कि जौन खेती बा एकर उर्वरा शक्ति बनी रहा है, खेत जौन है ओकर माटी जौन है वो उर्वरा शक्ति में बनी रहा है, एकरे विषय में जानकारी दें, किसान भाई एकरे लिए का करें।
3: किसान भाई मृदा की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए हरी खाद का प्रयोग करें, क्रॉप रोटेशन अपनाएं और उसमें दलहनी फसलें ज़्यादा लें, जल निकास का उचित प्रबंध करें, जल भराव की दशा न आने दें, मृदा सुधारकों का प्रयोग करें, गहरी जड़ वाली फसलें उगाएं, जैव उर्वरक का प्रयोग करें, गहरी जुताई करें, मल्चिंग का प्रयोग करें, संरक्षित फसलें उगाएं, कार्बनिक खाद का प्रयोग करें और संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें।
2: भैया ये चीज बताओ, जैसे आप कहें कि हरी खाद के प्रयोग करें, तो हरी खाद के प्रयोग खेत में अपने कैसे करें, किसान भाई के विषय में बताओ।
3: आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हरी खाद के रूप में मुख्य रूप से सनई और ढैंचा उगाते हैं
2: जी।
3: हरी खाद के लिए सनई और ढैंचा की बुआई अप्रैल महीने के दूसरे पखवाड़े में शुरू कर देना चाहिए
2: जी।
3: किसान भाई खेत का पलेवा करके बुआई कर सकते हैं। प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए 60 किलोग्राम ढैंचा, अगर सनई बोना चाहते हैं तो 80 किलोग्राम सनई का बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगता है
2: जी।
3: ढैंचा के लिए हिसार ढैंचा वन और नरेंद्र ढैंचा वन प्रजाति अच्छी होती है। अगर सनई उगाना चाहते हैं तो उसके लिए सनई की 12 प्रजाति अच्छी होती है। ढैंचा और सनई के पौधों को जब 45 से 50 दिन के हो जाएं तो गहरी जुताई करके पूरी

0: तरीके से फसल को मिट्टी में मिला दें
1: जी
0: और उसमें पर्याप्त नमी बनी रहनी चाहिए, ये आवश्यक है। इसके बाद पौधे सड़कर मिट्टी में हरी खाद का काम करने लगते हैं। हरी खाद से मिट्टी में जीवांश पदार्थ व पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है।
1: जी
0: पोषक तत्वों का निक्षालन भी कम से कम होता है, यानी लीच करके पोषक तत्व जमीन के अंदर नहीं जाते हैं। खरपतवार आसानी से मर जाते हैं। पौधों में कीट रोग लगने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। नत्रजन की मात्रा बढ़ जाती है। हरी खाद क्षारी भूमि के सुधारक योग्य खेती के लिए भी की जाती है। भूमि में जल धारण क्षमता बढ़ती है, वायु संचार की क्षमता बढ़ती है,
1: जी
0: फसल उत्पादन के साथ साथ फसल की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। हरी खाद के प्रयोग से मृदा में फुलाव होता है और जल धारण क्षमता बढ़ जाती है।
1: का एक मतलब भैया कि अगर हरी खाद के इस्तेमाल किया जाए साल में एक बार
0: जी
1: तो निश्चित तौर पर जौन भाई माटी के उर्वरा शक्ति में जौन जल धारण क्षमता ओकर बाटे,
0: जी
1: जौन ओकर उत्पादकता बाटे निश्चित तौर पर बनी रहे, और कोनो भी तरह के खेती करें किसान भाई माटी में तो उनका भरपूर उत्पादन मिले।
0: उत्पादन में वो गुणवत्ता युक्त होगा।
1: भैया एक चीज़ जानना चाहत बाटी, जैसे मृदा सुधारक जौन होते हैं कैसे भैया मृदा सुधारक के इस्तेमाल किया जाए, यानी माटी के कैसे गुणवत्ता बनाए रखा जाए, एकरे लिए का कुछ विशेष तत्वन के विशेष पदार्थन के जरूरत होत का?
0: क्षारी मृदा और अम्लीय मृदा, दो प्रकार की मृदाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। अगर आपकी मृदा क्षारी मृदा है तो सुधारक के रूप में जिप्सम का प्रयोग करें। अगर आपके खेत का पीएच मान 8.5 से अधिक है तो क्षारी मृदा में सुधारक के रूप में 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से जिप्सम का प्रयोग करें।
1: जी
0: क्षारी मृदा सुधार के लिए हरी खाद का भी प्रयोग लाभदायक होता है और लवण सहिष्णु जो है फसलों की खेती करनी चाहिए। अगर आपकी मृदा अम्लीय है तो उसके सुधार के लिए चूना का प्रयोग करें। साधारणतया अम्लीय भूमि का पीएच मान उदासीन स्तर पर पहुंचाने के लिए लगभग 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से चूना की आवश्यकता पड़ती है। इसे बुआई से पहले खेत में छींटकर खेत में अच्छी तरीके से मिला दें। इसका असर जमीन में 4-5 साल तक रहता है। चूना का प्रयोग मिट्टी की बनावट को अच्छी कर देता है, पौधों की जड़ों की वृद्धि में योगदान करता है। चूना डालने से हानिकारक कीड़े मर जाते हैं। चूना डालने से सभी प्रकार की लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि होती है, जिससे नाइट्रोजन का फिक्सेशन अधिक होता है।
1: का मतलब भैया कि इस तरह से अगर किसान भाई मृदा के सुधार करे चाहते हैं तो इन्हन तत्वन के इस्तेमाल, इन्हन पदार्थन के इस्तेमाल करे चाहे। अब भैया एक चीज़ बताऊँ, जैसे जौन माटी बाटे जौन खेत बाटे उनमें जल भराव और जल के निकास के अगर अच्छी व्यवस्था कर दिया जाए तो का ऐसे भी माटी की उर्वरा शक्ति बनी रहे, उत्पादकता भी बनी रहे?
0: जी, मृदा में जल भराव होने से उर्वरा शक्ति का बहुत नुकसान होता है। जल भराव के कारण मृदा के पोषक तत्व लीचिंग यानी निक्षालन द्वारा जमीन के अंदर चले जाते हैं और फसलों को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए किसी भी दशा में खेत में जल भराव नहीं होना चाहिए और साथ ही जल निकास का उत्तम प्रबंध करें। जल बचाव के ये लाभ है कि पोषक तत्व मृदा से निक्षालन से बह करके बाहर चले जाते हैं खेत से, जिससे भूमि की जो उर्वरा शक्ति ऊपरी लेयर की चली जाती है। इसलिए जल निकास का अवश्य प्रबंध करें। अगर जल निकास का प्रबंध नहीं होगा तो झोंके से पानी खेत से निकलेगा, जिसके साथ पोषक तत्व भी निकल जाते हैं। इसलिए किसान भाई उत्तम जल निकास का प्रबंध अवश्य करें और किसी भी दशा में जल जमाव खेत में नहीं होने दें।
1: जब भैया फसल चक्र की बात की जात है वो कौने हद तक कौने तरह से कितना ज़्यादा फायदेमंद हो सकत है अगर फसल चक्र के इस्तेमाल सही से किसान कर बात है, एक विषय में बताएं।
0: क्रॉप रोटेशन में सामान्यतया देखा जाता है कि अनाज वाली फसलें जो है किसान ज़्यादा लेते हैं,
1: जी
0: जिससे उर्वरा शक्ति निरंतर जो है घटती जाती है। इसलिए क्रॉप रोटेशन में किसान भाई दलहनी फसलों का प्रयोग करें,
1: जी
0: जिससे खेत मजबूत होगा और कम लागत से कम उर्वरक डाल

0: से उत्पादन अधिक होगा और उसकी क्वालिटी भी अधिक होगी। और ये भी प्रयास करना चाहिए कि जैसे अरहर है, इसकी गहरी जड़ होती है,
1: जी
0: दलहनी फसल है, तो ये नीचे तक जड़ जा कर के जो कड़ी लेयर जमीन की होती है उसको तोड़ देती है, जिससे जो है पोषक तत्वों को पौधे आसानी से प्राप्त कर लेते हैं।
1: का मतलब भैया कि फसल चक्र अगर अपनावा जाए तो इसी कई तरह से फायदा हो सकती
0: जी
1: है। डॉक्टर साहब एक चीज बताओ, जैसे जैव उर्वरक की बात किया जाए था इसमें, कि भाई खेती में जैव उर्वरक के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, तो जैव उर्वरक के इस्तेमाल कैसे करें किसान भाई, और इसी का फायदा हो सकत उनका?
0: ये सूक्ष्म जीव मृदा और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करते हैं। जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम, एजो स्पाइरिलम,
1: जी
0: एजोटोबैक्टर, फॉस्फोबैक्टीरिया, माइकोराइजा, नील हरित शैवाल, अजोला इत्यादि हैं। दलहनी फसलों के लिए राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते हैं
1: जी
0: और एजोटोबैक्टर का अनाज वाली फसलों के लिए करते हैं। फॉस्फोबैक्टीरिया को फास्फोरस को घुलनशील बनाने के लिए प्रयोग करते हैं और माइकोराइजा का फास्फेट उर्वरक के अवशोषण के लिए प्रयोग करते हैं। सामान्यतः जो है अजोला नील हरित शैवाल का धान में उपयोग करते हैं जैव उर्वरक के रूप में।
1: ये बताओ भैया कि जैसे जैव उर्वरक बाटे, जैव उर्वरक के जो प्रयोग किसान भाई करी उनमें का कुछ विशेष बातन पर उनका ध्यान देख पड़े कि ज्यादा घाम न रहे चाहे, या भाई ओकर जो बीज में या सीधे खेत में मिलावे एक बाटे वो कौन कौन सावधानी के साथ होकर प्रयोग करें?
0: जैव उर्वरक को जो है कल्चर बना करके बीज उपचार करके ही बोएं, प्रयास करें बीज उपचारित करने के पश्चात उसको हवादार छायादार स्थान पर रख लें, इसके बाद जो है उसकी बुआई करें।
1: अच्छा,
0: अगर
1: तो
0: सीडलिंग प्लांट है तो उसके जो है जड़ को डुबोने के बाद जो है उसका रोपण करें।
1: अच्छा, अब भैया कुछ कार्बनिक खाद के विषय में भी जानने चाहत बाटी कि जब यह कार्बनिक खाद किसान भाई इस्तेमाल करें अपने खेत में वो कौन तरह से करें, और कौन कौन तरह से कार्बनिक खाद के इस्तेमाल कर सकते हैं?
0: मृदा में उर्वरकों के साथ कार्बनिक खादों का प्रयोग अति आवश्यक है।
1: जी
0: कार्बनिक खाद जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, मुर्गी फार्म की खाद, बर्मी कंपोस्ट आदि का प्रयोग कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार
1: जी
0: और अवेलेबिलिटी के अनुसार। कार्बनिक खाद पोषक तत्वों का भंडार है, इसलिए इसको लगातार प्रयोग करने से उर्वरकों से बचा जा सकता है और उर्वरक को आवश्यकता पड़ने पर ही दें। इसके प्रयोग से पोषक तत्वों में कमी नहीं होती है और साथ ही खरपतवार के नियंत्रण में मदद करती है। सूक्ष्म जीवों की गति को मृदा में बढ़ाती है, मृदा संरचना में सुधार होता है जिससे पौधों की जड़ों का फैलाव अच्छा होता है। इसके साथ साथ मिट्टी की पानी रोकने की क्षमता बढ़ जाती है और मृदा अपरदन में भी ये सहयोग करता है।
1: तो सिंह साहब आप जो तरह से बताएं, इस तरह से अगर किसान भाई ध्यान दें तो निश्चित तौर पर उनकर माटी की जो उर्वरा शक्ति वो बनी रहे, उत्पादन अच्छा होए, उनका कम लागत में अधिक से अधिक लाभ होए। आप आए ने इतना बढ़िया जानकारी दें, सब जानकारी के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ किसान भाई, हम कहीं देखा कितनी बढ़िया डॉक्टर साहब जौन है भैया मनोज कुमार सिंह जी भैया कितनी बढ़िया बात बताएं जौन है कि खेत में कौन अपन उर्वरा शक्ति बाटे, कैसे ओका बनावे खातिर जौन है का किसान भाई कह सकते हैं, और जौन जय उर्वरक बाटे भाई उसे अपन खेती के जौन लाभ ले सकते हैं।
3: भैया देखा, हम कहीं ना कि कुल बतिया देखा बड़ा महत्वपूर्ण बात है,
2: हाँ
3: आप बहुत सूक्ष्म बात है भैया, छोट छोट जानकारी है, ये कुल के ना बिल्कुल गौर से सुने के चाहिए और सुन के अपने खेती किसानी में अपनावे के चाहिए, कहें कि विशेषज्ञ लोग हैं भैया।
2: बिल्कुल भाई, देखा
3: एक एक चीज के पढ़ाई लिखाई लोग किए हैं भैया, एकदम मोहम्मद जो ना अंदर तक का जानकारी है उनके, तो एक अगर अपने खेती किसानी में अमल में लें लोग तो बहुत फायदेमंद है
2: भैया। हम तो कहे मनु भैया भाई, अपन सब एक तो प्रयासी है रहते कि खेती किसानी कैसे बढ़िया हो, तह बिना भाई समय समय पर भाई जो किसानों के बुलाई के उनके अनुभव लिया जाए, अपने विशेषज्ञ भैया के जो हलिया के जो है उनकर भाई जानकारी किसान भाई के दिन जाए, तो मूल उद्देश्य यही बाटे कि अपन किसान भाई का सुने और गुने।
3: हाँ बिल्कुल गुने। एक चीज और भैया देखा, हम कहें कि खेती किसानी में ना जौन कहा जाता, बार बार कहा जाता
2: हाँ।
3: कि जौन एक पारंपरिक खेती होता, मान ला भाई धान लगाए हैं लोग, गेहूं लगावते हैं, तिलहन लगावते हैं, दलहन लगावते हैं, ओकरी साथ साथ जौन आमदनी के बात आवत है ना हो, तो आमदनी की

0: में कुछ और सोचे के जरूरत है। हर समय में देखा, अब जैसे ये बरसात का समय बा ना,
1: हाँ
0: खरीफ बा, इहू में देखा धान के साथ साथ कई तरह का सब्जी का लोग खेती कर सकते हैं।
1: भैया देखा,
0: अब
1: ननुआ
0: बहुत
1: है, लौकी बा, तरोई बाटे भाई,
0: हाँ
1: हम तो कह
0: परवर
1: रहे
0: बा, भैया हम कहीं कि ये कुल सतपुतिया है देखा, खूब बढ़िया से मचान लगा के अगर चढ़ा दें।
1: एक बात और भैया कहा हमके भाई, देखा एक सब्जी खेती करें बहुत खर्चो नहीं जाऊन है,
0: नहीं नहीं ये समय का सब्जी खेती में बिल्कुल खर्चा ना होते
1: बिल्कुल
0: भैया,
1: भाई बस देख रेख का
0: देख रेख
1: खर्चा
0: करे
1: है।
0: की जरूरत होता। तो अगर तनी से दिमाग लगावे भैया है, चलाकी करें लोग हैं खेती किसानी में, कि अपन पारंपरिक जौन खेती बा ओकरी साथे कौन खेती ऐसा करी, कौन सब्जी का खेती करी जौने से कि हमके सीधे सीधे 4 पैसा का नगद आमदनी होके।
1: बिल्कुल भाई देखा, नकदी फसल के भाई हमेशा से जोर दिया जाता है कि भाई भाई परंपरागत खेती के साथ साथ अगर नकदी फसल बा तो समय समय पर भाई खेती किसानी में कौन जरूरत पड़ी बाटे भैया आपके यहाँ, भाई खाद है, पानी है, तमाम तरह के खर्चा पड़त रहते हैं, तो ऐसे अपन नकदी फसल अगर रहा है तो उससे पूर्ति होकर हो जाता है और हम तो कही भाई एक अच्छा आमदनी का स्रोत भी बनत है जौन है।
0: बिल्कुल, तो यह तरीके से सोचल बहुत जरूरी है। और एक बात और बताई,
1: बता
0: बार
1: दे।
0: बार देखा जो कहा जाता नंबर दिया जाता है, कहें कि एकदम बिल्कुल एक तरफ से बातचीत करा तो वो आनंद नहीं आवत है, जब किसान भाई का थोड़ा सा, पंच भैया का थोड़ा सा प्रतिक्रिया आवत है आए
1: बिल्कुल
0: कार्यक्रम के बारे में, आए
1: हाँ
0: कुछ जाना चाहते हैं, कुछ पूछा चाहते हैं, कुछ बतावा चाहते हैं, कुछ सलाह देते हैं, तो देखा बहुत आनंद आवत है हो।
1: ए
0: और
1: भाई हम
0: हम तू तो
1: कहे
0: देखा
1: संवाद।
0: हमेशा सोचा जाता कि का केव कहले बा है, का केव बतावत बा, तो प्रतिक्रिया व्यक्त करे बदे देखा बराबर नंबर जो ना बतावा जाते हैं। हम कहें कि भैया नंबरवा एक बार पहले बताए दा।
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई हमके देखा किसान भाई देखा जो ना अपन संपर्क नंबर बांटे अपन कार्यक्रम के 8004926250 भैया,
0: एक बार और बता दे भैया।
1: हमके भाई 8004926250।
0: बिल्कुल, और यही के साथ साथ हम कहें कि देखा ये व्हाट्सएप बा,
1: हाँ
0: अपन प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं, फेसबुक भी बा भैया, वह
1: हमके
0: पर
1: भाई
0: भी अपन।
1: आकाशवाणी के जौन भाई ऑफिशियल पेज बाटे
0: हाँ
1: आकाशवाणी प्रयागराज के, तो वहाँ पे भी जाए करके अपन भाई प्रतिक्रिया दे सकते हैं कौन कार्यक्रम कैसे लागत बा, कौन सा चाहत है भाई, तो हम तक के
0: जौन
1: भाई
0: भी सुझाव रही भैया ओके शामिल किया जाए अपने
1: शामिल किया जाए,
0: कार्यक्रम में।
1: ओकर अमल में लिया जाए और पूरा प्रयास किया
0: बिल्कुल,
1: जाए कि
0: सब लोग
1: जौन
0: बड़े गंभीरता से देखा था, देखा जो अपने आकाशवाणी के सक्षम लोग हैं, सक्षम अधिकारी लोग हैं, सब लोग बड़े ध्यान से सुनत हैं और ध्यान से जोहत हैं कि केकर का संदेशा आए बा, केकर का सुझाव आए बा। तो हम तो कहें कि किसान भैया के पर बिल्कुल अपन प्रतिक्रिया व्यक्त करे चाहिए, लेकिन देखा हो कुल झूरे झूरे खाली प्रतिक्रिया व्यक्त करी बा तो ना आनंद आई।
1: बिल्कुल
0: हम तो
1: बिल्कुल
0: कहते हैं कि
1: भाई
0: चला चलावत न
1: हाँ
0: चला चलावत, एक और गवनी हो जाए तो बहुत बढ़िया रहा।
1: सुनवा दो भैया सुनवा दो।
0: तो सुना भैया।

0: हाँ भैया,
1: हम कहीं भाई देखा गौनाई तो भाई देखा हो कि जो है रंजीत कुमार
0: मैं और
1: खान गाथिन
0: संघाती
1: के
0: उनका।
1: कजरी रही भैया जो है कितना नीक रही जो है। हम कहीं भाई देखा भाई मौसम के देखा अपने खेती बाड़ी में बड़ा महत्व है भाई।
0: और देखा अपने देश को जो खेती है ना, वो पूरा का पूरा मौसम पर, जलवायु पर निर्भर करते हैं। तो देखा बरसात तो हो ही जाते हैं, मूला जो ऊंचासे पर खेत है ना,
1: हाँ
0: उमन विशेष ध्यान देवे की जरूरत है। कभी कभी क्या होता है कि मान लो 2-4 दिन बरसात ना भयाए और ऊंचास का खेत है तो पानी नमी का कमी हो जाता है। उमन तो देखा धान पान और केरा ये सब पानी के चेरा, धान में पानी एकदम चहपह रहे के चाहिए। तो
1: बिल्कुल
0: बढ़िया से
1: बिल्कुल
0: हम कहीं कि मेड़बंदी कई के पानी उचास वाले खेत में भी ध्यान दें। अगर लगे कि कोनो कारण से बरसात में देरी होता है चाहे खेत में पानी कमी है, तो भाई आपन जो साधन बा उसे सिंचाई करे में बिल्कुल चूके ना।
1: ये भी साथ ही साथ जो बलुआर खेत हैं ना, उह में भी पानी की समस्या हो जाते है जो है। तो
0: सूख
1: ऐसे
0: लेता।
1: दोनों में भाई इस तरह का अपन भाई एक व्यवस्था रखे कि जो है चाहे तालाब पोखरा भाई कोई नलकूप जो भी व्यवस्था बा
0: हाँ
1: उसे भाई अगर लगातार नमी कमी पता तुरंत जो है सिंचाई
0: बिल्कुल।
1: हो।
0: और साथे साथे ऐसे में देखा बरसात और पानी पाई के बिना मतलब वाला खरपतवार आवते हैं। तो जो बात शुरुआत भई रही ना कि विशेष कहीं के ध्यान दे, हम कहें कि संझा सवेरे खेते पे जाएं सावधानी के साथे जाएं। और भैया खेत में घुसा, खेत में हला और जौन ऐसा खरपतवार निकलता, सबसे बढ़िया रास्ता होता भैया हाथे से निकाल के ओके दूरे करा। और देखा बुन्नी बरसात का मौसम बात तो हमारे त्योहार भी चले का समय हो गए बा, तो पंचन से आज्ञा लिया जाए। पंचो
1: पंचो
0: राम राम।
1: रामा।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 14.3 मेगा हर्ट्स पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से हर घर तिरंगा अभियान का किया शुभारंभ। काकोरी ट्रेन एक्शन के 101 वर्ष पूरे होने पर शहीदों को किया नमन। मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थनगर में 311 करोड़ रुपए की 107 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार की विकास नीतियों से प्रगति की राह पर अग्रसर हुआ जनपद। प्रदेश भर में सावन के दूसरे सोमवार को लेकर सुरक्षा और सुविधा के व्यापक इंतजाम। कांवड़ यात्रा मार्गों पर लागू किए गए विशेष ट्रैफिक प्लान। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नवगठित धार्मिक समिति की पहली बैठक संपन्न। 15 अगस्त को परंपरागत रीति रिवाज के साथ निकाली जाएगी रामलला की पालकी यात्रा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की और इस क्रम में जनप्रतिनिधियों, युवाओं, महिलाओं, भाजपा नेताओं और कलाकारों समेत राज्य के विभिन्न स्थानों से आए लोगों के साथ मुख्यमंत्री आवास से विधान भवन तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तिरंगा लेकर पैदल चले। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि तिरंगा विकास और विरासत का प्रतीक है।
1: हमारा ये तिरंगा हमारे सादगी का, हमारे विकास का, हमारी विरासत का और भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है।
0: श्री योगी ने देश की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले शहीदों, क्रांतिकारियों, सैनिकों और संविधान निर्माताओं राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा की शुरुआत की जा रही है। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। उन्होंने भारत के प्रतीकों, युवाओं, गरीबों, आधी आबादी, किसानों के लिए नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए उचित मंच देकर आदर्श पेश किया है। ये तिरंगा यात्रा उसी आदर्श की अभिव्यक्ति है। बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काकोरी ट्रेन एक्शन के 101वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में काकोरी शहीद स्मारक पर आयोजित शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्र नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अंग्रेज भारत के लोगों की गाढ़ी कमाई लूटकर ब्रिटेन ले जाना चाहते थे, लेकिन काकोरी में 9 अगस्त 1925 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों ने खजाने को अपने कब्जे में लेकर आजादी की लड़ाई को नई ऊंचाइयां प्रदान की थीं। श्री योगी ने आमजन का आह्वान किया कि हमारे गांव, क्षेत्र और जनपद में अनेक गुमनाम नायकों से जुड़ी बिखरी सामग्री को एकत्र करें। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद थे। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, प्रति घर तिरंगा।
3: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और

0: राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर जिले में 311 करोड़ रुपए की 107 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपे। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों के कारण सिद्धार्थनगर जनपद लगातार प्रगति की राह पर अग्रसर है।
2: सिद्धार्थनगर जनपद जो आकांक्षी था, पिछले 8-9 वर्षों के अंदर जो प्रयास हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, देश के अंदर 112 जनपद आकांक्षी जनपद है और अग्रणी छलांग लगाने वाला कोई जनपद है तो सिद्धार्थनगर जनपद है। अब ये आकांक्षात्मक नहीं, विकास के पायदान पर तेजी के साथ अग्रणी भूमिका के लिए जाने जाना वाला जनपद है।
1: कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल सहित जिले के कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। कल सावन का दूसरा सोमवार है। कांवड़ यात्रा और शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रदेश भर में सुरक्षा और सुविधा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया है कि काशी विश्वनाथ धाम में सुरक्षा के विशेष व्यवस्था की गई है।
3: तमाम हमारे कांवड़िया श्रद्धालु केवल उत्तर प्रदेश से नहीं, विभिन्न अन्य प्रदेशों से भी लोग यहां पर आ रहे हैं। जो हमारा संगम रूट है, प्रयागराज से लेकर के यहां का रूट है, उस पर लगातार लोगों का आवागमन बना हुआ है। सभी श्रद्धालु यहां पर सुरक्षित तरीके से यहां पर आए, इसके लिए एक डेडिकेटेड लेन बनाई गई है, विश्राम गृह बनाए गए हैं, पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं, CCTV कैमरे लगाए गए हैं, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। जितने भी पुलिसकर्मी यहाँ पर ड्यूटी पर लगे हैं उनकी लगातार ब्रीफिंग की जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं के साथ मित्रवत व्यवहार किया जाए और उनको अपना मेहमान समझा जाए, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए और प्रयास ये किया जाए कि वो यहाँ से बहुत अच्छी यादें लेकर के यहाँ से जाएं।
1: सभी जिलों में कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। बाराबंकी से हमारे प्रतिनिधि की खास रिपोर्ट।
4: कल सावन का दूसरा सोमवार है, लेकिन श्रद्धालुओं और कांवड़ियों का श्री लोदेश्वर धाम मंदिर पहुंचने का सिलसिला आज रविवार से शुरू हो गया है। सुदूर जनपदों से श्रद्धालु जय बम भोले के घोष लगाते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा भी उनका नगर क्षेत्र में स्वागत कर एक बड़े कैंप का आयोजन किया गया है, जहां उनकी जांच और अन्य सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाराबंकी से परवेज अहमद।
1: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नवगठित धार्मिक समिति की पहली बैठक आज हुई। बैठक में श्री राम मंदिर की धार्मिक परंपराओं और आगामी आयोजनों के बारे में चर्चा की गई। बैठक के बाद महंत रामानंद दास ने बताया कि 15 अगस्त की शाम अयोध्या की परंपरागत रीति रिवाज और साज सज्जा के साथ रामलला की पालकी यात्रा निकाली जाएगी।
5: रामलला है, उनका झूलनोत्सव अयोध्या की परंपरा के अनुसार विधि पूर्वक मनाया जाए। कुबेर टीला जहां वृक्ष भी है, भगवान दिव्य झूले में वहां पधार करके और सबके साथ वहां साजबाज से जाएंगे। उनका जो उत्सव है यानी गान बजान है वो परंपरागत अयोध्या की परंपरा से होगा।
1: कल राज्य के पूर्वी और पश्चिमी अंचलों के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस संबंध में येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से हर घर तिरंगा अभियान का किया शुभारंभ। काकोरी ट्रेन एक्शन के 101 वर्ष पूरे होने पर शहीदों को किया नमन। मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थनगर में 311 करोड़ रुपए की 107 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा सरकार की विकास नीतियों से प्रगति की राह पर अग्रसर हुआ जनपद। प्रदेश

भर में सावन के दूसरे सोमवार को लेकर सुरक्षा और सुविधा के व्यापक इंतजाम, कांवड़ यात्रा मार्गों पर लागू किए गए विशेष ट्रैफिक प्लान, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नवगठित धार्मिक समिति की पहली बैठक संपन्न, 15 अगस्त को परंपरागत

0: अखबारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव तो जुबान भी 2.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। ये है कार्यक्रम का पहला गीत टशन फिल्म से। आवाजें उदित नारायण सुखविंदर सिंह की, गीतकार विशाल ददलानी और संगीतकार विशाल शेखर।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अभी आप सुन रहे थे जुड़वां फिल्म में देव नेगी और नेहा कक्कड़ को, माफ कीजिएगा, अभी आप सुन रहे थे लकम्बर हुसैनपुरी की आवाज में राजशेखर का लिखा गीत। धुन बनाई थी कृष्ण।

ने फिल्म का नाम तनु वेड्स मनु। कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवा रहे हैं जुड़वां 2 फिल्म का गीत, देव नेगी और नेहा कक्कड़ की मिलीजुली आवाजों में। गीतकार देव कोहली, संदीप सिरोडकर ने धुन बनाई है।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं चित्रा चौरसिया। आइए पहले सुनते हैं इनके स्वर में मीराबाई का भजन।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज की कलाकार हैं चित्रा चौरसिया। अभी आप सुन रहे थे उनके स्वर में मीराबाई का भजन। आइए अंत में सुनते हैं इनके स्वर में सीतेश आलोक का लिखा गीत।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज की कलाकार थी चित्रा चौरसिया। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 92.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी प्रयागराज है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चिट्ठी आई है। प्रतिभागी हैं नेहा गुप्ता और वंदना राठौर।

0: नमस्कार। दोस्तों, आपके खूबसूरत से संदेश हमें मिल चुके हैं और उन्हीं संदेशों का जवाब देने के लिए कार्यक्रम में उपस्थित हैं कार्यक्रम प्रमुख नेहा गुप्ता जी। नेहा जी नमस्कार।
1: वंदना जी नमस्कार। सुधी श्रोताओं नमस्कार। अभिनंदन आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम चिट्ठी आई है मैं।
0: तो देखिए, हमारी एक लिसनर हैं डॉक्टर कहकशा इरफान जी, जो कि हमें प्रयागराज से अपना संदेश भेज रही हैं और ये कहती हैं कि 5 अगस्त को सुहानी सुबह 9:30 बजे जब सावन की झड़ियां लगी हुई थी तो आकाशवाणी प्रयागराज का जो उर्दू प्रोग्राम था वो ब्रॉडकास्ट हुआ। सुरीली आवाज, सजीली आवाज सुनाई पड़ी और ये आवाज थी निकहत सिद्दीकी जी की। अहमद हसनैन साहब की कहानी अंगूठी सुनी, बहुत ही अच्छी और जिंदा कहानी थी। इन्होंने कहानी के बारे में उसका जिक्र भी किया है और आगे इन्होंने कहा कि जो शायरी सुनाई गई थी वो भी बहुत ही खूबसूरत थी। तो इतनी शानदार पेशकश के लिए आप सभी को मुबारकबाद।
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर कहकशा इरफान जी। निकहत सिद्दीकी, उनकी आवाज मखमली सी है और उर्दू कार्यक्रम के लिए हम लोग ढूंढ रहे थे तो ढूंढते ढूंढते हम लोगों ने देखा कि अरे निकहत जी से बेहतर विकल्प और कौन हो सकता है। तो शुक्रिया आपका। अफसाना अहमद हसनैन साहब का पसंद आया तो भाई ये साधुवाद जो प्रदीप मिश्र जी हैं, इस कार्यक्रम के इंचार्ज हैं, वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा और इसी तरह से जुड़े रहिए उर्दू कार्यक्रम के साथ।
0: और नेहा जी, 2 ऑडियो मैसेज हम तक पहुँचे हैं
1: जी,
0: तो मैं चाह रही हूँ कि पहले आप उसे सुन लीजिए कि हमारे श्रोताओं ने क्या कुछ कहा है
1: जी,
0: तो फिर बात को आगे बढ़ाते हैं।
2: पहले वंदना जी और नेहा जी को विकास का प्यार भरा नमस्कार। एक कार्यक्रम जाता है आपकी पसंद जो मधु जी करती, इनकी प्रस्तुति बहुत अच्छी होती और इन्होंने अभी कुछ दिन पहले किया था वॉइस ऑफ प्रयागराज, आपके केंद्र से जो आता है हेलो गिर लक्ष्मी, वो कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत हमारा धन्यवाद।
3: नमस्कार, मैं पवन विश्वकर्मा, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, ग्राम धनगढ़ से आपको ये वॉइस मैसेज भेज रहा हूँ। नेहा जी, वंदना जी, इन लोगों का आवाज़ बहुत प्यारी है, ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक ब्लाइंड दृष्टि बाधित, तो मुझे रेडियो सुनना और मतलब जानकारियाँ आना यही एक माध्यम होता है। एक निवेदन है आप सभी से, ये जो 9 से 10:30 के बीच में आप दिव्य भारती को जोड़ देते हैं 100.3 GHz पर, हम चाहते हैं कि कभी कभार ना ही जोड़ें, क्योंकि जो हमारी अच्छी कार्यक्रमें होती हैं जैसे पब्लिक स्पीक हो गई और कुछ कार्यक्रम होते हैं जो 9:30 से 10 के बीच में आते हैं, तो उन्हें सुनने का मौका मिलेगा और क्या होगा, तो हमारे पास वो जानकारियाँ पहुँचेंगी। हर जगह तो ऐप उपलब्ध नहीं होगा, हर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं होगा कि वो स्मार्टफोन पे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पे सुन लेगा। उम्मीद है कि आप हमारी बातों को सुनेंगे और समझेंगे, धन्यवाद।
1: बहुत शुक्रिया विकास जी। याद है मुझे कि जब भी हेलो गृहलक्ष्मी होता है, विकास जी आप और धर्मेंद्र जी आपके एक और साथी हैं जिनका अक्सर फ़ोन आता है और हम लोग तो सुनते रहते हैं आप सभी को। बहुत अच्छा लगा कि इस बार आपने वॉइस नोट भेजा और इसी बार नहीं आप हर बार भेजिएगा। मधु जी का कार्यक्रम आपको पसंद आता है, इसका जो साधुवाद है इस कार्यक्रम का ज़रूर वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। हेलो गृहलक्ष्मी के लिए भी अभय जी को भी आपकी ये जो बधाई है उन तक ज़रूर पहुंचा दी जाएगी। पवन विश्वकर्मा जी, शुक्रिया आपका, आप प्रतापगढ़ से वॉइस नोट हमारे केंद्र आपने 800 वाले नंबर पे भेजा है। ये जो आप कह रहे हैं कि 9:30 बजे कई बार विविध भारती सुनाई पड़ता है और आपको पब्लिक स्पीक या फिर अंग्रेज़ी या फिर चर्चा का विषय है वो सुनना है, तो कुछ चीज़ें हैं पाइपलाइन में जिन्हें करना है। तुरंत तो हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे कि असल में हम क्या करने वाले हैं, लेकिन इस पर आपको काम दिखेगा, थोड़ा समय इंतज़ार करिए, ज़रूर आपको आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया पवन जी।
0: और ग्राम जसवाड़ी, ज़िला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे और सूरज कुमार ढाकसे जी ने अपना संदेश भेजा है और ये लिखते हैं कि 23 जुलाई का पनघट कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में आज की बात के अंतर्गत आज की पीढ़ी और जीवन मूल्य विषय पर दी गई जानकारी बढ़िया लगी। महिला स्वास्थ्य समस्याएं और होम्योपैथिक विषय पर डॉक्टर सुमन दुबे से प्रतिमा शुक्ला जी की जो बातचीत थी वो बड़ी ही लाभदायक थी। साथ ही मधुर लोकगीत और रसोई घर से

0: भिंडी की रसेदार सब्जी, बहुत स्वादिष्ट लगी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया दुर्गेश नागनपुरे जी। ये जो पनघट कार्यक्रम है ना, इसका कलेवर बिल्कुल पारिवारिक है। भिंडी की रसेदार सब्जी इस मौसम में खाना, आ हा हा हा हा, मतलब जबान शायद इस तरह की सब्जी के लिए ही तरसती रहती है। उसमें अगर आप सरसों और हल्का सा चावल बहुत थोड़ा सा पीसें, और तब देखिए इस सब्जी का रंग और स्वाद बिल्कुल अलग आपको मिलेगा। और डॉक्टर सुमन दुबे से प्रतिमा शुक्ला की बातचीत अच्छी लगी, तो भाई ये जो साधुवाद है, हम कंसर्न लोग हैं, उन तक जरूर पहुंचा देंगे। शुक्रिया आपका।
0: और नेहा जी,
1: जी
0: एक फरमाइश हमारे एक श्रोता हैं निखिल चंद्र जोशी जी, उन्होंने की है, और इनका कहना है कि इन्हें सुमित्रा नंदन पंत जी से जो बातचीत की गई थी, इला चंद्र जोशी जी ने जो बातचीत की थी, पुरानी रिकॉर्डिंग है, वो अगर मिल जाए और उसे सुनवा दे तो बहुत खुशी होगी।
1: क्या बात है निखिल चंद्र जोशी जी, ये बात जब आपने फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखी थी तभी हम तक पहुंचाई। तो हम लोग ये रिकॉर्डिंग मिलते ही हम लोग ढूंढ रहे हैं, कंसर्न सेक्शन को लिख दिया गया है। और तब पंडित इलाचंद जोशी जी ने जो साक्षात्कार पंत साहब का लिया है उसे हम जरूर सुनवाएंगे। शुक्रिया आपका।
0: और नेहा जी अपने संदेश के साथ हमसे जुड़ रही हैं नीरा त्रिपाठी जी, अशोक नगर प्रयागराज से,
1: जी
0: और ये कहती हैं कि प्रेमेंद्र जी ने जो नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम प्रस्तुत किया था वो बहुत अच्छा लगा। आगे ये कहती हैं कि किस्सा गोई में जिस तरह से आप दोनों ने, यानी वंदना जी और नेहा जी, आप दोनों ने कहानी सुनाई, यशपाल जी की लिखी हुई पर्दा, मुझे बहुत सारी बातें याद आने लगी, आंखें मेरी नम हो गई। इसका जो अंत था वो बड़ा ही दर्दनाक था, और ये बात सच है कि जो दिखावा होता है ये आदमी को भीतर से खोखला कर देता है। और आगे नमस्कार प्रयागराज के अंतर्गत मोना पांडे जी की पेशकश बहुत अच्छी लगी। मित्रता दिवस की जो शुरुआत प्रोग्राम में जब उन्होंने की तो उन्होंने बताया कि मित्रता में ईमानदारी मजबूती प्रदान करती है, दोस्ती को और प्रगाढ़ करती है। गीत बहुत सुंदर थे। आगे प्रेमेंद्र जी का ही एक प्रोग्राम और भी इन्हें पसंद आया था, जिसमें संचारी रोग होते हैं इस बारिश के मौसम में, उससे बचने के बहुत सारे उपाय
1: जी
0: उन्होंने बताए थे, ये बहुत अच्छा लगा। और आगे ये कहती हैं कि वॉइस ऑफ प्रयागराज में नेहा जी और अभय तिवारी जी की जो बातचीत थी सिद्धार्थ जी से,
1: जी
0: एक उद्योग को खड़ा करने के पीछे कितना संघर्ष छुपा होता है, जीवन की जो उतार चढ़ाव है जिस तरह से उन्होंने साझा किए वो दिल को छू रहे थे। बहुत ही अच्छे कलेवर में वॉइस ऑफ प्रयागराज हम श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई।
1: बहुत शुक्रिया नीरा जी, इतना सार्थक, विस्तारित और सुगंधमय पत्र भेजने के लिए। यशपाल जी की कहानी सच में बहुत मार्मिक और झकझोर देने वाली थी कि सच्चाई को क्यों हमें अपनाना चाहिए। ये शायद हर मनुष्य के आँख में जो पर्दा पड़ा हुआ है ना, उस पर्दे को ही हटाने की कोशिश उन्होंने की थी इस कहानी के माध्यम से। तो इसी तरह की कहानियाँ हम आप सभी के बीच लाते रहेंगे, इस तरह का हम वादा करते हैं आपसे। नमस्कार प्रयागराज में मोना जी ने, प्रेमेंद्र जी ने, अखिलेश जी ने बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ दी हैं। मित्रता दिवस के ऊपर मोना जी ने बहुत सुंदर बात कही कि क्यों ना हम फ्रेंडशिप में ईमानदारी बरतें, निष्ठा रखें, तो वो रिश्ता बहुत प्रगाढ़ होता है। ये जो मानव तस्करी की बात प्रेमेंद्र जी ने की थी, और गुरु पूर्णिमा वाले दिन भी उनका प्रोग्राम बहुत सुंदर था। तो नीरा जी आपका जो साधुवाद है हम अपने पैनलिस्ट तक ज़रूर पहुंचाएंगे। वॉइस ऑफ प्रयाग आपको अच्छा लगा, शुक्रिया। कोशिश है कि जो प्रयाग के वॉइसेस हैं, प्रयाग के व्यक्तित्व हैं, उन सभी को इस कार्यक्रम में ले आएं और उनसे बात की जाए, ताकि सवेरे का जो समय है वो बिल्कुल रोशन हो जाए इन सब कार्यक्रमों को पसंद करने के लिए। नीरा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: और नेहा जी, अजीत शर्मा आकाश जी भी हमें संदेश भेज
1: जी
0: रहे हैं, लेकिन इनका संदेश कहाँ से आया है ये नहीं पता। इन्हें भी किस्सा गोई कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा था। ये कहते हैं कि महान कथाकार यशपाल जी की कहानी पर्दा का वाचन हृदयाकर्षक प्रतीत हुआ, सुंदर एवं सराहनीय प्रस्तुति रही। तो वहीं शालिनी त्रिपाठी जी प्रयागराज से हमसे जुड़ रही हैं, वो कहती हैं कि किस्सा या कहानी तभी सार्थक होती है जब उसे कहने वाला सिर्फ शब्दों को ना दोहराए बल्कि अपनी आवाज, अंदाज और एहसास से उसमें जान डाल दे। नेहा जी और वंदना जी को बहुत बहुत बधाई। आप दोनों इसी तरह हम

0: श्रोताओं के लिए अपने शब्दों से खूबसूरत किस्से बुनती रहें और अपनी दिलकश आवाज से हर कहानी को हमारे दिलों तक पहुंचाती रहें।
1: आकाशी, शालिनी जी, ये जो बात आप दोनों कह रहे हैं कि हम लोग भी कहानी का हिस्सा हो गए, मतलब आप लोगों से कितनी बातें हम लोगों ने सीखी हैं, हमने और वंदना जी ने। कभी ऐसा मौका मिला तो हम लोग इस पर भी प्रोग्राम करेंगे कि हर चिट्ठी से हमने कितना सीखा।
0: बिल्कुल,
1: बहुत अच्छा लगता है जी, तो शुक्रिया आप दोनों का।
0: और नेहा जी, माधवी कुशवाहा जी कोठा पारशा प्रयागराज से हमसे जुड़ रही हैं अपने संदेश के जरिए, और ये पहले तो शिकायत कर रही थी, वो शिकायत मुझसे ही है कि पिछली बार जब इन्होंने नीलम श्रीवास्तव जी का जो नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम था उसके लिए इन्होंने लंबा चौड़ा संदेश भेजा था माधुरी जी ने
1: जी,
0: और मैंने संक्षिप्त उस संदेश को कर दिया था, तो माधुरी जी का कहना है कि उन्हें थोड़ा सा दुख हुआ है, तो हम भी माधुरी जी से इसके लिए क्षमा मांगते हैं।
1: पता है, ऐसे ही कई बार होता है, पत्रों की संख्या अधिक होती है, वंदना जी पत्र पढ़ रही होती हैं, समय को भी हमें ध्यान में रखना होता है। अगर वही सच में कोई बात बुरी लगती हो तो माफी, लेकिन हाँ, प्यार हमेशा भेजिएगा।
0: तो देखिए, माधुरी जी ने जो संदेश भेजा है
1: जी
0: तो वो है एक ही कलाकार कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया था अतुल यादव जी ने, और कविवर गोपाल दास नीरज जी पर केंद्रित था। तो इनका कहना है माधुरी जी का कि बड़े ही सुंदर तरीके से उनके पारिवारिक जीवन के बारे में, उनके रचनात्मक जीवन के बारे में और साथ साथ फिल्मी जीवन के बारे में अतुल जी ने विस्तार से बताया, और जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया वो बहुत अच्छा लगा। भाषा शैली बहुत अच्छी थी, प्रोग्राम को भावपूर्ण तरीके से बनाया गया, और साथ ही साथ ये कहती हैं कि 31 जुलाई का पूरा दिन ही महान लेखक प्रेमचंद जी को समर्पित लग रहा था। वॉइस ऑफ प्रयागराज में नीलम सिंह जी ने प्रेमचंद जी के बारे में चर्चा की थी। 11:30 बजे प्रेमचंद जी पर आधारित रूपक साहित्य के उन्नायक प्रेमचंद बहुत पसंद आया। युववाणी कार्यक्रम में हर्षिता श्रीवास्तव जी की वार्ता उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद सुनी, बहुत अच्छी लगी। बड़े ही अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी बातों को रखा, और प्रेरणा पुंज में सुधांशु और सेजल ने भी प्रेमचंद जी के ही बारे में उनके उपन्यास गोदान पर चर्चा की। पूरी आकाशवाणी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
1: बहुत शुक्रिया माधुरी कुशवाहा जी। नमस्कार प्रयागराज में आपको नीलम सिंह, नीलम श्रीवास्तव जी का कार्य, उनका रिसर्च वर्क पसंद आया, तो भाई इसका साधुवाद उनको हम ज़रूर प्रेषित कर देंगे। आपको वॉइस ऑफ प्रयाग पसंद आया, और जो हमारा रूपक था, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी पर, वंदना जी खुद हमारे सामने बैठी हुई हैं, विनय श्रीवास्तव जी, अभयकांत तिवारी जी, अभिनव प्रज्ञा पांडे जी, दीपक जी की प्रस्तुति, निकहत की अतुल जी की, और जिन्होंने इसको लिखा है रणविजय सत्यकेतु जी, बहुत सुंदर सब लोगों ने इसमें ईमानदारी से उन लोगों ने काम किया है, आवाज़ बहुत सुंदर बन पड़ी है, लिखावट बहुत सुंदर है। तो बहुत शुक्रिया माधुरी जी, और आप यूं ही हंसती खिलखिलाती रहिए और नाराज़ भी होइए, क्योंकि आप जब नाराज़गी दिखाते हैं आप में से कोई भी श्रोता, तो ऐसा लगता है कि आहा, वो अपनापन और छलक करके आ जाता है। शुक्रिया आपका।
0: और नेहा जी, कुछ हमारे श्रोता हैं
1: जी
0: सोशल मीडिया के जरिए जिन्होंने अपना प्यार हम तक पहुँचाया है, जिसमें अंजना गौड़ जी, उत्तम सिंह जंघेल, अनोखे लाल जी, मुकेश कश्यप और सदानंद मंदूरकर जी हैं। ये कहते हैं कि आकाशवाणी प्रयागराज से जो कार्यक्रम यहाँ से प्रसारित किए जाते हैं इसे ये बड़े मन से सुनते हैं, इन्हें बहुत पसंद आते हैं, ये ऐप के जरिए हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं।
1: बहुत शुक्रिया आप सभी का। अच्छा लगता है जब साथ मिलकर बैठकर प्रोग्राम बनाते हैं और सुनते हैं, और आपकी चिट्ठी आती है।
0: तो देखिए, चिट्ठी लिखने के लिए श्रोताओं को बताएंगे अब हम अपना पता। तो श्रोताओं लिखिए, कार्यक्रम चिट्ठी आई है, द्वारा केंद्र निदेशक 7-9 दयानंद मार्ग, आकाशवाणी प्रयागराज। हमारा पिन कोड नंबर है 211001 और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। तो श्रोताओं, हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार, और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: चिट्ठी आई है, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम, वाचन स्वर थे नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं चित्रपट।

संगीत। यह है कार्यक्रम का पहला गीत, कुमार का लिखा हुआ, अमाल मलिक का सुरबद्ध, आवाज अरिजीत सिंह की, फिल्म का नाम एयरलिफ्ट।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जावेद अली की आवाज में। गीत और संगीत राशिद खान का है। फिल्म का नाम राज 3।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम के अंत में। अब हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक कुमार सानू के युगल स्वर में जमाना दीवाना फिल्म का गीत, लिखा है समीर ने, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। लीजिए सुनिए साप्ताहिक कार्यक्रम आज इतवार है। इसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजेंद्र कुमार की लिखी झलकी LTC के का चक्कर।

0: अजी सुनते हो, बच्चों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। क्यों ना हम भी इस बार एलटीसी पर बाहर कहीं घूमने आए।
1: यहाँ क्या बुरा है घूमने फिरने में, सिवाय समय और पैसे की बर्बादी के और धरा ही क्या है।
0: तुम जैसे मनहूस आदमी से तो कुछ कहना ही बेकार है। न कहीं घूमने का शौक और न घुमाने का। अरे सरकार पैसा देती है तो तुम्हें

0: अजी सुनते हो, बच्चों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। क्यों ना हम भी इस बार एलटीसी पर बाहर कहीं घूमने आए।
1: यहाँ क्या बुरा है, घूमने फिरने में सिवाय समय और पैसे की बर्बादी के और धरा ही क्या है।
0: तुम जैसे मनहूस आदमी से तो कुछ कहना ही बेकार है। न कहीं घूमने का शौक और न घुमाने का। अरे सरकार पैसा देती है तो तुम्हें क्या परेशानी है।
1: क्या फजूल बकवास करती हो, सरकार पैसा देती है, सरकार का क्या जाता है। पैसा एक मंत्रालय से निकला दूसरे मंत्रालय में चला गया, दाएं हाथ ने बाएं हाथ को पकड़ा दिया। बाहर निकलने पर रहने खाने का खर्च तो हमें जेब से ही करना होता है, और इस महंगाई में हारी बीमारी के लिए थोड़ी बहुत किसी तरह कुछ बचत करो तो वो भी घूमने में घुस जाए। अच्छी घुमाई हुई।
2: पापा जी चलिए ना, नहीं घुमाइएगा तो भी पैसा बचेगा कहाँ, कहीं ना कहीं तो खर्च हो ही जाएगा।
3: हाँ पापा जी, हर साल छुट्टियों में घर बैठे बैठे कितने बोर हो जाते हैं हम लोग।
0: दुनिया घूमने जा रही है, क्या हम लोगों का मन नहीं करता।
1: अच्छा ठीक है बाबा, अब बात का बतंगड़ मत बनाओ। हा? देखता हूँ ऑफिस से छुट्टी मंजूर हो जाए तो इस बार ले लेता हूँ एलटीसी।
2: पापा जी बम्बई का एलटीसी लीजिएगा, टीनू कहता है खूब बड़ा शहर है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगे हैं, समुद्र हैं, एलिफेंटा केव्स हैं, फिल्म स्टूडियो है, वहाँ शूटिंग देखेंगे, बड़ा मजा आएगा, क्यों बबलू।
3: हाँ पापा बम्बई चलिए, वहाँ ढेर से फिल्म स्टार दिखाई पड़ेंगे।
1: अबे चुप, जब देखो तब फिल्म और टीवी की बात करता रहता है, है? अपनी पढ़ाई लिखाई की तरफ भी कभी ध्यान दिया है।
0: सुनो जी, फिल्म स्टूडियो देखने की इच्छा तो मुझे भी बहुत दिनों से है।
1: ये लो, घोड़े ने पाँव में नाल ठुकवाई तो मेढकी ने भी पैर बढ़ा दिए। अरे अब बुढ़ापे में तुम्हें भी फिल्म स्टूडियो में घूमने का शौक चल रहा है। अगर कहीं किसी रसिक प्रोड्यूसर की नजर तुम पर टिक गई तो मैं तो ना घर का रहूंगा न घाट का।
0: इस उम्र में तुम्हारी यहाँ सूटी टोली मुझे नहीं अच्छी लगती, न समय देखती हो न बच्चों को।
1: अजी सुनना तो जरा, तुम्हारी सब तैयारी वगैरह तो हो गई ना।
0: कपड़े वगैरह अटैचियों में लगा दिए हैं। हाँ सफर के लिए कुछ जरूरी सामान रह गया है, बाजार से लाना होगा, उसे तो लिख लो।
1: ठीक है, बोलो क्या क्या सामान रह गया है।
0: देखो जी 24 घंटे से ऊपर का सफर है, रास्ते में तो कुछ मिलता है नहीं, कुछ दवाइयाँ वगैरह भी तो साथ में रखनी ही पड़ेंगी, बाल बच्चे साथ हैं, चक्कर और उल्टी से बचने के लिए कुछ टेबलेट्स वगैरह ले लेना।
1: ठीक है, और कुछ।
0: हाँ याद आया, फर्स्ट एड का सामान भी तो जरूरी है, कुछ बैंडेज पट्टियाँ टिंचर आयोडीन वगैरह भी ले लेना। अब रेलों की दशा तो तुम जानते ही हो, झटके से गाड़ी रुकती है तो खिड़कियों के शटर अपने आप गिर पड़ते हैं, बच्चे भी तो हमेशा खिड़कियों के पास बैठने की जिद करते हैं, शटर गिरने से कहीं किसी की उंगली वगैरह चोट खा गई तो रास्ते में दवा कहाँ से आएगी।
1: तुम दवाइयाँ ले चल रही हो या चलता फिरता अस्पताल, कहो तो एक डॉक्टर और नर्स का भी रिजर्वेशन करा लूं, साथ रहेंगे तो ये सब चिंता उन्हीं की होगी।
0: देखो जी तुम हर बात को मजाक में मत उड़ा दिया करो, सफर में सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। देखा नहीं सड़कों और स्टेशनों पर हर जगह लिखा रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
1: ठीक है बाबा ठीक है, अरे ये भी हो जाएगा। अच्छा अब तो बस ना।
0: जरा चुप रहो ना। हाँ याद आया, पानी की बोतलें वाटर कंटेनर भी जरूरी है, पानी घर से ही भर कर ले जाना होगा।
1: घर से भर कर ले जाना होगा, वो क्यों, क्या रास्ते में स्टेशनों पर पानी नहीं मिलता।
0: अब जगह जगह का पानी पता नहीं क्या हो कैसा हो, देखते नहीं प्रदूषण के खिलाफ कैसी कैसी सावधानियां बरतने को सावधान किया जा रहा है, और तुम हो कि जैसे किसी बात का होश ही नहीं है। ट्रेन का पानी ना बाबा ना।
1: अरे रास्ते में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी तो मिलता है भाई।
0: कोल्ड ड्रिंक्स ना ना ना ना, कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल नहीं, बच्चे जिद करे तो भी नहीं, सैक्रीन वगैरह जने क्या क्या तो मिला रहता है उसमें, वो सब नहीं चलेगा। जो मैं कहती हूँ वो सुनो, सादा पानी ही ले चलेंगे घर से।
3: पापा जी मैंने टांगे पर सब सामान रखवा दिया है, वहाँ चलता हूँ, आप सबको लेकर आइए।
0: जी सुनते हो,
1: अब क्या है।
0: मैंने कहा पैसे तो संभाल कर रख लिए हैं ना, अगर रास्ते में जेब कट गई तो परदेश में भूखों मरने की नौबत आ जाएगी।
1: स्टेशन पहुंचकर ट्रेवलर्स चेक बनवा लेंगे, सुविधा रहेगी।
0: अरे पागल हुए हो, कौन सा लाख दो लाख बांध कर चल रहे हो, थोड़े से पैसे हैं उसे भी संभाल कर नहीं रख सकते।

0: सफर है, रास्ते में भगवान ना करे कुछ जरूरत आ पड़ी तो क्या ट्रेवलर्स चेक को शहद लगाकर चाटोगे? तुम्हारे अंडरवियर के अंदर चोर जेब बना दिया है, वो किस दिन काम आएगा? पैसे वहीं रखना।
1: ठीक है, अब जल्दी ताले वगैरह बंद करो, मैं बाहर निकलता हूँ। आप ये कौन बदतमीज है, किसने छींका?
0: बेबी को जुखाम है, शायद उसी को छींक आई है।
1: तो क्या यही समय था छींकाने का?
0: अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाइए, बच्चों को भी बुला लेते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा पानी पिला देती हूँ, फिर निकलते हैं, यात्रा दोष जाता रहेगा।
2: लीजिए बाबूजी, स्टेशन आ गया।
1: ठीक है, तुम तांगा यहीं रोको और सामान उतारो। बबलू, तुम सामान उतरवाओ। ये लो सामानों की लिस्ट, एक एक करके चेक कर लेना, कहीं कोई सामान तांगे पर ही न छूट जाए।
3: ठीक है पापा जी, मैं चेक करता हूँ।
4: बाबूजी, कौन ट्रेन से चल रहा है?
1: बॉम्बे मेल।
4: बॉम्बे मेल? वो तो एक घंटा लेट है।
1: लेट है? सत्यानाश, अब प्लेटफॉर्म पर बैठकर बोर होना पड़ेगा गर्मी में एक घंटा। सुनो, टिकटें तो संभाल कर रख ली है ना? ट्रेन में टिकट चेकर को दिखाना पड़ेगा।
0: टिकटें तो मैंने आपको दी थी।
1: है? पागल हो गई हो, मुझे कब दिया था? तुम अपना पर्स ठीक से देखो, घर से निकलते समय मैंने तुम्हें संभाल कर रखने को दी थी।
0: आप भी कमाल करते हैं, आपको कुछ याद भी रहता है, मुझे कब दी थी? अपनी जेबें ठीक से देखिए।
1: देखता हूँ भाई, देखता हूँ। मेरे पास तो नहीं है, अब क्या होगा? टिकट कहीं रास्ते में तो नहीं गिर गए?
5: आप भी मम्मी बस, कुछ याद तो रहता नहीं आपको, टिकटें तो आपने बबलू भैया को दी थी।
1: हाँ हाँ, कहाँ है बबलू, बुलाओ तो उसे।
6: अरे बबलू, जरा इधर तो आना।
3: लेकिन पापा, मैं तो तांगे से सामान उतरवा रहा हूँ।
6: अबे इधर तो आ पहले, बड़ा आया सामान उतरवा रहा है।
1: टिकटें लिए तू बैठा है, यहाँ हम सब परेशान हो रहे हैं। निकाल टिकटें और मुझे दे।
3: लेकिन पापा, मेरे पास टिकटें कहाँ हैं, आपने मुझे कब दी थी?
1: है? अबे अबे, वो क्या बेबी झूठ बोल रही है, तेरी मम्मी ने तुझे ही तो दी थी, उसने देखा था।
3: हाँ हाँ, मम्मी ने टिकटें मुझे आपको देने के लिए दी थी, और मैंने तुरंत ही आपको पकड़ा भी दी थी वहीं घर में, याद करिए।
0: सुनो जी, एक बार फिर आप अपनी जेबें फिर से चेक क्यों नहीं कर लेते? हो सकता है जल्दबाजी में ढंग से ना देख पा रहे हो।
1: क्या ठीक से देख लूं? अच्छा ठीक है, देखता हूँ। मिल गई, टिकटें रुमाल के बीच में फंसी हुई थी, चलो एक चिंता तो दूर हुई।
3: आप भी पापा बस, झट दूसरों का नाम लगा देते हैं, अपनी जेबें नहीं देखते।
1: अबे चल, बड़ा आया हमें ही नसीहत देने वाला।
0: सुनो जी,
1: अब क्या है?
0: सुनो, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है, वो बेडरूम वाली खिड़की है ना, वो शायद खुली रह गई। चलते समय सोचा था बंद कर दूंगी, लेकिन वो बेबी ने चलते समय छींक दिया था ना, तो मैं पानी पिलाने में लग गई और जल्दी जल्दी मैं खिड़की बंद करना भूल गई।
1: अरे अब क्या होगा, तुमने तो गजब ही कर दिया सुशीला, खिड़की तो पिछवाड़े वाली गली में खुलती है, कपड़ों और गहनों की अलमारी भी तो बेडरूम में ही है, तुमने ये क्या तमाशा खड़ा कर दिया, अब क्या होगा?
0: सुनो जी, अभी तो गाड़ी एक घंटा लेट है, क्यों ना एक बार तुम इसी तांगे से घर हो आओ, ताला वही खिड़की के ऊपर रखा है, खिड़की के पल्लों को अच्छी तरह से बंद करके ताला लगा देना, मैं तब तक कुली के साथ सामान लेकर प्लेटफॉर्म पर चलती हूँ।
1: ठीक है, तुम बच्चों के साथ प्लेटफॉर्म पर पहुँचो, मैं घर होकर फौरन आता हूँ। ए तांगे वाले भाई, जल्दी से मुझे फिर से घर पहुँचा दे, एक बहुत ज़रूरी चीज़ घर पर रह गई है।
2: आप भी कमाल करते हैं बाबूजी, हैं, घर से निकलने में आपने घंटों लगा दिए और फिर आपकी कोई चीज़ छूट गई है।
1: अरे तो इससे तुझको क्या, तू अपना काम कर और किराया ले।
2: बाबूजी, अब कोई दूसरी सवारी देख लीजिए, घोड़ा इतनी दूर चलकर आया है, खड़ा खड़ा हाँफ रहा है, आखिर जानवर के भी तो जान होती है ना।
1: अरे तू समझता क्यों नहीं भाई, यहाँ इस समय कोई दूसरी सवारी भी तो नजर नहीं आ रही है, इस मुसीबत में तू मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा है? अरे कुछ और पैसे ले लेना भाई,
2: 30 रुपए और होंगे।
1: 30 रुपए? अबे लूट पड़ी है क्या, 10 रुपए में अभी आया है इतनी सवारी और सामान के साथ है? अब अकेले के 30 रुपए,
2: 10 आने के और 10 जाने के, 20 तो यही हो गए। 10

0: रुपए से ज्यादा मांग रहा हूँ, 30 रुपए से कम नहीं लगेंगे, मर्जी हो चलो मर्जी हो ना चलो।
1: ठीक है बाबा दूंगा, अब गरज है तो जो चाहे सो मांग लो।
2: यात्री ध्यान दें, हावड़ा से चलकर बॉम्बे जाने वाली बॉम्बे मेल जो सही समय से 1 घंटा लेट थी अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। जो यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बॉम्बे मेल का इंतजार कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने का कष्ट करें। धन्यवाद।
3: मम्मी गाड़ी तो आने वाली है, पापा जी तो अभी घर भी नहीं पहुंचे होंगे, इतनी देर थोड़ी ही गाड़ी रुकेगी।
4: बहन जी हमका पैसा दे हम चलें, गाड़ी आवे वाली है, हम दूसरा पैसेंजर देखें, आप लोग अभी गाड़ी से नहीं जा सकेंगे।
5: क्यों जी अभी तो तुमने बताया था गाड़ी 1 घंटा लेट है, पर ये जल्दी कैसे आ रही है?
4: अब लेट का क्या बताएं, कबो और लेट हो जाती है कबो मेकअप करके जल्दी आ जाती है। ले वो बम्बई मेल आ गई, बस 10 मिनट स्टाफ है यहाँ, बाबू जी इतनी जल्दी थोड़े आ जाएंगे। पैसा दे नहीं तो गाड़ी के पैसेंजर निकल जाएंगे।
5: क्या होगा
4: बहन जी, अभी गाड़ी नहीं मिलेगी आपको, अगली गाड़ी से जाए, पैसे दें।
3: मम्मी वो पापा जी आ गए।
5: अब आने से क्या होता है, गाड़ी तो वो गई।
1: क्यों जी तुम्हारी अकल क्या घास चरने चली गई थी, झूठ मूठ का मुझे इतनी दूर दौड़ा दिया। खिड़की बंद कर ताला तो तुमने पहले ही सही लगा दिया था, 30 रुपए तांगे वाले को अलग से देने पड़े।
6: पापा जी हमारी गाड़ी गई।
1: आए, गाड़ी गई? हमारी गाड़ी तो 1 घंटा लेट थी, मैं तो 1 घंटे से पहले ही आ गया हूँ भाई।
5: गाड़ी ने लेट मेकअप कर लिया था, वो देखो वो क्या जा रही है।
7: आए, आए, आए, आए। हमारा तो बेड़ा गलत हो गया इस एलटीसी के चक्कर में, चलो और चलो घूमने बम्बई।

0: अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र कुमार की लिखी झलकी LTC का चक्कर। प्रतिभागी कलाकार थे श्री प्रकाश वाजपेयी, मधुलिका शर्मा, प्रियंका शुक्ल, JK बनर्जी, मोहित गौर, रूपाली और मधुर श्रीवास्तव। प्रस्तुति थी मधुर श्रीवास्तव की। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा, JPSC के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया

0: दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंप कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर था। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण किया।
2: To launch this campaign today on the August Kranti Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोगों ने इस यात्रा में तिरंगे के साथ भागीदारी की। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: झारखंड सरकार ने आंदोलनरत छात्रों की अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है। राज्य के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद में मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए IIT ISM IIM रांची और XLRI के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। छात्रों ने कहा कि CBI जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों को CID ने कल पूछताछ के लिए तलब किया है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

0: ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही।
1: पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय करना है।
2: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलट की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोग

0: लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पवित्र कलश वंदन यात्रा आज कंबोपुरा गांव पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने संत श्री रविदास मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा गुरु रविदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में बैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है, जिससे जाजपुर और भद्रक जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से पानी भर गया है। जबकि बैतरणी की एक शाखा कानी नदी के कारण जाजपुर जिले में फिर से बाढ़ आ गई है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है और अनुमान लगाया है कि उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में कम दबाव वाले सिस्टम के कारण भारी बारिश होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और 3 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। उज़्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंडियन ने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। JPSC के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड I am निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with medal winners of Commonwealth Games 2026, urges citizens to always cheer for Bharat. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country. Vice President and Prime Minister appeal to people to renew commitment to Viksit Bharat by joining this movement. Jharkhand government agrees to scrap JPSC preliminary exam over allegations of irregularities. Protesting students say agitation will continue. 3 JPSC members resign from their posts. Defence Minister Rajnath Singh asserts Operation Sindoor sent global message that India will go to any extent to protect its citizens with zero tolerance approach to terrorism. Pradhan Mantri Awas Yojana Urban has crossed major milestone with over 1 crore houses handed over to beneficiaries so far. And Typhoon Dolphin hits China's eastern coast, over 1,300 flights cancelled

0: रहीम। हर घर तिरंगा पहल का पांचवां साल है, जिसका आगाज 2022 में हुआ था, ने जब से ये मुल्क की अवामी शिरकत की सबसे बड़ी तहरीकों में से एक बन गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा मुहिम में जोशो खरोश के साथ शिरकत करने और विकसित भारत की तामीर के तईं अपने तआवुन के इज्तिमाई अहद का अदा करने के लिए लोगों से अपील की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि तिरंगा मुल्क की शान है, नेज़ मुल्क के लिए हमेशा अव्वलीन तरजीह देने की तहरीक का एक जामे ज़रिया है। वज़ीर आज़म ने यह कहते हुए इजहार मसर्रत किया कि इस साल की काविशें वंदे मातरम के लिए वक्फ हैं, क्योंकि ये इसकी 150वीं सालगिरह है। जम्मू कश्मीर में आज से तमाम 20 अजला में जज्बे हुब्बुल वतनी नुमाया तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि हर घर तिरंगा मुहिम के तहत एक हफ्ते तवील प्रोग्रामों के सिलसिलों का आगाज हो गया है। इस साल की मुहिम खास तौर पर अहम है, क्योंकि ये भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के साथ आया है। ये तकरीबात 17 अगस्त तक जारी रहेंगी, जिनका मकसद हुब्बुल वतनी और कौमी फख्र को फ़रोग देना है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये तकरीबात कौमी यकजहती को फ़रोग देने, नेज आज़ादी की मुहिम और कौमी अलामत के बारे में काबिले कदर मालूमात हासिल करने में एक नुमाया संग मील की हैसियत रखती है। बड़े पैमाने पर वंदे मातरम पर दस्तखत करने, तिरंगे की रैलियां, नुमाइशें, सकाफती प्रोग्राम मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में मुनक़द किए जाएंगे। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में हुब्बुल वतनी और अवामी शिरकत की सरगर्मियाँ ज़िला हेडक्वार्टर्स, सब डिवीजन्स, तहसीलों, ब्लॉकों और पंचायत सतहों पर मुनक्किद करने की मंसूबाबंदी की गई है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: JPSC और JSSC इम्तिहानात में मुबैना बेजाबदगियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा के ज्यादातर मुतालबात झारखंड सरकार ने मान लिए हैं। इस सिलसिले में एक माहदे पर इतफाक हो गया है। रियासती वजीर सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि हुकूमत ने 14वें JPSC के इब्तदाई इम्तहानात और 2023-25 के बैकलॉग इम्तहानात मनसूख करने से इतफाक किया है। वजीर मौसूफ ने यह बात आज रियासती हुकूमत और एहतजाजी तलबा के दरमियान बातचीत के बाद मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट से मुबैना माली बेजाब्तगियों की तहकीकात, मुजरमाना पहलुओं की CID तहकीकात और 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करने को यकीनी बनाने के लिए एक फास्ट ट्रैक अदालत के क्याम पर भी इतफाक किया है। वजीर दिफा राजनाथ

0: राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये वाज़े पैगाम दिया है कि भारत अपने शहरियों और मुल्क की ख़वातीन के माथे के सिंदूर के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
1: पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
0: वजीर दिफा ने यह बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के कैंप का इफ्तिताह करते हुए कही। उन्होंने भारतीय फौज की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों का सफाया किया और भारत पर बुरी नज़र रखने वालों को संगीन नतायज का सामना करना पड़ा। सिंदूर महारक्तदान यात्रा का जिक्र करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि जहां ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की शुजात मंदी का मुजाहरा किया है, वहीं खून का अतिया देने का ये कैंप हमदर्दी और इंसानियत की अलामत है। उन्होंने बताया कि कैंप में महाराष्ट्र के तकरीबन 1000 पहलवानों और खिलाड़ियों ने खून अतिया किया। उन्होंने कहा कि इकदाम बेलौस खिदमत और मुसल्लह अफवाज के साथ यकजहती के जज्बे की अक्कासी करता है। वज़ीर दिफा ने कहा कि खून अतिया करने वाला और खून हासिल करने वाला हर शख्स अपने अपने तरीके से मुल्क की खिदमत कर रहा है। उन्होंने खास तौर पर नौजवानों से अपील की कि वो खून अतिया करने वालों को एक बाकायदा अमल बनाएं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU और PMAYU 2.0 के तहत अब तक 1,25,00,000 से ज़्यादा मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। उनमें से 1,00,00,000 से ज़्यादा मकानात की तामीर मुकम्मल हो गई है, नेज उन्हें मुल्क भर में मुस्तफिदीन के हवाले किया जा चुका है। तकरीबन 1,00,00,000 मकानात खवातीन को अलाट किए गए हैं। हाउसिंग और शहरी उमूर के सेक्रेटरी सत्येंद्र सिंह की सरबराही में मुनक़िदा मंजूरी देने और निगरानी की मरकजी कमेटी की मीटिंग के दौरान 16 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में माशी तौर पर कमज़ोर तबके के कुनबों के लिए PMAYU 2.0 के तहत 2,09,000 से ज़्यादा मकानों की मंजूरी दी गई थी। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मंजूर किए गए 2,09,000 मकानात में से 2,03,000 मकानात खवातीन को अलाट किए गए हैं। इसके अलावा 16,600 से ज़्यादा मकानात बुजुर्ग शहरियों को, जबकि तकरीबन 22,000 मकानात दर्ज फहरिस्त के अफराद के लिए, 14,000 से ज़्यादा दर्ज फहरिस्त कबाइल और 75,000 से ज़्यादा मकानात दीगर पसमानदा तबकात के अफराद के लिए मंजूर किए गए हैं। स्कीम के तहत मकानात की मिल्कियत खवातीन के नाम करने को तरजीह दी गई है, जिसका मकसद खवातीन को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, समाजी तौर पर बाख्तियार बनाना और घर के फैसलों में उनकी ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत को यकीनी बनाना है। PMAYU का आगाज 2015 में किया गया था, जिसका मकसद अहल शहरी मुस्तहकीन को बुनियादी सहूलियात के साथ हर मौसम के एतबार से पक्के मकानात फराहम करना था। PMAYU के नफाज से हासिल होने वाले तजुर्बात की बिना पर हुकूमत ने इसमें तरमीम की और यकुम सितंबर 2024 को PMAYU 2.0 सबके लिए मकानात मिशन का आगाज किया। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मोहम्मद शहजाद।
0: शदीद तूफान डॉल्फिन आज तीसरे पहर चीन के मशरक़ी साहिल पर पहुंच गया, जिससे ज़ीजियांग और फुजान सूबे मुतासर हुए हैं। इस तूफान के आने के बाद मुल्क के मौसमियात के कौमी मरकज़ ने मुल्क में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान शंघाई के 2 हवाई अड्डों पर 1,300 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि हुक्काम ने आसपास के इलाकों में तकरीबन 3,00,000 अफराद को महफूज जगह पहुंचाया है। बुध के रोज़ तक शदीद बारिश होने की तवक्को है कि यह तूफ़ान शुमाल मगरिब की जानी बढ़ जाएगा और वहां पहुंचने के बाद ये बतदरीज कमज़ोर पड़ जाएगा। ایران کے وزیر خارجہ سید عباس راخچی نے آج کہا کہ اس وقت ان کا ملک امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کر رہا ہے، البتہ دونوں ممالک کے درمیان ثالثوں کے توسط سے پیغامات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے ذریعے جاری کیے گئے ان کے بیان کے مطابق جناب راخچی نے کہا کہ بہت

नमस्कार श्रोताओं, रात के 9:30 बज चुके हैं और दिन भर की आपाधापी के बाद अब वक्त है कुछ खूबसूरत नगमों के साथ अपने दिल को सुकून देने का। मौसम भी इन दिनों अपने रंग बदल रहा है, कहीं बादलों की हल्की सी दस्तक, कहीं बारिश की रिमझिम और कहीं सावन की फुहारों के साथ मन में जागती हुई पुरानी यादें। कहते हैं ना, कुछ मौसम सिर्फ मौसम नहीं होते, वे अपने साथ यादें लेकर आते हैं। सावन में भी कुछ ऐसा ही होता है, झूलों की पैंग, मेहंदी की खुशबू, हरी हरी चूड़ियों की खनक और किसी अपने की याद, सब कुछ ऐसे एक साथ दिल के करीब आ जाता है।

तो आइए आज सावन की इस रिमझिम रात में हम भी कुछ ऐसी ही यादों की पगडंडी पर चले, जहां हर मोड़ पर कोई गीत हमारा इंतजार कर रहा हो। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त एकता शुक्ला और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो दिल थाम लीजिए और यादों की खिड़की खोल लीजिए, क्योंकि आज की रात, आज का ये समय खूबसूरत संगीत के नाम।

लीजिए और यादों की खिड़की खोल लीजिए, क्योंकि आज की रात, आज का ये समय खूबसूरत संगीत के नाम।

बारिश की इन भीगी भीगी फुहारों में, सावन की इस नम सी रात में, कुछ यादें ऐसी होती हैं जो मौसम के साथ और भी गहरी हो जाती हैं। खिड़की के शीशे पर ठहरी हुई बारिश की बूंदें हों, दूर कहीं बादलों की गड़गड़ाहट हो, और अचानक किसी अपने की याद दिल में दस्तक दे जाए, तो लगता है जैसे वक्त कुछ पल के लिए ठहर गया हो। मोहब्बत भी दोस्तों शायद ऐसी ही होती है, साथ हो तो हर मौसम खूबसूरत, और दूर हो तो सावन की हर बूंद एक कहानी कहती है। आज की इस बरसात भरी रात में, जब फिजा भीगी हुई हो और दिल यादों से भरा हुआ हो, तो क्यों ना उस प्यार को याद किया जाए जिसकी कमी हर वक्त महसूस होती है।

कभी कभी मोहब्बत इंसान को ऐसा बना देती है कि हर रास्ता उसी की तरफ जाता हुआ लगता है, हर मौसम में उसी की खुशबू महसूस होती है और दिल को बस उसी का ख्याल घिरे रहता है। और जब मौसम सावन का हो, फिजा में बारिश की नमी हो, पेड़ों की डालियां झूम रही हों और आसमान पर बादल छाए हों, तो प्यार का यह एहसास और भी गहरा हो जाता है। मोहब्बत में डूबा हुआ दिल फिर कहाँ किसी की सुनता है, वह तो अपनी ही धुन में चलता है। कभी किसी की एक झलक पाने के लिए, कभी उसकी याद में और कभी बिना किसी मंजिल के बस उसी की तलाश में। तो आइए सावन की इस भीगी रात में मोहब्बत की उसी दीवानगी को महसूस करते हुए सुनते हैं ये गीत।

कभी कभी दो दिलों के बीच दूरी सिर्फ कदमों की नहीं होती, वह होती है लज्जा की, इंतजार की और उन अनकहे सवालों की जिन्हें होंठ कभी कह नहीं पाते। लेकिन मोहब्बत जब सच्ची हो तो फिर पर्दे कहाँ रह जाते हैं, ना बातों के पर्दे ना एहसासों के। एक आवाज़ अगर दिल से निकले तो सामने वाला बिना कुछ कहे भी उसे सुन लेता है, और फिर उस आवाज़ में बस एक ही इल्तिजा होती है, इतना इंतज़ार क्यों। आज की सुरीली महफिल में सुनिए मोहब्बत की एक ऐसी ही बेबाक मगर बेहद नर्म पुकार, जिसमें कोई शिकवा नहीं, शिकायत भी नहीं, बस अपनेपन से भरा एक निमंत्रण है।

जैसी रात अपने आखिरी पहर की ओर बढ़ रही है, हमारी ये सुरीली महफिल भी अब अपने अंतिम पड़ाव में है। लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर कभी भी कोई कार्यक्रम खत्म नहीं होता, बल्कि वो खत्म होने के बाद भी दिल में बजते ही रहते हैं। मोहब्बत में इंतज़ार हो, किसी अपने की कमी हो, या फिर दिल में उठती हुई कोई अनकही बेचैनी, रात की खामोशी इन एहसासों को और गहरा कर देती है। आंखों में नींद होती है मगर दिल है कि किसी की याद में जागता रहता है। शायद ऐसी बेचैनी को आवाज़ देता है हमारी अगली फिल्म आपकी कसम का ये बेहद खूबसूरत गीत।

0: तो दोस्तों, आज सावन की इस रात में सुंदर सुरीली महफिल में हमने मोहब्बत के कई रंग महसूस किए। कहीं सावन की फुहार थी, कहीं किसी की याद की नमी, कहीं इश्क की बेकरारी और कहीं किसी के करीब आने की मासूम सी पुकार। और अब वक्त है इस खूबसूरत सफ़र को यहीं विराम देने का। मगर गीतों का क्या, ये तो ख़त्म होकर भी ख़त्म नहीं होते। दिल में ठहर जाती हैं कुछ धुनें और उनसे जुड़ी यादें। इसी उम्मीद के साथ आज की ये फिल्म संगीत की महफिल अब ख़त्म होती है। ये सितारों भरी रात आपके दिल में कुछ मीठी यादें ज़रूर छोड़ गई होगी। इसको आप ज़रूर बताइएगा हमारे व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। और मैं आपकी दोस्त एकता शुक्ला आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलूँगी इसी तरह किसी खूबसूरत रात में कुछ अनकहे एहसासों और बेहतरीन नगमों के साथ। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। अगले कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: अपनी प्राथमिक संगीत शिक्षा श्रीमती वी ललिता से शुरू की और विष्णु वटला सिस्टर्स नाम से प्रसिद्ध बहनों में विदुषी श्रीमती विष्णु वटला कृष्णवेणी के साथ आगे का अभ्यास जारी रखा। बाद में इन्होंने सुप्रसिद्ध हैदराबाद ब्रदर्स में से विद्वान डी राघवाचारी के मार्गदर्शन में अपने कौशल को निखारा। 6 साल की छोटी उम्र में प्रथम प्रदर्शन देने वाली इस बाल कलाकार ने आंध्र प्रदेश के सरकार से प्रतिष्ठात्मक बाल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है। इन्होंने कर्नाटक गायन में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के CCRT के द्वारा वरिष्ठ छात्रवृत्ति प्राप्त किया। उसी वर्ष में आकाशवाणी के राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में शास्त्रीय भक्ति संगीत में प्रथम पुरस्कार और कर्नाटक शास्त्रीय गायन में द्वितीय पुरस्कार भी प्राप्त किया है। ये आकाशवाणी में पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी पीढ़ी की गायिका हैं। इन्होंने प्रख्यात सभाओं में, प्रतिष्ठात्मक संगीत उत्सवों में और भारत के अग्रगामी सांस्कृतिक संस्थानों में

0: प्रदर्शन दिया है। इन्होंने कर्नाटक गायन में और वायलिन में डिप्लोमा के साथ साथ संगीत में एमए डिग्री हासिल की है और आईआईटी खड़गपुर में एमबीए डिग्री भी प्राप्त की है।
1: श्रीमती सात्विका मोहन इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन एंड एन अकम्प्लिश्ड कर्नाटिक क्लासिकल वोकलिस्ट एंड वायलिनिस्ट। शी रिसीव्ड हर इनिशियल ट्रेनिंग अंडर श्रीमती वी ललिता, फॉलोड बाय अडवांस्ड ट्यूटेलेज अंडर विदुषी श्रीमती विष्णुभट्ल कृष्णवेणी ऑफ द रिनाउंड विष्णुभट्ल सिस्टर्स एंड फर्दर अडवांस्ड गाइडेंस फ्रॉम विद्वान श्री डी राघवाचारी ऑफ द इलस्ट्रियस हैदराबाद ब्रदर्स, ए चाइल्ड प्रोडिजी हू प्रेजेंटेड हर मेडन कंसर्ट एट द एज ऑफ 6। शी वॉज कन्फर्ड द प्रेस्टीजियस बालरत्न टाइटिल बाय द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। शी इज ए रेसिपियंट ऑफ द सीनियर स्कॉलरशिप इन कर्नाटिक वोकल म्यूजिक अवार्डेड बाई द CCRT मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अचीव्ड नेशनल डिस्टिंक्शन बाई सिक्योरिंग फर्स्ट प्राइज इन क्लासिकल डिवोशनल म्यूजिक एंड सेकेंड प्राइज इन कर्नाटिक क्लासिकल वोकल म्यूजिक एट द ऑल इंडिया रेडियो नेशनल म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स इन द सेम ईयर। बिकमिंग ए सेकेंड जनरेशन आकाशवाणी नेशनल प्राइज विनर, शी हैज़ परफॉर्म्ड एक्सटेंसिवली एट एमिनेंट सभास, प्रेस्टीजियस म्यूजिक फेस्टिवल्स एंड लीडिंग कल्चरल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया। शी होल्ड्स डिप्लोमा इन कर्नाटिक वोकल एंड वायोलिन, एन MA इन म्यूजिक एंड एन MBA इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम IIT खड़गपुर।
0: आज रात के इस कार्यक्रम में आपके साथ संगत करने वाले कलाकार हैं, वायलिन पर श्री ओ राजशेखर, मृदंगम पर विद्वान पीरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
1: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट श्रीमती सात्विका मोहन इज अकम्पनीड ऑन वायलिन बाय श्री ओ राजशेखर, ऑन मृदंगम बाय विद्वान पीरवली जय भास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
0: श्रीमती सात्विका मोहन अपने गायन का आरंभ त्यागराज की एक कृति से कर रही हैं, जो राग हमसद ध्वनि तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्रीमती सात्विका मोहन बिगिन्स हर वोकल रिसेटल विद अ कंपोजिशन ऑफ त्यागराज स्वामी इन द राग हमसद ध्वनि सेट टू आदिताल।

0: अब आप सुनेंगे त्यागराज स्वामी की एक कृति जो राग आनंद भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू ए कंपोजिशन ऑफ त्यागराज स्वामी इन द राग आनंद भैरवी सेट टू आदिताल।

0: श्रीमती सात्विका मोहन अपना गायन जारी रखते हुए अब प्रस्तुत करेंगी नारायण तीर्थ द्वारा रचित एक तरंगम, जो राग बिलहरी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हर वोकल रिसाइटल, श्रीमती सात्विका मोहन विल नाउ प्रेजेंट ए नारायण तीर्थ तरंगम इन द राग बिलहरी सेट टू आदिताल।

0: अब आप सुनेंगे मैसूर वासुदेवाचार्य की एक रचना जो राग सिम्हेंद्र मध्यमम तथा मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: यू नाउ लिसन टू ए कंपोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार इन द राग सिम्हेंद्र मध्यमम सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: वो था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पेरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वॉज द तन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाई विद्वान पेरवली जय भास्कर एंड ऑन घटम बाई श्री एम चंद्रकांत।
0: श्रीमती सात्विका मोहन अपने गायन का समापन श्री कनक दास की एक कृति के साथ कर रही हैं, जो राग सिंध भैरवी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: श्रीमती सात्विका मोहन कंक्लूड्स हर वोकल रिसेटल विद द कंपोजिशन ऑफ श्री कनकदासा इन द राग सिंधु भैरवी सेट टू खंड चापू ताल।

0: इसी के साथ हम रवि वार्षिक अखिल भारतीय संगीत सभा में श्रीमती सात्विका मोहन का गायन समाप्त करते हैं। आज की सभा में उनके साथ वायलिन पर थे श्री ओ राजशेखर, मृदंगम पर विद्वान पेरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। रवि वार्षिक अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के प्रसारण कक्ष में इस संगीत कार्यक्रम का ध्वनियांकन किया गया है। ये कार्यक्रम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है।
1: With that, we conclude the vocal recital by Srimati Satvika Mohan in the broadcast of Ravi Vasriya Akhil Bharati Sangeet Sabha. She was accompanied on violin by Sri O. Rajasekhar, on mridangam by Vidwan Peravalli Jayabhaskar, and on ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashvani Hyderabad for Ravi Vasriya Akhil Bharati Sangeet Sabha and brought to you from the Delhi station of Akashvani.
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार दिल्ली केंद्र से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे, और उन्होंने नागरिकों से हमेशा भारत का उत्साह बढ़ाने की अपील की।
4: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
3: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। घर घर।

इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है

उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया और भारत पर बुरी नज़र डालने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज़्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023-25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ये कार्यकाल इस महीने की 13 तारीख से शुरू होकर अगले वर्ष 13 अगस्त तक रहेगा। सेवा में ये विस्तार 31 जुलाई 2027 को उनकी तय सेवा निवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राहुल नवीन का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दी है। वे 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।